0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ
1: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे करुणा। नमस्कार।
2: नमस्कार नीतू शाह, सभी को नमस्कार। फीफा कप का विश्व फीफा कप 2026 का आगाज मैक्सिको सिटी में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। इस समारोह में सांस्कृतिक प्रदर्शन, नृत्य और विश्व प्रसिद्ध गायिका शकीरा की प्रस्तुति ने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। मेजबान मैक्सिको ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। मैक्सिको की जीत के साथ स्टेडियम में जश्न का माहौल छा गया और विश्व कप 2026 का रोमांचक सफर आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। नेशनल होलसेल मार्केट की सेवाओं का विकेंद्रीकरण

अब गुडलैंड्स और फ्लैग तक किया जाएगा। ये परियोजना एक पायलट आधार पर शुरू की जाएगी। क्यूपिप के कॉलेज में कथित बुलिंग और हमले के मामले पर जांच की जा रही है। मामले की सूचना 10 जून को फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड को दी गई थी। और विदेश में उत्तर प्रदेश तथा बिहार में तेज आंधी पानी और वज्रपात से 16 लोगों की मौत हो गई है। और अब

0: अनुमान है कि आज तड़के मौसम सुहाना रहेगा। इसके बाद बादल घिराएंगे पूर्व और सेंट्रल प्लाटू पर, जहाँ तहाँ बारिश हो सकती है। दोपहर में कुछ घरी के लिए दक्षिण पश्चिम, दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश हो सकती है। अन्य इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे। रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन देर रात को पूर्व, उत्तर और सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिराएंगे और बारिश हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा, लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज के लिए सूर्योदय 6:41 पर, सूर्यास्त होगा 5:37 पर।
1: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2 98.2 यू आर लिसनिंग योर RM3 रेडियो।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم उस मौला के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा नहीं। मेरे अजीज सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। यौम जुम्मा मुबारक हो। आपकी खिदमत में ये खाकसार नागुद निसार हाजिर हैं और आपकी समागतों की नज़र है उर्दू प्रोग्राम सबाल खैर। जुम्मातुल मुबारक की इन लतीफ़ घड़ियों में हम दिल की अता गहराइयों से आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। सामईन, आज अल्हम्दुलिल्लाह माहे दुल्हिज्जा का 25वां दिन है। आज भी हम इस माहे मुबारक के फ़ज़ाइल बिलखसूस हज बैतुल्ला पर गुफ्तगु फरमाएंगे। उम्मीद है ये महफिल आप सामईन की तवज्जो का बाइस बनेगी। आइए हसब मामूल सबाल खैर का बाकायदा आगाज़ कलाम रब्बानी की तिलावत से करते हैं। बागौर व अदब समात फरमाइए।

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة.

सदकल्लाहुल अलीउल अज़ीम। सामईन कराम, अभी आपने कलाम पाक की तिलावत समात फरमाई। बेशक कुरान करीम वही इलाही है। तिलावत कुरान मजीद अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब हासिल करने का जरिया और हिदायत का मजमुआ है। ये कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शफात करेगा। कयामत के दिन तिलावत करने वालों को कोई मसला न होगा, ना ही उनसे हिसाब व किताब लिया जाएगा। कुरान पाक की तिलावत अफजल तरीन इबादत है और रहमत व बरकत के नुजूल का जरिया भी है। सामईन, तिलावत कुरान मुबीन के बाद आइए कसीदा बुर्दा शरीफ मुलायजा फरमाइए।

मोहतरम सामईन, हज़रत सैदना अब्बास रदी अल्लाह ताला अन से रिवायत है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल्ला शरीफ का हज करने वालों पर हर रोज अल्लाह तबारक व ताला 120 रहमतें नाजिल फरमाता है। हदीस पाक में ये भी फरमाया गया कि जिसने बरसात में तवाफ के साथ चक्कर लगाए उसके पिछले गुना बख्श दिए जाएंगे। सामईन, इन सब से ये बात आया होती है कि हाजियों के लिए कैसी कैसी फजीलत बरसती हैं।

और गुम्बदे खजरा की जियारत के लिए जाना, हज हो या उमरा, किसी भी नियत से सुए हरम कदम बढ़ाना, यकीनन बहुत बड़ी सादत की बात है और बड़े नसीब की बात है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें कदम कदम पर अल्लाह पाक की रहमतों और बरकतों की बरसात होती है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने घर से हज या उमरा अदा करने के लिए निकला और उसका इंतकाल हो जाए, उसे कयामत तक हज उमरे करने का अजर व सवाब दिया जाता रहेगा।

सामईन कराम, उर्दू प्रोग्राम सबाल खैर में निसार अख्तर एक बार फिर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता है। आइए गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। सैयद आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आब जमजम हर उस मकसद के लिए है जिस मकसद के लिए पिया जाए। अगर उसे शिफा की गरज से पियेंगे तो अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएगा। अगर इंसान पना हासिल करने के लिए पीता है तो अल्लाह पना अता फरमाएगा। अगर उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए पीते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इंसान की प्यास ज़रूर मिटाएगा।

0: RM3 Radio.
1: मोहतरम सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह, हुज्जाज कराम हज के अजीम सफर के बाद अपने अपने घर लौट रहे हैं। हज के बाद हाजियों की जिंदगी में एक नया आगाज होता है। उनकी रहनुमाई, मशवरे और तजुर्बात हमारे लिए कीमती खजाना होता है। हज के बाद हाजियों की जिंदगी में जो तब्दीलियां रोनुमा होती हैं, वो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे मुआशरती निज़ाम पर असरंदाज होती हैं। ये सफ़र इंसान को अल्लाह पाक के करीब ले जाता है।

जे कराम से मिलते हैं तो उनके नूरानी सफर की कहानियां और हज के तजुर्बात सुनते हैं तो हमारा ईमान ताजा हो जाता है, हमारे दिलों में खुशी की लहर दौड़ती है। उनकी दुआएं, उनकी तौबा और उनका नया अज़्म हमें भी अल्लाह अज़्ज़वजल के करीब ले जाने की तरगीब देते हैं। ये वक्त हमारे लिए एक मौका है कि हम उनके तजुर्बात से सीखें। अल्लाह अज़्ज़वजल उस मुबारक सफ़र की बरकतों से हमें भी मुस्तफीद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।

इश्क मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, इश्क मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, वो जहां भी रहे मदीने में है। मुआज़्ज़ज़ सामईन, इसी शेर के साथ हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम सबाल खैर अपने अख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है आपने इसे ज़रूर पसंद फरमाया होगा। अब आपका मेज़बान निसार अख्तर इजाज़त का तलबगार है। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगले जुम्मे को फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

0: ये आपूस केसर तोता पूरे
1: शियाडे उंधियो खवा
2: बालोर पापड़ी ने मुठिया ना भूलता
1: चौमासा मा भजिया तड़ो के

भक्ति में शक्ति। श्रोताओं, आप सभी को पूजा की ओर से प्रणाम। भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन है। आइए इस भक्ति कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं।

श्रोताओं, कहा जाता है हमारा जो मन है जब भी विचलित होता है तो एक द्वार हमेशा खुला रहता है और वो है परमात्मा का द्वार। जब हम भगवान का नाम, परमात्मा का नाम लिखते हैं, जपते हैं, तो हर एक विचलित मन को मार्ग मिल ही जाता है, दिशा मिल ही जाता है। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है।

कहते हैं कि माता रानी शक्ति का स्वरूप है और जो उनकी पूजा आराधना भक्ति करता है माता रानी की कृपा उन पर हमेशा रहती है।

0: शक्ति कार्यक्रम के अंत तक आप पहुंचे हैं, आप सभी पर परमात्मा की कृपा रहे, बस यही आशा है। चलिए पूजा को अनुमति दीजिए, मेरी ओर से सभी को प्रणाम और शुभ दिन।
1: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
2: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio.

0: Jackie O'Time, it's exactly noon. आइए सुनते हैं समाचार करुणा के साथ. नमस्कार.
1: नमस्कार गिनीशा, सभी को नमस्कार. मिडलैंड्स के शासी डोविलाओ में 40 वर्षीय के व्यक्ति को मृत पाया गया. जोनाथन कुयान की लाश गुरुवार रात लगभग 10:45 पुलिस द्वारा बरामद की गई, जो कि खून से लथपथ थी. रोजिल निवासी और पेशे से अकाउंटेंट जोनाथन कुयान के सीने में गोली लगने की चोट पाई गई. मौके पर पहुंचे सामी ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जांच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है. फुटबॉल का महोत्सव फीफा कप 2026 का सिलसिला जारी है. आज रात कनाडा के टोरंटो स्टेडियम में दूसरा उद्घाटन समारोह लगाया जाएगा, जिसके बाद ग्रुप बी के तहत कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना के बीच मुकाबला होगा. इसका सीधा प्रसारण आप एमबीसी 11 पर देख पाएंगे. याद रहे कि कल अस्टेका स्टेडियम में मेजबान मेक्सिको ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया. इस तरह मेक्सिको ने 3 अंक हासिल कर ग्रुप स्टेज का सफल आगाज किया. ग्रुप ए के तहत ही आज सुबह दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हराकर शानदार शुरुआत की. इस जीत के साथ दक्षिण कोरिया ने ग्रुप स्टेज में महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए. तो फुटबॉल महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 की खबरों के लिए जुड़े रहिए एमबीसी के साथ. रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है, जिसमें दोनों ओर से हुए हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं. इनमें 5 साल के एक बच्चा भी शामिल हैं. यूक्रेन ने रूस के ब्रायंस्क और इस्तारोडुब इलाकों पर हमला किया, जबकि रूस ने सुमी और माइकोलाइव में ड्रोन हमले किए, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी तबाही हुई. और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय में 2 वरिष्ठ मंत्रियों के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री कर स्टॉमर की सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हुआ. दोनों नेताओं ने सरकार की रक्षा व्यय योजना को लेकर इस्तीफा दिया. खबरों के अनुसार विवाद का मुख्य कारण सेना के लिए प्रस्तावित वित्तीय संसाधनों और दीर्घकालिक रक्षा निवेश योजना को लेकर मतभेद हैं. इस बीच सुरक्षा मंत्री रहे डैन जॉविस को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया. इसके साथ समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय बाद शोक समाचार. कौलीला ट्रियोले में 54 साल की 54-year-old श्रीमती विमला रामलोचन, श्रीमती विमला रामलोचन पैदाइश नाम लखू, जो विमला से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है. अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनके पति श्री अजय रामलोचन के मकान कौलीला ट्रियोले से उठाकर दाह संस्कार के लिए त्यामिनी ट्रियोले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति.
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.

0: भाई साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: नमस्कार सभी हमारे श्रोताओं का रेडियो मनोरंजन आरएम थ्री पर स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, यहां पर शुरू होता है हमारा सफर, हमारा प्रोग्राम जहां पे हम आपके लिए लेकर आते हैं पुराने गाने, कुछ ऐसे गाने जिसे सुनकर आपको आपके पुराने दिन याद आते हैं, जिसमें आप भी झूम उठते हैं और हमारा दिल कहता है कि वो दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए उन्हीं दिनों को हम एक साथ यहाँ पर याद करेंगे, आपके साथ गुनगुनाएंगे चंद पुराने गीतों के साथ। मैं विनीता आपका स्वागत करती हूँ। भूलिएगा नहीं कि हमारा जो प्रोग्राम है रेडियो मनोरंजन का सुहाना सफ़र, वो हमारे रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पे लाइव है। आप चाहें तो आप हमें भी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं।
2: You're listening RM Free Radio Radio Radio
3: देखो माइके नहीं तू मत माइके माइके मत जाइयो। ए टोनी फर्नांडिस बेबी

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: तो मैके मत जइयो भाई, ये था गाना आपके लिए पुकार फिल्म से। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। चलिए जी 12:20 और यहाँ पर विदिता आपके साथ हैं। हम लेकर आए हैं आपके लिए पुराने गाने। प्रोग्राम वही है जिसे आप रोज सुनते हैं 12 से 2 बजे के बीच। अब हमारे साथ कौन है चलिए ये भी जान लेते हैं। तो अगला गाना हमारा होगा सिस्टर सिमला सिसाहा के लिए। ये है सलूजा मथुरा की तरफ से। परी कहती है उनके सिस्टर बीना भी उनके साथ हैं, तो उन्होंने भी हेलो भेजा। थैंक यू बीना जी। यहाँ पर लीना, शमिला चुनीलाल, दीप्ति गंदौरी।

शिमला मिस्टर नूरुद्दीन फ्रांस से है एंड निशा अपने बेटी शिखा के लिए गाना मांग रहे हैं वहीं पे हम हंसराज का वेलकम करते हैं वर्षा मोहन प्रवीणा दुर्गा की आंच के लिए गाना मांग रहे हैं कहते हैं बच्चा अभी कोको मलन देख रहा है कोई बात नहीं थोड़ी देर में हमारे गाने पे डांस करेगा आज वैसे भी फ्राइडे है ना तो ललिता हमारे साथ हैं इंदिरा रामरेखा हमारे साथ है अभी भी हमें ज्वाइन किया है मीनू अतवाल ने स्वागत है वेलकम है आपका उमा जी आपका भी स्वागत करते हैं रेखा जी कहती है उनके लिए उनके बेटे अंश के लिए पमोजे से साथ दे रहे हैं रेखा जग्गू कैसी हो मेरी बहन चलिए तो उनके लिए गाना होगा बबीता बंधु साथ में है लवीना वी हैव सरोज सुबी कैसे हो जी चलिए तो ऐसा करते हैं सबके लिए होगा गाना गाना होगा कमाल का आप बस सुनते रहिए और अपना मूड जो है ना उसको बनाते रहिए क्योंकि हम तो यही चाहते हैं ना कि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे वाला मूड हो जाए

0: सुहाना सफर
1: प्रोग्राम है सुहाना सफर और यहाँ पर हम यही रिक्वेस्ट कर रहे थे हमारे सभी लिसनर्स से कि प्लीज आज ना रोने धोने वाले गाने की फरमाइश मत करना, आज फ्राइडे है वरना सबका बीपी वैसे ही हाई हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं आपको हम ऐसा करते हैं कि आपसे जितनी भी फरमाइश गाने हैं उसको हम नोट करके रखेंगे और कोई दिन होगा रोने धोने का तो हम एक दिन डिसाइड कर लेंगे फिर चला देंगे रोने धोने वाले गाने, लेकिन आज तो कम से कम हमें एंजॉय करना है। तो चलिए माधुरी जो एक दो तीन करती हुई आती है उनके लिए गाना होगा, कविता हमारे साथ हैं, बबीता, नजीमा गोवर्धन, अमृत ने बोला है उनके लिए गाना हो जाए, वैसे तो ये है नेट्स और इंदिरा राम दुनिया। स्वागत है बबीता बंधु जी, या पुष्पा नो मोर टियर्स ऑफकोर्स, यहाँ पर गाना आपने मांगा है कि बस बस झूमना है, घूमना है, डांस करना है। तो चलो अगर आपको मेरे सिलेक्शन पे भरोसा है तो आज मस्ती तो बनती है। ग्यारह स्यूसरन हमारे साथ है, नेक्स्ट गाना चलाते हैं आपके लिए और साथ में यही गाना हम डेडिकेट करते हैं उन लोगों के लिए जो इस समय गाड़ी चला रहे हैं। फिल्म का नाम है हनीमून, किशोरदा के साथ आवाज़ मिला रही आशा जी।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: इंतजार तो शायद आप हमारा करते हैं और यहाँ पर कोई हमसे हैं जो बात करना चाहते हैं, तो ऐसा करते हैं इनका कॉल ले ही लेते हैं। हेलो नमस्कार।
2: हेलो जी देवी।
1: हेलो
2: हेलो जी
1: वेदिता। हाँ वेदिता जी बताइए जी, नमस्कार, आपका नाम बताइए।
2: सैपिया से
1: रवीन। ठीक है रवीन जी, हम अगला गाना आपको डेडिकेट करते हैं। आपकी आवाज़ ना थोड़ी दूर दूर से मुझे नहीं पता। हाँ रुकी से शायद लाइन में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन थैंक यू सो मच आपने हमें याद कर लिया। चलिए अगला गाना जो है हम आपके नाम डेडिकेट करते हैं, ठीक है? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुभ दिन। तो ऐसा है कि शायद वो मोबाइल से बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमें नेटवर्क की शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट गाना उनके नाम डेडिकेट करते हैं। सैपिया के रवीन, उन्होंने बोला है कि गाना उनके लिए, और साथ में यहाँ पर डेडिकेट करते हैं प्यारा सा गाना हम लक्ष्मी जी आपके लिए। और यहाँ पर हम गाना आपके नाम डेडिकेट करते हैं दीप्ति जी। सिस्टर बोल रही हैं कि ये जो गाना हाँ आपको पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पूनम शंभू जी नमस्ते, आपका स्वागत करती हूँ। नंद आपका भी, एंड सुनीता हमारे साथ हैं, कहते हैं चिल इट्स फ्राइडे, और आपने भी गाने की फरमाइश कर दी, तो चलिए गाना ढूंढना पड़ेगा। अभी के लिए कौन सा गाना आ रहा है भाई? जो रूठे हैं उनको मनाने का भी इरादा है, तो क्या कहते हो मना लें।

0: बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपके लिए हम ले आए हैं और ये है आपके लिए तीसरी मंजिल फिल्म का गाना। चलिए तो यहाँ पर जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे फेस हमारी ऑफकोर्स टिकटॉक लाइव पे उनका स्वागत करते हैं। एंड आरती सदाशिवन और यहाँ पर किसी ने हमसे नंबर मांगा है RM3 का, तो यहाँ पर नंबर है 4028070 यानी 4028070।
1: RM3 Radio.
0: किरण खतुना का हम अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर जना हमारे साथ हैं। चलिए आपके लिए अनिल, राजन, कुजन, श्रवि, हाय, कैसे हो आप? चलिए स्वागत है आप सबों का प्रोग्राम में। साथ देते रहिए सुल्ताना खंदाई, आपका भी हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। और यहाँ पर गाना होगा, आपने गाने की फरमाइश की, मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। कनिष्का, हाय, थैंक यू फॉर लविंग द सिलेक्शन। और एक प्यार भरा गाना, सिस्टर का बर्थडे है, परवीन भोला, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, लवना। ये गाना मम आशा के लिए, फकीर फैमिली के लिए जो पेची गाफे से हैं। चलिए ये गाना नज़मा इमाम दीन इमा के लिए और सभी हमारे लिसनर्स के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं। एंड चलिए जी बिल्कुल, आज का फ्राइडे जो है सबके

बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू सो मच। और संगीता सुखारी जी आपका भी स्वागत है, मालिनी बिसराम गाना आपके लिए, नमस्ते।

0: तो ये था प्रेम रोग फिल्म का वही खूबसूरत सा गाना सुदेश वाडकर की आवाज़ में। चलिए यहाँ पर गानों के इतनी लंबी लिस्ट लगी है और इतने सारे लोग हमारे टिकटॉक पे लाइव हैं, उनका हम स्वागत करते हैं एक बार फिर। जीतन दुलवा, विकिंग, साहिल, आशा लखनऊ, तरेनुका, साधना अलगू, राजन, नीलिमा, स्वाति के लिए गाना मांग रही हैं जो पालमा रहती हो गई है 50 ईयर्स की, रागिनी, और यूके से काफ़ी सारे लोग हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, वेलकम वेलकम। तरुण राम जो कि दुबई में बैठे हैं, गीता जवल आपका स्वागत करते हैं, मोहम्मद शरीफ, अंजी आमुगम, रेशमा, विकास, नेक्स्ट गाना जाएगा हस्बैंड साइलेश के लिए, और आशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।
1: RM3 Radio
0: चलिए गाना हम सरिता के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, अभी अभी उन्होंने टिकटॉक पे हमें लाइव सुनना शुरू किया है। वैसे अगर आप लोग चाहें तो डेडिकेशन नहीं भी है तो बस अपना नाम हमें भेज सकते हैं। ये है रेडियो मनोरंजन का बस लाइव जो आप हमें देख रहे हैं इस समय मॉरिशस से। परदेश में बैठे जितने भी लोग हैं, स्वागत है आपका। और यहाँ पर हमें ज्वाइन कर दी है लैला मुदारन, कैसी हैं आप?

0: RM3 Radio. Radio.
1: और चलिए यही गाना हम रोहित के नाम डेडिकेट करते हैं जो सुरीनाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में यही गाना होगा नीरू रामसन के लिए और रेशमा राम की सुन जो इस समय हमारे साथ टिकटॉक पे लाइव है।

येसुदास साहब की आवाज में पेश है आपके लिए अगला गाना। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप हमारा इस प्रोग्राम का लाइव देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पे हमारे साथ जुड़ें।

listening to RM3 Radio Manoranjan. चलिए इसी गाने के साथ बढ़ते हैं अब हम एक बजे के समाचारों की ओर. नीरू रामसन, रेशमा राम किशन, इंदिरा मताव सिंह, राजेश और प्रकाश के लिए गाना मांग रहे हैं सूर्या, रजनी मोहब्बत, प्रेमा लक्ष्मण फ्लाग से. मिलते हैं थोड़ी देर में.

0: आइए सुनते हैं समाचार याचना के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। क्यूपिप की पुलिस मिडलैंड्स के एक रॉन्च में एक व्यक्ति की मौत पर जांच कर रही है। 40 साल के जोनाथन कुयामटू का शव कल उस रॉन्च की पार्किंग में उसकी गाड़ी की बगल में मिली। उसके पेट पर गोली लगी थी। आज शव परीक्षण किया जाएगा। इस हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस की जाँच जारी रखी जा रही है। वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो चली है। कल मेक्सिको के अस्टिका स्टेडियम में औपचारिक समारोह लगा। इस रंगारंग कार्यक्रम में करीब 80,000 दर्शकों ने भाग लिया। इस वर्ल्ड कप के लिए 3 उद्घाटन समारोह निर्धारित हैं, जिनमें से पहला कल मेक्सिको में लगा और दूसरा आज रात कनाडा में निर्धारित है, जो इस साल इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। और वर्ल्ड कप की ही बात करते हैं। कल मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला हुआ। ग्रुप ए का पहला मैच स्कोर रहा 2-0, जिसमें मेक्सिको की जीत हुई। इसके अलावा ग्रुप ए में ही दक्षिण कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से परास्त किया। आपको याद दिला दें कि एमबीसी प्ले एप्लीकेशन पर आप ₹300 में वर्ल्ड कप की सभी मैच देख पाएंगे। इसके लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। आज रात बोस्निया और कनाडा की टीमें आपस में टकराएंगी। मैच का सीधा प्रसारण आज रात 11 बजे किया जाएगा। इससे पहले मेजबान देश कनाडा में रात 8:30 बजे से उद्घाटन समारोह आप देख पाएंगे। विदेश की खबरों में, थाईलैंड की राजकुमारी का निधन 47 साल की उम्र में हो गया है। 2 साल पहले वे दिल की बीमारी के कारण अचानक बेहोश हो गई और तब से कोमा में थी। वे थाईलैंड के राजा की 7 संतानों में से सबसे बड़ी और पहली उत्तराधिकारी थी। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। जॉन मिल्टन रोड होशनुआ में 78 साल की 78 years old की विधवा अमावती जीवन, पैदाशी नाम मुतादिन और जो अमावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके मकान जॉन मिल्टन रोड होशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। कौलीला थ्रियोले में 54 साल की 54 years old की श्रीमती विमला रामलोचन, पैदाशी नाम लखू और जो विमला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर तीन बजे उनके पति अजय रामलोचन के मकान कौलीला थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनिस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:03 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: You're listening to RM3 Radio.

0: ना सफर, खाना सफर।
1: वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। दिन की 1:09, शुक्रवार 12 जून, और आपके साथ हैं वेदिता। प्रोग्राम चल रहा है आपके लिए सुहाना सफ़र। हमारा प्रोग्राम अभी लाइव है टिकटॉक पर, आप चाहे तो हमें वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अगर आप हमें फ़ोन करना चाहते हैं, नंबर है 7902 4007 0, और अगर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना चाहते हैं 5250 6200, यानी 5250 6200 पर आप भेज सकते हैं। और यहाँ पर हम कल्याणी हरी, रिद्धिराम की सुन, लीना, आरजे और अनुराधा का स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में, जो हमें सुन रहे हैं अभी, और बाकी हमारे गीतों का ये सिलेक्शन। चलिए भाई, इसको आगे ले चलते हैं, और गीतों के इस खूबसूरत सफ़र में बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपके कुछ पसंद के होंगे और कुछ हमारे पसंद के।

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर। चलिए तो यहाँ पर अगला गाना माला भवरो जो है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सलू खान, पामिला, रोशन, मेधा दशरथ भी हमारे साथ हैं, लेकिन हमसे बात करने के लिए कौन है हमारे साथ ये जानना जरूरी है, इनसे मिलते हैं। हेलो
2: हेलो बेटी, नमस्ते
1: जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
2: ताई से बेटी।
1: अच्छा जी, कौन है?
2: एता बेटी मुझे गुट्टम पन गला लीन दा जी वाई बेटी हो यार।
1: जी बताइए कौन है? नंदा जी।
2: नंदा जी हाँ बेटी।
1: नंदा जी आपका रेडियो सेट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है, मेरी आवाज खुद की आ रही है। हाँ जी,
2: मेरा बेटा के लानी वैसे है आज बेटी
1: जी,
2: तान लीजों के है, आशीर नाम है मेरा।
1: आपकी आपकी आवाज पीछे से शोर सब मिक्स हो रहा है, मुझे लगता है,
2: है
1: अच्छा मुझे लगता है आपने मुझे मैसेज भेजा है, आपका मैसेज मुझे मिल गया है नंदा जी, मैं उसको पढ़ती हूँ भी थोड़ी देर में। बहुत बहुत धन्यवाद खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अच्छा
1: जी ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जब भी आप हमसे फोन करें, हमसे बात करें, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको रेडियो सेट का जो वॉल्यूम है प्लीज या तो फिर उसको आप कम कर दीजिएगा, या तो फिर अगर हो सके तो आप अगर हमें लैंडलाइन से फ़ोन कर रहे हैं तो ऐसी जगह पे फ़ोन कीजिए जब रेडियो ऑन ना हो, या तो फिर आप कहीं और से हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सबकी आवाज़ें मिक्स होती है ना तो बहुत शोर होता है। तो चलिए अभी नंदा जी का फ़ोन आया था और तो उनका मैसेज भी आया है हमारे पास, तो गाना होगा नंदा जी आपके बेटे आशील के लिए जिनका आज जन्मदिन है, और गाना होगा आपकी तरफ से यानी कि मम्मा नंदा, पापा दीपक, वाइफ दिव्या, और साथ में है गुल्लू, अरवी, पुनीता, गणेश एंड सुबह फैमिली की तरफ से। और कुछ और मैसेजेस आए हैं, चलिए एक बार इनको भी पढ़ लेते हैं, व्हाट्सएप पे इन्होंने भेजा है। नमस्ते जी, हो सके तो गाना चलाएगा शारदा सभी सुंदर फैमिली के लिए, और आपको भी हमारी ओर से बोम वीकेंड। और यहाँ पर विश्वानी दुमुन हमारे साथ बाकवा से हैं और कहते हैं बढ़िया बढ़िया गाने सुनने को मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहन इंदिरा, शारदा और सहेली नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता के लिए हम मांगना चाहते हैं, वहीं पर नेक्स्ट गाना होगा आपके लिए। कहते हैं कि नमस्ते जी, आप कौन से टीम को सपोर्ट करें वर्ल्ड कप में? वैसे मैं आपको बता नहीं सकती विजय जी, अभी अभी ज़रा मुश्किल है, मेरा से हमेशा से ब्राज़ील ही फेवरेट रहा है, लेकिन जीतेगा कौन ये नहीं पता, सपोर्ट तो मैं ब्राज़ील को ही करूँगी। चलिए तो नेक्स्ट गाना जो होगा हम आपके नाम डेडिकेट करते हैं, अनीता जी साथ देने के लिए बहुत

चलिए जी, यहाँ पर मनीता जी का स्वागत करते हैं। दीक्षा उनकी मामा सिंधु के लिए गाना मांग रही हैं क्योंकि उनको पुराने गाने बड़े पसंद हैं। आशा, मनोज पीरतिया, निशा भवानी जो कि सुखी नाम से हमारे साथ जुड़ी हैं। हाय निशा, आपकी तो गुड मॉर्निंग है, हमारी गुड आफ्टरनून हो गई है। और यही गाना मार्कस और ललिता के लिए। राजी, स्वागत है आपका, वेलकम, आपके हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं हम। चलो भाई, हमारा तो काम है प्यार बांटना और हमारे पास आपको देने के लिए बस प्यार ही है जो गीतों के जरिए आपके कानों तक पहुंचता है और सीधे आपके दिल पे उतरता है। कहते हैं ना कि जिसके पास जो होता है वो वही बांट सकता है। हमारे पास प्यार है, खुशियाँ हैं, तो बस वही बांट रहे हैं। आपके पास है तो आप भी बांट सकते हैं। हमारा लाइव टिकटॉक चल रहा है और साथ में आपके मैसेजेस 5250620 पर।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: स्वागत है आपका सुहाना सफर प्रोग्राम में। और चलिए भाई, यहाँ गीतों के इस हसीन खूबसूरत सफर में लहू के दो रंग फिल्म का गाना अभी आपने सुना, और इसमें मैं बता सकती हूँ काफ़ी सारे अच्छे अच्छे गाने हैं, लेकिन हमने ये वाला गाना आपके लिए चुना। अभी बिंता, राधिका और सर्वेश हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम वेलकम करते हैं। और गाने की फरमाइश भी आई है यहाँ पर स्टाफ हम के गाने की, तो वो भी हम कोशिश करेंगे भी आपके लिए थोड़ी देर में चलाने की। फिलहाल अभी के लिए तो मेरी जंग। जी हाँ, हर कोई अपने दिल के अंदर ही अंदर बहुत सारे जंग लड़ते हैं, कोई बाहर लड़ता है, जैसे कि कुछ जंग, ये भी तो जंग ही होता है ना, कॉकरोच के पीछे जाना और चप्पल ढूंढना, चप्पल चला के उनको मारना, मच्छर मारना, चूहे भगाना, ये सारे बहुत सारे काम होते हैं। एक्चुअली यहाँ हंसाने की बात कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ कोई है। हेलो,
2: हेलो,
1: हाय,
2: नमस्ते, आ गई हूँ मैं हंसते हंसते।
1: आप जब भी आते हैं हंसते हंसते ही आते हैं।
2: कैसे हैं वेदिता जी?
1: अभी हम कॉकरोच की बात कर रहे थे कि किस तरह से कॉकरोच निकलते हैं हर तरफ से और कैसे बेचारे सबको परेशान करते हैं।
2: मुझे वो मिस्टर इंडिया का सीन याद आ गया, श्रीदेवी और अनिल कपूर कॉकरोच से डरते थे, जब फाइनली बच्चों को बुलाना पड़ा कॉकरोच भगाने के लिए।
1: देखा देखा। चलिए बताइए जी।
2: तो आज मैं लाई हूँ राही बदल गई।
1: क्यों बदल गए?
2: राही बदल कर रेडियो मनोरंजन के लाइन पर आ गए।
1: अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बस रेडियो मनोरंजन के गलियों को छोड़ के न जाए, बस यही चाहते हैं। ठीक है,
2: ओके। तो आसमान का एक सितारा,
1: आसमान का सितारा, ओके। राही बदल गए, देखा, तो राही बदल के सारे के सारे यहाँ पर आ गए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और आपने कहा आसमान से
2: आसमान का एक सितारा।
1: ओके जी, और गाना किसके?
2: बर्मन की वॉइस है।
1: जी जी जी, मुझे पता है आशा जी की आवाज है इसमें।
2: तो फॉर ऑल लिसनर्स, फॉर यू वेदिता जी, मामा कुमारी एंड ऑल जानू फैमिली, और सबको कहूंगी हैव अ ग्रेट फ्राइडे, ग्रेट इवनिंग एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड।
1: थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: और चलिए इसी के साथ अब पेश है आपके लिए मेरी जंग फिल्म का ये गाना। मीनाक्षी शेषाद्री के बहुत सारे फैंस होंगे हमारे साथ, चलिए एंजॉय करते हैं। गाना होगा शाहिद इकबाल के लिए, बबीता, नाइम सिरतन, बेबो, इंदु और साथ में वीर उनकी वाइफ शीतल के लिए गाना मांग रहे हैं जिनका आज जन्मदिन है, और साथ में अनिता पैतुब का भी हम स्वागत करते हैं।

0: ना सफर सुहाना सफर।
1: वैसे जब यहाँ पे हमारे पुराने गाने चलते हैं ना, तो किसी ना किसी को कुछ तो हो ही जाता है। अभी परी जी कहती हैं कि भाई हमें तो लगता है कि अनिल कपूर जो है वो हमारा पहला प्यार हो सकता है। कभी कभी होता है ना कि ऐसे जैसे आप किसी को पसंद कर लेते हैं, चाहे वो एक्टर हो सिंगर हो। और माधुरी जी को तो कौन पसंद है, मिथुन दा। अच्छा, उनको मिथुन दा पसंद है। जैसे उसी तरह जैसे कि हमें बिग बी पसंद है, और शायद आपको भी कोई पसंद होगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। टिकटॉक पे तो आप लाइव हमें देख ही रहे हैं। चले तो ऐसा करते हैं, आपसे ही पूछ लेते हैं कि कोई है जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बताइएगा ज़रूर। अभी फिलहाल के लिए नेक्स्ट गाना तनुजा अर्जुन, रंभा जो बिल्नुआ से साथ दे रहे हैं, और इंदिरा जी कहती हैं शाम के नाम।
2: You're listening RM Free Radio Radio Radio
1: गाना डेडिकेट करते हैं टू माय लवली फ्रेंड माया ऑफ बोबासैन।

प्यार से बड़ी और कोई चीज तो होती नहीं है, जहां पे प्यार होता है वहां सब कुछ होता है। चलिए प्यार के साथ ही यहां पर युधिष के लिए गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे और साथ में थैंक यू सो मच पूनम जी हमारे साथ जुड़े रहे। दीपक बिहारी जी स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। और चलिए गाना स्पेशली परी के नाम दीप्ति जी आपके लिए और मनीता जी साथ में माधुरी जी के लिए। ऑलमोस्ट हमारे जाने का टाइम हो रहा है लेकिन फिर भी हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं।

में से एक दो तीन करके हुए माधुरी आती हैं, लेकिन यहाँ पे तो चार तक पहुँच गए हैं। इसका मतलब ये है कि 2 बजे हमारा प्रोग्राम समाप्त होने जा रहा है, ऑलमोस्ट हमारा प्रोग्राम समाप्त होने को है। चलते चलते दानी जगरू के लिए गाना होगा, एंड ऑल्सो डेडिकेटिंग दिस वन फॉर बर्ड के, जो कि हमें इस्तांबुल से सुन रहे हैं। हाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और दुनिया के कोने कोने से कितने सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी कहेंगे थैंक यू।

अभी चलना नहीं है, अभी गाना बाकी है और सुमिला नंदलाल जी हमारे साथ हैं, तो चलिए गाना उनके नाम भी हम डेडिकेट करते हैं। ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, अब धमाका किया है तो करना ही पड़ेगा एंड तक। डांस करना ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, यू नो। सभी पूछते हैं विदिता जी आप कहाँ से हैं। भाई ये मॉरिशस का रेडियो मनोरंजन है, MBC का रेडियो मनोरंजन है और आप हमें सुन रही हैं अगर टिकटॉक पे लाइव, तो थैंक यू सो मच।

जमाना हसीनों का दीवाना और चलिए इसी के साथ अब जाने का भी टाइम हो गया चलते चलते हमारे भाई संदीप सिंह जो कि साउथ अफ्रीका से हमें सुन रहे हैं उनके लिए गाना डेडिकेट करते हैं बहुत सारा प्यार आपके लिए और हमारे साथ है लक्ष्मी जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है थैंक यू सो मच सो गाइस जाने का टाइम हो गया है कल्याणी हरी बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपसे मुलाकात करेंगे अब हम मंडे को भूलिएगा नहीं दिन के 12 बजे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर

0: टाइम चेक 2 पीएम। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। क्यूपिप की पुलिस मिडलैंड्स के एक रंच में एक व्यक्ति की मौत पर जांच कर रहा है। 40 साल के जोनाथन कुयाम टू का शव कल उस रंच की पार्किंग में उसकी गाड़ी के बगल में मिली। उसके पेट पर गोली लगी थी। उसका शव परीक्षण किया जाएगा। इस हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने एक जांच शुरू की है।

0: वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो चली है। कल मेक्सिको के अस्टेका स्टेडियम में औपचारिक समारोह लगा। इस रंगारंग कार्यक्रम में करीब 80,000 दर्शकों ने भाग लिया। इस वर्ल्ड कप के लिए 3 उद्घाटन समारोह निर्धारित हैं, जिनमें से पहला कल मेक्सिको में लगा और दूसरा आज दूसरे मेजबान देश कनाडा में निर्धारित हैं। वर्ल्ड कप की बात करते हैं। कल मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला हुआ। ग्रुप ए का पहला मैच स्कोर रहा 2-0, जिसमें मेक्सिको की जीत हुई। इसके अलावा ग्रुप ए में ही दक्षिण कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से परास्त किया। आपको याद दिला दें कि एमबीसी प्ले एप्लीकेशन पर आप ₹300 में वर्ल्ड कप की सभी मैच देख पाएंगे। इसके लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। आज रात बोस्निया और कनाडा की टीमें आपस में टकराएंगी। मैच का सीधा प्रसारण आज रात 11 बजे किया जाएगा। इससे पहले मेजबान देश कनाडा में रात 8:30 बजे से उद्घाटन समारोह आप देख पाएंगे। विदेश की खबरों में थाईलैंड शोक में डूब गया है। वहां की राजकुमारी का निधन 47 साल की उम्र में हो गया है। 2 साल पहले वे दिल की बीमारी के कारण अचानक बेहोश हो गई थी और तब से कोमा में थी। वे थाईलैंड के राजा की 7 संतानों में से सबसे बड़ी और पहली उत्तराधिकारी भी थी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: RM3 Radio, Radio, Radio.
3: Geet, Nritya aur Parampara.
4: आपका जाना पहचाना कार्यक्रम गीत नृत्य और परंपरा, आप इससे जुड़ चुके हैं। आज हमारी टीम में हैं उरुसा जी और साथ में भाई यूसुफ साथ दे रहे हैं और प्रोडक्शन सीट पे बैठे हुए हैं रितेश महावीर जी, जो सहयोग दे रहे हैं आप तक कार्यक्रम पहुंचाने में। श्रोताओं, फेसबुक लाइव से भी जो जुड़े हैं, आप सबका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हमारी अतिथि हैं श्रीमती निवेदिता स्वरूप प्रताप जी, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं गीत नृत्य और परंपरा कार्यक्रम में। आप शिक्षा मंत्रालय से नृत्य शिक्षक हैं और आजकल आप पाई में कार्यरत हैं। आप छात्रों के साथ जुड़ी हुई हैं। आप सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके लिए नृत्य क्या है? नृत्य कब से किया, कैसे किया, सब थोड़ा सा श्रोताओं को बताएं।
5: सबसे पहले मैं आपको नमस्ते करती हूँ।
4: नमस्कार।
5: और अपनी सभी श्रोताओं को, दर्शकों को और नृत्य प्रेमियों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले मैं रेडियो स्टूडियो की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज आपने मुझे इस मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया।
4: ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम एक नृत्यांगना से उनके विचार जान पा रहे हैं कि नृत्य उनके लिए क्या है।
5: धन्यवाद। मेरे लिए शास्त्रीय नृत्य केवल मनोरंजन या कला नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, भाव, परंपरा, संस्कृति और आत्म अभिव्यक्ति का एक सुंदर संगम है।
4: बहुत खूब।
5: इसमें शरीर की गति के माध्यम से मन और आत्मा की भाषा बोलता है। इसमें हर मुद्रा, हर ताल, हर दृष्टि, वो हर एक वो प्राचीन परंपरा से जुड़ी है। वो हमारे संस्कृति को दर्शाता है, हमारे जो पुरानी जो प्रथाएं हैं इन सब को दर्शाता है। और नृत्य के माध्यम से हम समर्पण को भी सीखते हैं। ये हमें ईश्वर से जुड़ने की जो अनुभूति है वो कराती है।
4: बहुत सुंदर।
5: हाँ, तो मेरे लिए ये एक आध्यात्मिक
4: प्रक्रिया है। बहुत सुंदर आपने जो विचार हमारे साथ

0: साझा किए, पर आप किस उम्र से नृत्य से जुड़ी?
1: मैं 11 वर्ष की उम्र से नृत्य मैंने शुरू किया सीखना।
0: घर पर या के सिनेमा देखकर, या के आप में रुचि थी, आपने किसी गुरु से प्रशिक्षण पाया, कैसे?
1: वो मुझ में वो बचपन से ही वो रुचि थी बहुत नृत्य का, और इसमें मेरे माता पिता ने मुझे बहुत

0: से ही मैं सीखी, उनके यहाँ गई थी, थोड़ा वो बेसिक्स सीखा, फिर उसके बाद 3 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया वो महात्मा गांधी संस्था से, जो हाँ जो वो देते हैं स्कूल में, तो 3 साल का सर्टिफिकेट कोर्स चला। उसके बाद एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स 2 साल, उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा, फिर आया बीए 2 साल का, फिर मास्टर्स और 2 साल का
1: महात्मा
0: गांधी संस्था से। मैंने ये पूरी जो शिक्षा है मॉरिशस से ही पूरी की है और इस तरह से मेरा जो भरतनाट्यम सीखने की जो यात्रा है वो लगातार आगे बढ़ता गया
1: हाँ। पर इस यात्रा में जो पहला कदम था वो आपके लिए कैसा रहा?
0: वो बहुत मतलब
1: कठिन था, आसान था, रुचिपूर्ण था, कैसा रहा?
0: जोश था इतना कि कठिन नहीं लगा,
1: कठिन नहीं लगा,
0: इतना जोश था, वो रुचि था कि नहीं सीखना ही सीखना है।
1: और कभी आपने देखा होगा कि लोक नृत्य यहाँ पर जो चलते हैं, जैसे गीत गवाई में होता है, लोक नृत्य ही है, लोक संगीत के साथ लोग नाचते भी हैं, तो लोक नृत्य सब कर लेते हैं, पर शास्त्रीय नृत्य की ओर आपका झुकाव कैसे? क्योंकि गीत गवाई में तो बड़े सिंपल स्टेप्स, जो भी जैसे भी नाचता है वो नाच लेता है, पर भरतनाट्यम तो एक बहुत पुरानी नृत्य शैली है, उसमें आपकी रुचि कैसे बढ़ी कि आपको लगा कि मुझे महात्मा गांधी संस्थान से जुड़ के ये प्रशिक्षण पूरा करना है?
0: हाँ, इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी
1: जी,
0: उन्होंने
1: आपको प्रोत्साहित किया,
0: जो संस्कार दिए, जो सांस्कृतिक मतलब
1: आपको संस्कृति से जोड़ा,
0: हाँ संस्कृति से जुड़े रखा कि ये सब सीखना है, और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि इस क्षेत्र में आगे जाओ, पढ़ो, सीखो, और उसका जो धार्मिक जो एसोसिएशंस हैं उसको भी समझो। और जब पहले जब मतलब जब छोटी थी जब शुरू किया तो उस समय तो कॉस्ट्यूम वगैरह नहीं मिलता था भरतनाट्यम का
1: जी,
0: वो आसान नहीं था, तो मेरी माँ अपनी पुरानी साड़ियों को काट कर मेरे लिए वो खुद कॉस्ट्यूम बनाती थी ताकि मैं स्कूल में प्रस्तुत कर सकूं इस तरह से। और जैसे जैसे मैं सीखती गई उससे और मेरी रुचि बढ़ती गई कि इसको गहराई से जानना है।
1: जब आपने गहराई से जाना तो आपके लिए भरतनाट्यम क्या है ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: मेरे लिए भरतनाट्यम स्पिरिचुअलिटी है, मतलब ईश्वर है, शिव जी हैं।
1: हाँ। तो भरतनाट्यम एक बहुत पुरानी शैली है भारत से जो प्रारंभ हुई, उसके बारे में आप क्या जानती हैं? और इस जानकारी के साथ साथ आप ये भी हमें बताइएगा कि भरतनाट्यम यहाँ पर मॉरिशस में कैसे शुरू हुआ, क्योंकि पहले तो ये भारत में था पर बाद में ये कला मॉरिशस में भी बहुत से लोग इससे प्रभावित भी हैं, सीखते भी हैं, कैसे?
0: पहले मैं आपको भारत में बताऊं
1: कि
0: ये भरतनाट्यम वो
1: का इतिहास,
0: हाँ वो दक्षिण भारत से तमिलनाडु राज्य से
1: शुरू
0: हुआ था, और इसकी शुरुआत मंदिरों में हुआ था
1: जी,
0: वहाँ पर जो मतलब धार्मिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो पूजा पद्धति होती हैं, ये भरतनाट्यम इसमें एक महत्वपूर्ण
1: अंग है उसका,
0: अंग का हाँ अंग था, तो इस प्रकार से किया जाता था मंदिरों में, और एक तरह से ये लोगों को भी सिखाती थी कि मतलब जो नहीं पढ़ पाते थे उस समय, जो रामायण जो हैं, जो हमारे महाभारत जो हैं, जो हमारे पौराणिक कथाएं जो हैं, हाँ नहीं पढ़ पाते थे, तो नृत्य के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते थे ये सभी कथाएं, लोगों को सिखाते थे इस तरह से,
1: उन कथाओं को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित करते थे।
0: हाँ।
1: तो उसमें चेहरे की भाव भंगिमा, मुद्राएं, हाथों के, पैरों के,
0: हाँ तो इसको हम शास्त्रीय क्यों कहते हैं, भरतनाट्यम को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों पर आधारित है।
1: बिल्कुल
0: नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण

0: पर आधारित है हमारी जो भरतनाट्यम
1: जी।
0: और इसके साथ साथ ये ना कि भरतनाट्यम जो मतलब नृत्य के जो मूवमेंट्स हैं ये सीखा और हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे श्लोक भी आते हैं जो हमें सीखने पड़ती हैं, यानी कि मतलब हाथों का जो हो, एक जो होता है हमारा असंयुक्त हस्त, एक लंबा सा श्लोक आता है जिसमें हर एक सिंगल हैंड जेस्चर जो एक हाथ से की जाती है इसको बताया गया है। फिर आता है हमारा संयुक्त हस्त, उनका भी श्लोक। और इन सभी श्लोकों को अच्छी उच्चारण से,
1: शुद्ध उच्चारण करके,
0: हाँ, अच्छी उच्चारण से, और जो जिस मतलब छंद में जो इसको बनाया गया है उसी प्रकार से ऊंची आवाज में उसको बोलना है। और साथ ही साथ जो हस्त मुद्राएं हैं उनको भी साथ ही साथ में बोलना,
1: प्रदर्शित
0: है।
1: करना है,
0: हाँ, ना कि अब तो वो हाथों का हो गया, फिर वो आंखों का होता है दृष्टि सर, फिर वो ग्रीव का भी भेद होता है, ये सब होता है। और बच्चों को सिखाते समय उच्चारण पर ध्यान लाना है कि किस तरह से बोलते जाना है और करते भी जाना है,
1: तो वो तालमेल आवश्यक है,
0: हाँ, न कि जैसे आया बोल दिया, नहीं, उच्चारण मतलब सही
1: होना चाहिए,
0: होना चाहिए
1: बिल्कुल,
0: हाँ।
1: तो उसके लिए अच्छा प्रशिक्षण भी होना अनिवार्य है,
0: हाँ,
1: बिल्कुल। और अब मैं पूछना चाहूंगी कि मॉरिशस में भरतनाट्यम कैसे शुरू हुआ?
0: भरतनाट्यम सन 1975 जब महात्मा गांधी संस्थान वो खुलने वाला था, तो उसी समय मेरी गुरु जो थी, जो है अभी, वो आई थी मॉरिशस, मिसिज संध्या मंगर। वो महात्मा गांधी संस्था से जुड़ी, बातचीत चला, फिर उसने कड़ी मेहनत से, बहुत लगन से ये भरतनाट्यम को शुरू करने का जो कार्य था वो शुरू किया। और वो हमेशा कहती हैं कि ये उसके लिए शुरुआत में आसान नहीं था,
1: कोई भी कार्य शुरू करो तो आसान नहीं होता है,
0: हाँ, और
1: बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है,
0: हाँ, लोगों को इंटरेस्ट नहीं था उस समय, क्योंकि वे नहीं चाहते थे, जो हमारे जो पूर्वज आए हैं जो भारत से मॉरिशस आए थे, तो उन लोगों को वो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का जो डॉग पीरियड है वो उन सब से उसका परिचय था
1: जी,
0: उन लोगों को
1: जी।
0: वो जानते थे कि किस तरह से वो हमारी जो शास्त्रीय संगीत और नृत्य हमारे मंदिरों को छोड़कर दरबारों में चला गया,
1: दरबारों में गया,
0: तो जो हमारे जो देवदासी थे उस समय, जो देवदासी यानी कि जो भगवान की सेवा में नृत्य करने वाली जो लड़कियां थे
1: जी,
0: उन लोगों को बहुत परेशानी कष्ट उठाना पड़ा, और समाज में उन लोगों को जिस सम्मान से देखा जाता था अब वो सब छूट गया,
1: इज्जत नहीं मिली,
0: इज्जत नहीं मिली। तो जब यहाँ शुरू हुआ तो जब हम जो हमारे जो बिहार से आए थे, यूपी से आए थे, उन लोगों को नहीं चाहिए था कि अपनी बेटियों को क्यों इन सब में डालें, क्यों सीखें। तो यहाँ पर मिसिज मंगर ने बहुत मेहनत की, वो घर घर जाकर एक एक परिवार से मिलकर समझाया कि क्यों सीखना है, कहाँ से आती है ये नृत्य
1: शैली जो है भारतनाट्यम, हाँ, शास्त्रीय
0: है,
1: जुड़ी हुई है,
0: जुड़ी
1: और हमारे
0: है,
1: वेदों
0: आपके
1: से जुड़ी
0: बच्चे
1: है।
0: क्या सीखेंगे, उनको क्या लाभ होगा, इन सब को घर घर जाकर, क्योंकि वो कहती हैं कि जो उसको रेस्पॉन्स मिला कि मतलब लोगों से कि हमें अपनी बेटियों को नचनिया नहीं बनानी,
1: नहीं बनाना
0: है इस तरह से, क्योंकि उस समय तो था
1: थोड़ी नीची नजर से देखते थे,
0: हाँ, क्योंकि वो प्राचीन काल में ऐसा कुछ हुआ था
1: जी,
0: इसलिए ये सब
1: वो सम्मान नहीं मिलता था,
0: हाँ,
1: जो महिलाएं नृत्य करती
0: थी,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: फिर उन्होंने शुरू किया, पहली कक्षा में जो उसका सिस्टमैटिक ट्रेनिंग शुरू हुआ, उसने शुरू किया महात्मा गांधी संस्थान में, उस समय तो केवल 7 बच्चे थे जब शुरू किया। फिर 3 साल बाद लगभग 75 बच्चे जुड़
1: गए,
0: हाँ, जुड़ गए,
1: तो संख्या बढ़ गई,
0: संख्या बढ़
1: तो
0: गई,
1: लोगों की रुचि बढ़ी, इसलिए
0: तो धीरे धीरे उसने अपनी ये मेहनत परिश्रम, उसका जो एम था वो हाई रखा, उसी की मेहनत के द्वारा ही ये सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हुआ जिसमें मेरा लाभ हुआ।

0: हुआ
1: बिल्कुल
0: फिर बाकी सब आया वो जो एडवांस सर्टिफिकेट डिप्लोमा बीए फिर एमए तक उन्होंने
1: पढ़ाया
0: हाँ
1: तो ये प्रक्रिया लंबा समय भी लगा उसमें पर आज भरतनाट्यम बहुत अच्छे सम्मान के साथ देखा जाता है
0: जो भी अब तो हमारे स्कूल में है
1: बिल्कुल
0: हमारे जो मॉरिशस देश के हर स्टेट स्कूल्स में भरतनाट्यम सिखाई जाती है
1: कथक भी सिखाया जाता है
0: कथक भी सिखाई जाती है
1: और कौन सी शैली है जो सिखाई जाती है
0: कुचिपुड़ी भी
1: केवल तीन आठ शास्त्रीय नृत्यों में से तीन मॉरिशस में
0: बराबर सिखाए
1: जाते हैं बहुत अच्छी बात है कार्यक्रम को सजाने के लिए यूसुफ भाई से निवेदन करेंगे कि एक गीत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं चर्चा इसके बाद हमारी जारी रहेगी

0: साहित्य और परंपरा।
1: एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। फेसबुक लाइव जो जुड़े हुए हैं आप सबका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आज हमारे साथ निवेदिता जी जुड़ी हुई हैं, जो कि पाई के स्कूल में नृत्य सिखाती हैं, भरतनाट्यम सिखाती हैं, बच्चों को कैसे प्रभावित कर

0: करते हैं, कैसे उनके साथ आप शिक्षण प्रदान करती हैं उनको, आप हमें बताएं कि आपको डील करने में छात्रों के साथ कोई समस्या आती है या कि आसानी से आप उनको सिखा पाती हैं?
1: इतना आसान भी नहीं रहता हमेशा
0: जी,
1: और इतना कठिन भी नहीं होता। अभी हमारे बच्चे जेन ज़ी से हैं तो उन लोगों में वो डिफरेंस है अभी के बच्चे से और पहले से।
0: पुराने
1: हाँ,
0: तो 10 वर्ष पीछे क्या था और आज क्या है?
1: बच्चे ज़्यादातर मतलब ओबीडियंट थे कहीं ना कहीं
0: पहले जी।
1: अभी उन लोगों को बात मनवाने में थोड़ी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ती है
0: जी।
1: डायरेक्ट ही कहेंगे कि ये करना है वो करना है, उन लोगों को पसंद नहीं है, तो थोड़ा स्ट्रैटेजी हमें अडॉप्ट करके
0: थोड़ी स्ट्रैटेजी डेवलप
1: करनी पड़ती है उनके साथ। हाँ,
0: वो क्या है?
1: उन लोगों को
0: सबसे पहले तो आप करके दिखाती होंगी।
1: हाँ, मैं करती हूँ ताकि उन लोगों की रुचि बढ़े। तब वो देखकर मतलब वो वाव करेंगे कि
0: कोई एग्जांपल दे पाती है कि हिंदी सिनेमा में ऐसे है, और कोई एग्जांपल प्रस्तुत करती हैं उनके लिए, या के केवल शास्त्रीय नृत्य ही है इसलिए उसको शास्त्रीय नृत्य की।
1: शास्त्रीय नृत्य की जो टेक्निक आप सिखा रही हैं तो शास्त्रीय नृत्य का ही आप कुछ दिखाएंगी
0: जी,
1: जो आप तो सिखा रही हैं।
0: हिंदी सिनेमा में भी शास्त्रीय संगीत के कितने उदाहरण हैं।
1: हाँ हाँ,
0: तो वो दिखाती हैं आप?
1: कभी कभार मैं वो यूट्यूब का थोड़ा
0: क्लिप दिखाती हैं,
1: क्लिप दिखाती हूँ कि किस तरह से वो करते हैं, किस तरह से मूवमेंट्स को वो थोड़ा अडॉप्ट करके
0: बदल देते हैं
1: कभी, तो थोड़ा कंपेयर कंट्रास्ट भी हो जाता है किस तरह से वो अंग शुद्धम वो हमारे हिंदी सिनेमा में है कि नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: इस तरह से
0: जी,
1: तो थोड़ा उन लोगों का भी वो देखने का नज़रिया वो बदली, और वो खुद में भी वो मतलब वो चीज़ देखें और समझें कि वो कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो भरतनाट्यम है इसमें अंग शुद्धम जो भी हमारे जो शास्त्रीय शैलियाँ हैं, अंग शुद्धम का होना बहुत ही मतलब अनिवार्य है। अंग शुद्धम यानी कि जो क्लैरिटी ऑफ मूवमेंट्स हैं, किस तरह से खड़ा होना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से मूवमेंट्स को करना है, सब बहुत ही महत्व।
0: किस प्रकार मंच पर प्रस्तुत करना है?
1: हाँ, तो मंच तो बाद में आती है ना, अभी
0: कक्षा में
1: पहली बात जो हम जो जब शुरू करते हैं तो अनुशासन इसका मतलब ये मस्ट ही है
0: जी।
1: अपने बच्चे अपने जूते निकाल कर वो कक्षा में आती हैं, उनको पता है कि कक्षा में खाना नहीं है, बात नहीं करना है। फिर हमारा वो वार्मिंग अप एक्सरसाइज होता है ताकि हम बॉडी को तैयार करें, शरीर को थोड़ा वो मतलब नृत्य के लिए तैयार किया जाए। फिर हमारा जो है नमस्कार
0: ये
1: बहुत ही आवश्यक है, इसको बच्चों के साथ विस्तार से समझाना पड़ता है कि क्यों करना है, ना कि कक्षा में आए 1 2 3 4 वो किया और हो गया, नहीं, उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है कि क्यों कर रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं करना है ये। इसमें जब हम नमस्कार करते हैं तो हम गुरु को प्रणाम करते हैं, ईश्वर को प्रणाम करते हैं,
0: धरती माँ को प्रणाम करते हैं,
1: माता पिता को करते हैं, धरती माँ को प्रणाम करके उनसे क्षमा मांग कर, क्योंकि जब हम नृत्य करते हैं तो हमारे जो पैर है वो माँ है ना
0: जी,
1: इसलिए तो सम्मान की जो हम सम्मान देते हैं बच्चों को, ये सिखाते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं कि अगर धरती माँ को इस तरह से हमें सम्मान देना है तो जन्म देने वाली माँ भी सम्मान देना है।
0: बिल्कुल,
1: जो तुम सीख रहे हो अभी कक्षा में इसको तुम्हें प्रैक्टिस में लाना है जीवन में,
0: तो अपने आप ही धरती माँ माता फिर शास्त्र, क्योंकि शास्त्रीय संगीत है तो शास्त्रों को भी सम्मान देना है हमें, क्योंकि ये हमारी पुरानी परंपरा है, शास्त्रों को सम्मान देना है। छात्रों के साथ डील करने में कोई समस्या आती है आपको?
1: कभी कभार आती है, कभी कभार उन लोगों को कुछ मूवमेंट्स नहीं आते
0: जी,
1: तब वो मतलब अब नहीं करेंगे, थक गए हैं, ऐसा भी होता है उनका।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो थोड़ा सी प्रशंसा कर लीजिए
0: छात्रों की
1: अभी देखो तुम अब तो तुम्हें आ रहा है बहुत अच्छा, तब तो वो करेंगे फिर।
0: बिल्कुल,
1: और कभी कभार
0: देना है,
1: हाँ, बढ़ावा देना है, प्रोत्साहित करना है, और उनको मंच

0: भी देना चाहिए, मतलब जो हमारे स्कूल की जो कार्यक्रम चलते हैं वो अभी
1: दिवस
0: का, हाँ, जो हमारी प्राइज गिविंग का होता है
1: जी,
0: तो हम बच्चों को तैयार करते हैं कि तुम जाओ परफॉर्म करो, तो जो तुम कक्षा में सीख रही हो, क्योंकि वो कभी कभार रेडी नहीं होते कि नहीं नहीं नहीं कक्षा तक ठीक है लेकिन मुझे वो स्टेज पर नहीं जाना,
1: वो तो हमें मंच का भय है
0: तो हम
1: फोबिया होता है कुछ में नहीं होता है
0: लेकिन हमारा ये जो मतलब
1: उद्देश्य है
0: हाँ कि हम उन लोगों को प्रोत्साहित करें कि तुम कर लोगे, तुम्हें तो अकेले नहीं जाना है, साथ में जाना है, ग्रुप करते हैं
1: जी,
0: ताकि सबको वो अवसर मिले और इस अवसर से वो खुद पर वो विश्वास करें, वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है
1: बिल्कुल
0: उनको उनका वो निखर कर आए, ताकि वो अभी मतलब छोटे हैं, बाद में इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, काम के लिए उन लोगों को तैयार करना पड़ता है
1: बिल्कुल।
0: तो ये केवल नृत्य, केवल ये मूवमेंट सिखाना नहीं है कि कैसे शरीर को इस प्रकार से उस प्रकार से करना है, नहीं, बच्चों को और बहुत सारे
1: सर्वांगीण विकास,
0: हाँ, उस इस तरह से
1: ऑलराउंड डेवलपमेंट
0: इस तरह से तैयार
1: करना है।
0: एक आपने कुछ चीज सिखाई तो आप मतलब जो डेली लाइफ का है उदाहरण देकर आप कंपेयर कंट्रास्ट करेंगे कि इस तरह से करना है, टोन किस तरह से, टोन मूवमेंट्स में कि मतलब रुको रुको
1: अंतर आ गया।
0: तो घर पर भी कुछ कहना है तो अपनी टोन का भी ध्यान रखना चाहिए
1: बिल्कुल,
0: माता पिता का सम्मान ये सब। और जब ये मतलब अभी हम तो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं तो हमारी तो टीनेजर्स ज़्यादातर उनसे हम
1: वास्ता पड़ता है आपका।
0: हाँ, तो उन लोगों को किस तरह से अपनी जो ऊर्जा है उनको पॉजिटिव मिलाना है, गाइड करना पड़ता है। तो ओवरऑल मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट इन सब का ध्यान रखते हुए हमें सिखाना है।
1: तो इसमें आपने उनको डिसिप्लिन भी सिखाया, उनको शास्त्रों से भी जोड़ा, उनको एक दूसरे का सम्मान और एक टीम बिल्डिंग, मतलब जब मंच पे जा रहे हैं तो एक ग्रुप जा रहा है तो वो टीम बिल्डिंग ही आई। हाँ। तो ऐसे ही आप सर्वांगीण विकास की ओर भी उनको बढ़ा रही हैं।
0: और कभी कभार तो कथाएं भी उन लोगों को सुनाना पड़ता है
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अभी कितने बच्चे हमारे मंदिरों से जुड़े हैं आपको पता है कि रियलिटी क्या है
1: जी,
0: क्योंकि उन लोगों का बहुत कुछ चल रहा होता है, अभी कुछ कह नहीं सकती, लेकिन स्कूल में हमारे नृत्य की कक्षा में आपको पौराणिक कथाएं भी मिलेंगी, हमारी देवी देवताओं की जो महिमा है
1: जी,
0: किस तरह से और उनको ये सब बताते समय किस तरह से इसका प्रयोग हमारे नृत्य में होता है, हाव भाव कैसे होता है, किस परिस्थिति में, मान लीजिए कि सीता उसकी परिस्थिति में वो कैसे उनकी जो भाव है उसको परख कर आपको समझ कर फिर करना होता है
1: बिल्कुल
0: नृत्य में। अगर मैं एक बात जोड़ सकती हूँ, डॉक्टर अनुपमा कैलाश के शब्दों में, वो खुद एक शास्त्रीय नृत्य की विद्वान है, वो कहती हैं कि नृत्य, हाँ, हमारी जो शास्त्रीय नृत्य हैं इसमें दो मेन एस्पेक्ट्स आते हैं, इस एक तो वो नृत्य और दूसरा नृत्य। नृत्य क्या है, नृत्य इसमें ज़्यादातर वो टेक्निक्स, शरीर को, पूरे शरीर को मतलब हाथ को पैर को सब टेक्निक से जुड़कर दिखाते हैं, मतलब अलग अलग गति में
1: जी
0: वो टेक्निक्स दिखाते हैं किस तरह से मूव करना होता है
1: बिल्कुल
0: ये सब। और जो नृत्य है उसको एक्सप्रेशनल डांस, नृत्य प्योर डांस, नृत्य एक्सप्रेशनल डांस। यहाँ पर हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो हमारी रामायण और महाभारत है, यहाँ पर ये उसका उपयोग होता है कि हम किस तरह से इन सब को एक कथा के माध्यम से, वो हम नृत्य के माध्यम से हम सुनाएं, हम लोगों तक पहुंचाएं। हाँ,
1: क्योंकि पहले यही सबसे आसान रास्ता था कि नृत्य या गीत कंठस्थ होते थे, वो अपने किसी भी शैली में प्रस्तुत करते थे ताकि दूसरों तक वो पहुंच पाए संदेश।
0: हाँ, तो जब मैं आपसे कह रही थी कि डॉक्टर अनुपमा कैलाश

0: आश वो कहती है कि नृत्य आपको आपके शरीर को एम्प्टी करता है। जब आप नृत्य करते हैं
1: जी,
0: नृत्य करते हैं तो आपके शरीर को एम्प्टी करता है, क्योंकि शरीर क्या है, एक माध्यम है।
1: बिल्कुल,
0: हमारी आत्मा बसती है इसमें
1: जी,
0: तो हम ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। उसमें जो स्पेस बनता है वो देवी देवताओं को जैसे एक आवाहन होती
1: आवाहन है। होता है
0: इस तरह से
1: कि बहुत सुंदर
0: कि आप जो नृत्य कर रहे हैं, आपकी पसीना छूट रहे हैं, आपका ध्यान वो
1: बिल्कुल केंद्रित है।
0: हाँ, बिल्कुल केंद्रित है, आपने ये सब किया तो ध्यान, एक तरह का ध्यान हुआ आपका, क्योंकि अभी आपका फोकस यहाँ वहाँ नहीं जा सकता, संगीत पर है, आपके स्टेप्स पर है, आपके हाथों पर है, मतलब पूरा ध्यान
1: भंगिमा पर रहेगा केंद्रित।
0: तो इस तरह से ये एक आवाहन होता है
1: जी,
0: आप आपका जो पूरा जो है आपके शरीर में वो गया, वो भीतर एक स्पेस हुआ और इसमें देवी देवता का वास होता है। और जब आप नृत्य करते हैं, अभिनय करते हैं तो हम एक दूसरे करैक्टर, मतलब एक पर्सोना को अपने ऊपर लेते हैं
1: जी।
0: मान लीजिए आप सीता कर रहे हैं तो आपको सीता की करैक्टर को समझ के उस परिस्थिति में वो कैसे फील कर रहे हैं, उस हाव भाव को किस तरह से प्रस्तुत करना,
1: समझ के प्रस्तुत करना है।
0: और अब मतलब डिफरेंट करैक्टर्स की डिफरेंट हाव भाव, जैसे कि सीता और राधा को लेते हैं
1: जी,
0: तो इसमें अंतर आएगा।
1: बिल्कुल,
0: राधा की करैक्टर तो सीता से
1: बिल्कुल
0: ही हाँ, तो दोनों को समझ के ज़्यादा ना हो जाए। मान लीजिए राम जी, अब जब श्री राम को दिखाते हैं तो उसमें वो गर्व नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए, तो इस तरह से बच्चों को सिखाते हैं, इस तरह से
1: आप उदाहरण देकर सिखाती हैं।
0: हाँ, उदाहरण देकर
1: और पुरानी कथाओं के माध्यम से भी
0: जी,
1: उन तक वो संदेश पहुंचता है
0: जी।
1: कभी ऐसा हुआ कि किसी माता पिता ने कहा कि बच्चों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, या माता पिता को कोई लगा कि यहाँ पे कुछ गलत है या कुछ सही है, कुछ बहुत अच्छा है तो आपकी प्रशंसा भी करने आते हैं स्कूल में, या कुछ ऐसा होता है?
0: नहीं, प्रशंसा
1: छात्रों के साथ
0: नहीं,
1: या मतलब अभिभावकों के साथ,
0: माता पिता ऐसे ही नहीं आते हैं स्कूल,
1: पेरेंट्स टीचर्स डे होता है।
0: हाँ, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं
1: जी,
0: लेकिन जब कुछ समस्या होती है, कभी कभार बच्चों को मतलब कंप्लेन होता है कि पैरों का दर्द हो रहा है
1: जी,
0: तब घर जाकर पता नहीं क्या क्या कहेंगे अपने माता पिता को। यहाँ पर मैं थोड़ा स्ट्रेस देना चाहूँगी कि माता पिता को अपनी ओर से सोचना चाहिए कि बच्चों को आप भी प्रोत्साहित कीजिए कि तुम जाकर सीखो, ये तुम्हारे स्कूल में उपलब्ध हैं, ये सारे फैसिलिटीज ये तुम्हें स्कूल में मिल रहा है,
1: बिल्कुल
0: तुम्हें तो लाभ उठाना चाहिए।
1: और हमारे देश में ऐसी सुविधाएं हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है,
0: गर्व की बात है,
1: प्रत्येक विद्यालय में ऐसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: हाँ, तो आप उन लोगों को सीखना चाहिए। अब थोड़ी से पैर की जो समस्या हुई, अब चिट्ठी आएगा पेरेंट्स की ओर से कि
1: आज मेरे छात्र को नहीं,
0: हाँ वो नहीं करेंगे या आज से करना ही छोड़ देंगे, तो ये सही नहीं है, क्योंकि आप तरह से देखें कि हमारे बच्चों में जो फिजिकल स्ट्रेंथ है अभी ये कम, हम जब कक्षा में देखते हैं तो उन लोगों का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम लगता है, हमें बहुत जोर और बहुत प्रैक्टिस से वो स्ट्रेंथ बनानी पड़ती है, इसलिए वो थक जाते हैं। तो शुरू में पैरों का दर्द आना तो ये तो स्वाभाविक है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है
1: वो बढ़ जाती है।
0: और ऐसे तो देखा जाए, अगर उसकी आध्यात्मिकता ना देखें तो फिजिकल एक्टिविटी की, एक्सरसाइज की नज़रिए से देखें तो लोगों बच्चों को करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल, जब इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उनका पूरा फायदा उठाना चाहिए
0: जी।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगी कि गीत गवाई हमारे देश की धरोहर है, गीत गवाई इज अ लिस्टेड हेरिटेज फॉर हमारे लिए,
0: तो यूनेस्को में भी आ गया।
1: बिल्कुल, तो गीत गवाई के लिए आप क्या सोचती हैं कि वो पारंपरिक गीत जो हमारे लोक गीत हैं वो अच्छे हैं, या कि आज उनमें कुछ बदलाव है जो आपको नहीं पसंद है, या कुछ ऐसा अच्छा

0: हो रहा है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में आपका क्या विचार है?
1: गीत गवाई मुझे बहुत पसंद है
0: जी,
1: क्योंकि वो हमारे परंपरा से जुड़ी है।
0: बिल्कुल,
1: ये हमारे जो पूर्वज आए थे अपने साथ लाए थे,
0: बिल्कुल
1: ये अभी तक चल रहा है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और
0: लोकगीत हैं, लोक नृत्य है,
1: हाँ ये सब। और जब हमारी नानियाँ दादियाँ करते हैं,
0: और उनमें सच्चाई है उन गीतों में,
1: सच्चाई है इन गीतों में। और जो नृत्य करते हैं उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए होता है।
0: बिल्कुल,
1: वो मतलब मान लीजिए एक घंटा या डेढ़ घंटे या
0: दो घंटे भी चलता है कई बार,
1: इतने समय तक वो कर रही है
0: जी।
1: हमको ही मतलब आपको करना पड़े तो आप थक जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन वो सब कर रहे हैं। और उसकी जो खास बात है जो मुझे बहुत पसंद है कि उनमें देवी देवताओं की जो
0: पूजन होता है जी,
1: जो हमारे जो विवाह संस्कार से पहले किस तरह से वो देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनकी गीत मतलब सब गाकर करते हैं, फिर ढोलक पूजा।
0: हाँ, ढोलक पूजा होती है,
1: ढोलक पूजा को महत्व दिया जाता है कि
0: धरती पूजन को भी,
1: धरती पूजन को भी। ये दोनों मुझे बहुत पसंद है कि आज तक ये कर रहे हैं हमारी जो दादियां हैं, चाचियां हैं। लेकिन अभी बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे विचार में शायद नहीं आना चाहिए, क्योंकि
0: वो ये क्या है,
1: ये हमारी परंपरा है।
0: नहीं वो मतलब जो चीज़ नहीं आपको पसंद,
1: जिस
0: है।
1: तरह से वो अपने आप को वो तैयार करती हैं, मतलब जो पोशाक
0: जी, जो परिधान उनका सही हाँ, नहीं है,
1: कभी कभार ये सही नहीं है। और जो बॉलीवुड के गाने आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, अभी तो
0: वो फ्यूजन हो जाता है,
1: फ्यूजन हो जाता है। हाँ, वो ट्रेडिशनल जो परंपरा जो हमारी है ये अभी थोड़ी
0: कम हो जाती है,
1: कम हो जाती है। हाँ,
0: तो आप चाहती है कि वो परंपरा जो है बड़े सम्मान से बनी रहे, उसमें बदलाव ना लाया जाए,
1: हम उसको सीखें।
0: बिल्कुल,
1: बदलाव जरूरी है, लेकिन वो परंपरा को भी रखना,
0: ध्यान में रखें।
1: हाँ, ये भी तो
0: बदलाव थोड़ा सा हो तो अच्छा है, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो परंपरागत
1: हाँ,
0: जो परंपराएं चल रही हैं उनमें कमी देखी जाएगी।
1: हाँ
0: जी, चलिए एक गीत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, फिर चर्चा जारी रहेगी।

0: गीत नृत्य और परंपरा।
1: कार्यक्रम में चर्चा जारी रखते हैं। निवेदिता जी हमारे साथ हैं। निवेदिता जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप छात्रों को तो सिखाती हैं, पर कभी आप स्वयं भी मंच प्रदर्शन पर जुड़ती हैं? कभी कभी जैसे केंद्रीय गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र है, महात्मा गांधी संस्थान है, वहाँ पर बहुत से कार्यक्रम होते हैं, आप उसमें भाग लेती हैं?
2: हम करते हैं, जब भी वो मौका मिलती है तो हम महात्मा गांधी संस्थान से जुड़ जाते हैं, और हमारे मिनिस्ट्री की ओर से भी कभी कभार वो मतलब
1: कार्यक्रम किए जाते हैं।
2: हाँ,
1: तो उसमें आपका एकल प्रदर्शन होता है या के पूरा ग्रुप होता है?
2: ग्रुप होता है
1: तो उसमें आप इम्प्रोवाइज कर पाती हैं?
2: नहीं, जब ग्रुप होता है तो इम्प्रोवाइज नहीं कर सकती,
1: वो लिमिट ही नहीं होती है।
2: हाँ,
1: क्योंकि वो ग्रुप परफॉर्मेंस है।
2: हाँ,
1: पर जब आप एकल प्रदर्शन कर रही हैं, कभी होता है कि स्कूल में या प्राइज गिविंग सेरेमनी में कभी आपने एकल प्रदर्शन किया हो और तैयारी कुछ और हो और इम्प्रोवाइज करके वहाँ पर बेहतर कर दिया हो?
2: हाँ, अगर कुछ छूट गया वो मन से
1: तैयारी में
2: तो इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट, क्योंकि आप खड़े होकर नहीं देख सकते कि मैं भूल गई,
1: ऐसा नहीं होता, सामने नहीं होना चाहिए।
2: तुरंत ही आपको समझ में आ गया कि आप कुछ छूट गया है तो तुरंत ही आपको पकड़ के ताल पर कुछ भी जो बैठता है वो करना है।
1: अच्छा, आजकल बहुत से शास्त्रीय संगीतों पर नृत्य भी होते हैं, पर हिंदी सिनेमा में उसमें आप अगर एक दिन कहा जाए कि आप इस गीत पर मंचन करेंगी, वो नृत्य और वो गीत कौन सा होगा? बहुत से शास्त्रीय संगीत हैं जो कि हिंदी सिनेमा में हैं, शास्त्रीय गीत बहुत से हैं, ऐसे मंचन कर पाती हैं आप गीतों पर?
2: मैं बच्चों से करवाती हूँ,
1: बच्चों से, छात्रों से करवाती
2: हूँ। छात्रों से करवाती हूँ।
1: तो छात्र अपनी भावभंगिमा देते हैं या कि आपके द्वारा सिखाए हुए भावभंगिमा पर उतरते हैं खड़े?
2: नहीं, ये एक टीम वर्क होता है
1: जी,
2: क्योंकि उन लोगों को भी डेवलप करना होता है ना अपनी जो क्रिएटिविटी, कोरियोग्राफी कैसे करती
1: है। यही मैंने कहा कि छात्र अपनी तरफ से जो सिखाया उससे भी अच्छा कुछ कर दे।
2: हाँ, उन लोगों को भी सुनना पड़ता है कि ये तुम सुनो और बोलो क्या कर सकते हैं
1: जी।
2: तुम सब डिसाइड करो, ग्रुप में सोचो थोड़ा, मैं भी बोलूंगी, इस तरह से उन लोगों को प्रॉम्प्ट करते हैं। अगर कुछ किया तो उस पर से बिल्डअप, अच्छा ये ठीक है लेकिन इस तरह से करो थोड़ा, इस
1: थोड़ा सा सुधार करती हैं। हाँ, उसमें पर उनका भी सुनना पड़ता है क्योंकि वो भी तो
2: उनका
1: एक
2: भी
1: कला
2: तो विकास
1: सीख रहे,
2: होना चाहिए ना,
1: बिल्कुल
2: इस तरह से
1: कलात्मक जो अंग है उसको भी सुधारना है।
2: हाँ,
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा। छात्रों के साथ जुड़े रहना ऊर्जा को बढ़ाता है।

0: कहीं ना कहीं जब एक टीचर या गुरु जो भी सिखाता है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा उनकी भी बढ़ती है। आज आप इतने छात्रों के साथ जुड़ी हैं, 20 वर्ष से आप कह रही हैं कि आप पहले 9 वर्ष तक आपने किसी एक विद्यालय में काम किया, फिर मंत्रालय से जुड़ के आपने SSS में अपना पदार्पण किया। उसमें कुछ अंतर पाया? मैंने पहले पूछा आपको कि पहले 10 वर्ष में आपका अनुभव कैसा रहा और आज की तिथि में कैसा रहा, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट और SSS में भी आपने कोई अंतर पाया? तब छात्र भी बदल गए, समय भी बदल गया और इंस्टीट्यूट्स भी बदल गए आपके लिए, तो वो बदलाव आप हमारे श्रोताओं के साथ थोड़ा सा साझा करें।
1: बदलाव के साथ हमें चलना चाहिए,
0: बिल्कुल, परिवर्तन अनिवार्य है।
1: हाँ, वो अनिवार्य है और समय के साथ हम खुद भी बदलते हैं, हमारी सोच विचार भी बदलती है
0: जी।
1: और हम हमारी
0: और आपका अनुभव भी आपको बदलने पर मजबूर करता है।
1: हाँ, और उस दौरान में तो मैं स्वयं माँ बन गई।
0: अच्छा,
1: तो ये भी मेरे
0: लिए बड़ा बदलाव था,
1: बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि अभी अपने बच्चों के साथ और भी सीख मिलती है,
0: बिल्कुल,
1: तो उन सब को जोड़ कर अपने आप को निखार कर।
0: आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड के बच्चे हैं, बहुत कुछ सीखे सिखाए पैदा होते हैं आजकल।
1: हाँ, हाँ, जी, ये सही है।
0: तो मतलब जब आप माँ बन चुकी हैं और आप एक शिक्षिका हैं, तो आपने क्या अंतर सबसे बड़ा पाया?
1: दोनों को बैलेंस करना पड़ता है,
0: अपने काम को बैलेंस करना पड़ता है,
1: बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ मुझे मेरी नृत्य के साथ जो पर्सनल अनुभव है वो बहुत काम आया,
0: तो क्योंकि क्या इसमें आपका अभ्यास भी रहता है?
1: हाँ, अभ्यास तो रखना है, ये तो आवश्यक है।
0: कितना समय आप अभ्यास के लिए लेती हैं?
1: कुछ अगर एक सप्ताह में लगभग 1 आवर अगर हो जाए इस तरह से, ज़्यादा समय नहीं निकाल पाती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ भी मतलब
0: समय देना पड़ता है उनको भी,
1: लेकिन 1 घंटा तो निकालना पड़ता है।
0: विद्यालय से अलग घर पर आपका 1 घंटे का अभ्यास होता है?
1: होना चाहिए, होता है,
0: होता है। तो उस अभ्यास काल में आप बच्चों से भी अलग हैं, पति से भी अलग हैं, कमरे में बंद होकर अभ्यास शीशे के सामने करती हैं, या कि अभ्यास केवल आप कंसंट्रेट कर रही हैं जो गीत है या जो शास्त्रीय संगीत है,
1: होता है,
0: उसी के साथ जुड़कर अभ्यास करती
1: हैं? दोनों होता है। अगर दोनों आप नृत्य करते हैं तो आपकी जो फोकस है अपने शरीर पर होगा कि किस तरह से हाथ हो रहा है, ये हमारी जो अरे मंडी है, हाफ सिटिंग आप मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा आप शीशे के सामने करेंगे भी तो आप
0: स्वयं निरीक्षक होते हैं आप।
1: नहीं, लेकिन आपको देखना नहीं है खुद को हर समय, आपको अपने हाथों को देखना है, मतलब जहाँ आपके हाथ जा रहे हैं
0: आपका निरीक्षण करना पड़ता है
1: वो,
0: लेकिन बिना देखे भी
1: अभिनय जब करते हैं तो थोड़ा वो शीशे के सामने वो सब कुछ ट्राई करेंगे कि इस सोच के साथ जो मन में है कैसे आ रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है या कम लग रहा है, तो तब तो उसको
0: बढ़ाना पड़ता है,
1: एडजस्ट करना पड़ता है।
0: और यही प्रशिक्षण आप बच्चों को भी देती हैं?
1: हाँ,
0: उन लोगों के घर उनका अभ्यास कार्य भी देती हैं आप उनको?
1: हाँ, उन लोगों को प्रैक्टिस करना होता है, और जब बच्चे जब कक्षा में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा किसका ये होमवर्क हुआ है नहीं हुआ है।
0: यही मेरा प्रश्न था कि कितना अभ्यास उनके लिए ज़रूरी है?
1: जितना वो कर पाए, रोज कर पाए तो
0: मतलब आप एक समय निर्धारित करती होंगी कि 15 मिनट आप घर जाके प्रैक्टिस कीजिए।
1: मैं तो कहती हूँ कि
0: 10 मिनट कीजिए या 1 घंटा
1: या 20-30 मिनट अगर हो सके तो बच्चे आप लोग करें, लेकिन नहीं होता है।
0: कोई मुद्रा आप प्रशिक्षित कर देती हैं उन्हें, अच्छा आज ये घर जाकर ये वाली मुद्रा पर आप गृह कार्य करिए, आपको ये प्रैक्टिस करनी है?
1: हाँ, तब तो वो करके आते हैं,
0: करके
1: कभी कभी नहीं भी करते हैं तब आपको उनको कक्षा में 2-3 बार फिर से दोहराना पड़ता है, कभी आप साथ में भी बोलेंगे उन लोगों को ताकि वो मदद आए, देखेंगे और सुनेंगे कि किस तरह से
0: बताती हैं।
1: मैं करके बताती हूँ, और जो मैंने पहले आपसे कहा कि उच्चारण किस तरह से करना है, तो उन लोगों को सुनना भी है और देखना भी है कि किस तरह से आप कर रहे हैं, बोलते समय आंखें कहाँ जा रही हैं इस तरह से।
0: नेत्रों का तो बहुत बड़ा कार्य रहता है नृत्य में। नेत्रों से आप पूरी कथा सुना सकते हैं।

0: जी बिल्कुल।
1: तो ये बहुत बड़ी एक प्रशिक्षण आपके लिए भी है और छात्रों के लिए भी है। अच्छा, अब मैं कार्यक्रम के अंत तक आ रही हूँ, आप क्या सोचती हैं आज छात्रों में विशेष या युवा वर्ग के लिए आपकी कोई सलाह रहे कि नृत्य करना चाहिए, और कोई विशेष संदेश आप देना चाहें, आपको आपके छात्र भी सुनेंगे, अभिभावक गण भी सुन रहे होंगे, या जो भी श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए कोई सलाह, कोई विशेष संदेश?
2: मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सीखें, अभी के समय में ये आपको फैसिलिटी मिल रहा है, संस्थान बहुत सारे हैं, अध्यापक बहुत सारे हैं हमारे जो मॉरिशस देश में अलग अलग,
1: और इतने समुद्र तट हैं अभ्यास करने के लिए एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, एक कार्य के लिए।
2: तो मैं उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी शास्त्रीय शैली से आप जुड़े, नृत्य सीखें, संगीत सीखें, वाद्य सीखें, इससे आपकी और भी वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आती है, आप में अनुशासन, सम्मान, आप में वृद्धि होती है आपकी
1: बहुत क्रिएटिविटी में,
2: क्रिएटिविटी में। हाँ, और माता पिता को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, उन लोगों को बहुत लाभ होगा, आप अपने बच्चों में बहुत बदलाव देखेंगे, सुधार देखेंगे, कैसे बच्चे बदलते हैं। लेकिन ये अभी ये मत सोचिए कि मैंने कहा कि जाकर नृत्य सीखिए और मान लीजिए एक महीने दो महीने गए और आप सोचेंगे कि कुछ भी बदलाव नहीं आया, ऐसा नहीं होता है।
1: बिल्कुल,
2: इसको आप लंबे समय तक करना है, उसको उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, तब जाकर वो धीरे धीरे मतलब वो शेप लेता है। इस तरह
1: समय लगता है, गीली मिट्टी को ढालना पड़ता है,
2: समय लगता है।
1: बिल्कुल, वो रचनात्मकता में समय देने के लिए भी और उनको सही मार्ग प्रशिक्षित भी करता है ये रचनात्मकता।
2: जी,
1: उनके मार्ग को भी तो आप प्रदर्शित कर रही हैं कि सही मार्ग, लंबा समय और प्रशिक्षण तो है ही, तो उसके साथ अपना अभ्यास कार्य भी होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपने इतने अच्छे विचार हमारे साथ साझा किए, आप उम्मीद करती हूँ कि आपके छात्र आपको सुनते होंगे और आप का जो ये कार्य है बहुत आगे आपको ले जाए, आपके साथ जुड़े हुए छात्र भी आगे बढ़ पाएं, रचनात्मकता उनमें बनी रहे। आज हमारी टीम को आप तक कार्यक्रम पहुंचाने में जो सहयोग दिया उसमें उरुसा को, भाई यूसुफ और रितेश जी को धन्यवाद देंगे। आप सब श्रोता हमारे साथ जुड़े इसके लिए आभार, फेसबुक लाइव भी जो जुड़े हैं उनको भी आभार कि आपने समय निकालकर इस कार्यक्रम को सुना, देखा, और आप अंजू को आज्ञा दें। नमस्कार।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें याचना से आपको नमस्कार
1: नमस्कार परी सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो चली है कल मेक्सिको के एस्टेका स्टेडियम में औपचारिक समारोह लगा इस रंगारंग कार्यक्रम में करीब 80,000 दर्शकों ने भाग लिया इस वर्ल्ड कप के लिए 3 उद्घाटन समारोह निर्धारित हैं हर एक मेजबान देश में एक उद्घाटन समारोह किया जाएगा पहला कल मेक्सिको में लगा दूसरा आज कनाडा में निर्धारित है कल मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला हुआ ग्रुप ए का पहला मैच स्कोर रहा 2-0 जिसमें मेक्सिको की जीत हुई इसके अलावा ग्रुप ए में ही दक्षिण कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से परास्त किया इस वर्ल्ड कप को और ज़्यादा खास बनाने के लिए और जनता तक उसकी पहुंच को आसान बनाने के लिए एमबीसी प्ले एप्लीकेशन पर आप ₹300 में पूरा वर्ल्ड कप यानी वर्ल्ड कप की सभी मैच देख पाएंगे इसके लिए मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है जहाँ पर लोग फ़ोन करके जानकारियां मांग पाएंगे इसके अलावा कुछ लोग एमबीसी भी आ रहे हैं जहां पर इस एक डेस्क डाला गया था जहां पर इस एप्लीकेशन के लिए लोगों को मदद दी गई आज रात बोस्निया और कनाडा की टीमें आपस में टकराएंगी मैच का सीधा प्रसारण आज रात 11 बजे किया जाएगा इससे पहले मेज़बान देश कनाडा में रात 8:30 बजे से उद्घाटन समारोह

0: भी आप देख पाएंगे। क्यूपिप की पुलिस मिडलैंड्स के एक रंच में एक व्यक्ति की मौत पर जांच कर रही है। 40 साल के जोनाथन कुयामतू का शव कल उस रंच की पार्किंग में उनकी गाड़ी की बगल में मिली। उनके पेट पर गोली लगी थी। आज शव परीक्षण किया जाएगा। इस हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस की जांच जारी रखी जा रही है। विदेश में थाईलैंड की राजकुमारी का निधन 47 साल की उम्र में हो गया है। पूरा देश शोक में डूब गया है। 2 साल पहले वे दिल की बीमारी के कारण अचानक बेहोश हो गई थी और तब से कोमा में थी। वे थाईलैंड के राजा की 7 संतानों में से सबसे बड़ी और पहली उत्तराधिकारी भी थी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: सभी श्रोताओं को विदिदा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज के चर्चा कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। जी हाँ, आपको पता ही है कि हर शुक्रवार को हम एक नए विषय के साथ आते हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन है चलिए जानते हैं। जी हाँ, आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं हमारे वकील कपिल देव रघुनंदन जी। नमस्ते कपिल देव जी, कैसे हाल चाल?
1: भगवान की कृपा से सब मन से चलाता है।
0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आज के जो हमने विषय रख रहे हैं जा, वैसे तो कबो हमने ध्यान में नहीं रख रहे जा कि ऐसन विषय पर भी हमने सकब जा बात करें। और ये एगो ऐसन चीज है जोन से हमने बोली राजा ना कि हमने के अस्तित्व जोन बा ओकर पहचान हुएला।
1: जरूर जरूर।
0: और ये है हमने के नाम।
1: हाँ जी,
0: बोले राजा नाम में क्या रखा है, लेकिन है नमुए है जेकर आस पास में देखबा तो सब कुछ चलेला। तो आज के जो विषय हमने रख ले जा वो है नाम। हमने के जो नाम देवल गल बा, हमने जो नाम सिरवी करेला जा, जो नाम से हमने के सब कोई पुकारेला, जो नाम से हमने के कौती तौंचते बनेला, जो नाम से हमने के पासपोर्ट बनेला, तो हमने के नाम काहे जरूरी बा, कितना जरूरी बा, चला जाने ला जा हमने कपिल देव जी के साथ।
1: अरे सब हमने के भाई बहन लोग के प्रणाम। हाँ, पहला चीज बड़ी कुछ चीज बोल नाम बोले लन सन एगो बड़ा कहावत है, राम से बड़ा ओकर नाम है।
0: हाँ,
1: तो नाम ही देखब सर हमने, नाम काहे ऐसा स्वाजगे कर ली सर, जैसे हो गया हमके बोल एगो पोगा मानब सर नाम में। तो वो हमने के कुछ सिविल में लिखल है नाम के कुमाजा, तो हम तो हमेशा सिविल वे के कुमाजा बात करी ला सर। तो हमने देखब सर आज नाम, नाम के मतलब का है हमने देखब सर, कैसे कभी को लड़का नहीं होवेला तो जन्म लेवेला तो कैसे एगो नाम देवेला, कैसे ओकर फैमिली के नाम ओके हई भी मिलेला, के स्वाजगे करेला, एक आदमी कब शादी करेला तो जो नमुआ दे लेबा उस नमुआ कैसे मजे साझे करे के चाहेला।
0: हाँ, कि एक जना पैदा होला एगो नाम के संगे।
1: हाँ,
0: तब खास तौर पे जब कोई छोकरी शादी करेला तो ओकर नाम बदल जाला।
1: हाँ, तो ई सब देखब सा ओकर नमुआ है बदलेला। और हमनी देखे सा नाम से जोड़त के बहुत चीज बा। हाँ, कैसे कते दाँचीते बा, ओकर लाग देने सांस बा, ओकर लाग दिशे बा,
0: एगो मगाजे खोलबे तो ओकर जाने को नाम डाली की।
1: हाँ, तो देखिला सा आज नाम का है, जैसे हमने के कुछ सिविल बोलेला, हमने के कुछ सिविल बोलेला, हर आदमी के हर इंसान के ओके चाहेला पुसिदे करे के एगो नाम, एगो नाम जोन सिरवी करे ओके देजिए करे इदांचिफिये करे वो आदमिया हो के सोशल लावी में और लावी जीविजिक में। ये देखो ये हमने भाई बोली ला वो जो हमने के लालवा कानून में, कानून में कम हमने के सिविल कोड मोशिया जो है वो पहला पैराग्राफों में बा लावी प्रिवे छोड़ के ये कैसे नाम एगो आदमी के कैसे नाम देवेला। जाने ला बहुत सा आदमी अभी आजकल का करे करेला ओकर नाम में कब कुमा जे जाला है दिखलारे करे तो ओकर दुआ है। तो सके ओकर नाम एगो ख्रिश्चियन के नाम डाले कभी एगो हिंदू है, एगो एगो बोली कि एगो मुसलमान हुई तो या क्रियोल हुई तो डाल दे वाला ऐसा नुगरा एगो एग्जाम दे ला। अभी कुमार जा किसी हमार नाम है रघुनंदन, एगो लड़का होल हमार, हम सकबो के लुइस केविन का गुनंदन डाल दी।
0: हाँ,
1: ये

आदमी डाले ला इसे अभी देख सक कैसे एगो नाम चाहेला और दूगो नाम कैसे डाले लन सन। अब एगो चीज होला जब वो आदमी यहाँ के जाला कहूँ कभी अरे काल शादी करब या कुछ करब तो पंडित के जला देखे ना तो पंडित के जाके तोरा बोलब तो पंडित जी हमार लड़का ऐते लेने कौन नाम जस्ती जोली रख लेके एक भान तो बोली अच्छा डालो का नाम

0: तो ओकर फिचुए बोलेला कौन सी रही तो कौन सी में देख के भाई पंडित जी बोलेलन ओकर नाम से कौन नाम से शुरू कर ले हवन। अच्छा तोहर तब वे से शुरू हुई तो वेवा से न देखे वेदिता तो वेदिता के नाम के देख के ओकर फिचुए ओके बोली कौन चीज बा कब तक जी ही कौन सी हो होला बा सिपाही आदमी से शादी से की करे या नहीं
1: यानी कि सब कुछ हमने के नाम के संगे ही जुड़ल बा।
0: हाँ जी
1: वो हमने के जन्म हो गल वो हमने के कैसे बजा ओहोस्कोप देख बा हमने के पंचांग देख बा कुछ हो देख बा हमने सब कुछ नाम से ही शुरू करी ला
0: नाम ही से। अरे जैसे हम बोली ना पहला चीज हमने के कुछ सिविल में बोले ला हर इंसान के चाहेला एगो नाम बस की वो नाम हुआ एगो वाले हो
1: एगो पहचान
0: एगो, हाँ, एगो रेपिटेशन पहचान तो बोल देना तो एगो रेपिटेशन है एगो वाले एगो नाम के ओकर रेपिटेशन है। अरे एगो एग्जाम्पल देना एगो आदमी के एगो चीज ओ इफिक मिलल बा जैसे कि कुमार जे ओ रेसो रे उसे करेला ओकर वाले आदमिया के से बोझो ओके मिलल बा क्यूसी या कुमार जे है एगो एससी तो ओ आदमिया ओकर नाम नहीं है क्यूसी ओकर नाम नहीं है ओके कुमार जे एससी तो स्टेट काउंसिल जैसे मजे क्वीन काउंसिल उ सब रहल मे ओकर वाले रे उसे करेला और ओकर नाम की देते मीने करेला ओ है कि एगो एग्जाम्पल देला सब आदमी बोलेला ए हौ वो कवा ऊ तो बड़ी ठीक बा या नहीं ठीक बा हौ दोक्तेरुआ ऊ तो कुमार जो कोरेक बा ऐसे लिमन काम करेला ऊ तो हमने के फोमिया मिनिस या का है मैं अवोका दोक्ते और फोमिया मिनिस तो ओके बोलबा खाली अवोका तो ओकर कुमार जे प्रेसिजे नहीं होला के रिफेयर करत हो मैं कब के बोलबा से बुझो अरे अवोका रघुनंदन के तो रघुनंदन वहाँ कब आजूते कर ला ओकर नमोआ से तब तू प्रेसिजे कर ला हाँ अब वो कवा में ओकर मैं अब वो कवा के ओकर नाम नहीं है ओकर नाम तो रघुनंदन तो हमने मॉरिशस में एक बहन भाई लोग बोली जा सा ओके हर बला बोला के भाई ओके नाम ले कैसे आदमी के बोला एगो भाई रिश्वे है चचा कैसे मामू कैसे तो चाचा मामू के नमो तो नहीं सके ओके ले
1: हम सबका बोले हम सबका बोले हाँ मामू लोकल और माँ के आज पाँच गो भाई बात सब तो पाँचों तो मामू है
0: नाम ले बोझो बड़का है धोगे है या ऋषिजीवी से या बन हो गल तो कैसे बोलब वो आदमी जान जाए हाँ ऐसे लोग नमुआ रिफेयर करता की कौन खालीते आदमी रहे आदमी की तक बोलबे अरे भाई वो तो ऐसे लोग नाम है नहीं जान लो के कैसो के नमुआ बोल एगो रेफरेंस होवेला ओ आदमिया के ओकर कालिते और कौन कालिते आदमी है ओकर पिताशियो।
1: अभी अभी अभी बोला था हमके याद आवता एगो गीत बा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा
0: हाई का देख रहा तुम तो खूब बोल देला मैं ओ में कब भाई है आप तेरवा गा गीतवा गावेला तो बोलेला ओकर नाम बड़ा करी मैं नहीं बोलेला ओकर सियनवा या ओकर कुमा जे है ओकर है बड़ा करी ओकर नाम तो इतरीला बोली ना नाम से बड़ा कुमा जे है एगो आदमी के तो है भगवान के जैसे हमने बोले एग्जांपल ली सर आले अब हमने के देखिला सर अब आइए समझ के सीजे हुआ में ये नाम नाम से भी हुएला एगो द्वा एडमिनिस्ट्रेटिव में एगो द्वा कॉम्बिनेशन हुएला दोनों ओकर नाम नो ए प्रेनो मतलब ओकर नाम और ओकर छोटा नाम वही कह प्रेनो तो सब कोई बोला छोटा नाम कुमार जी नो तो ओकर फैमिली के नाम है ये दूगो चीज हुआ एगो एदा चीते देवेला एगो आदमी के एगो बोली के अभी तू हुआ तो दूसर तोर तो एगो सियनो बा तोर माँ बाप के तो अब कोई तोरा बोली एक दिन बोले वेदिता के नहीं जाने ले बोले कौन वेदिता देखे ले ना वो पूछी कौन वेदिता मैं कब बोली वेदिता से बोझो हम खेलावन ठीक है यहाँ तोर जान जी
1: चल तू खेलावन की बेटी
0: तो देख ल नमुआ से कैसे आवेला आली तो अब शुरू करी सब बीच हई में कुमा जे नाम का हुएला हर नाम एगो आदमी के दूगो चीज से कॉन्स्टिट्यूट हुए हुएला मतलब हर आदमी के चाहेला दूगो नाम पहला एगो ओकर प्रेनो यही प्रेनो जब आर कुमार जो छोटा नमुआ जो जिसे हमने बोलिया सा और चाहेला एगो नाम दिफामी पैट्रोनिमिक जैसे हमने बोलिला सा तो ओकर फैमिली के नाम तो हर छोटा नाम आर तोहर फैमिली के नाम ये तोहरा देवेला एगो काकते एगो मजे एगो आदमी कि तू जिस टाइगे सक

0: इंसान करे के कर बात करते हैं सा या के है उद्मिया ये कुछ सिविल में जन सब बोलते हैं निकल हैं अली शुरू करी सा प्रेनों से पहला नमूना अली प्रेनों हर आदमी के चाहे ला एगो नो पर्सनल अपने खतिन किसी हमारे नाम कपिल देव ये हमारे छोटा नाम है हमार नाम रघुनंदा फैमिली के नाम है तो हिया देखबो ओकर नाम हर आदमी के चाहे ला एगो पर्सनल नेम और एगो नेम इंडिविजुअल एगो नाम इंडिविजुअल ओके हाले ताकि तू सब जिस तैंगे करे कि ई आदमिया के है अली काल हम एगो बोली के हम हमार भाई हैं सर अब तू बोलब हाँ कपिल देव रघुनंदन गर हलें तिल जगह हाँ तो भाई हुआ कि रिफिया नहीं कर लेना
1: हाँ
0: तो समझ ला वो जाना था कि ये वो कपिल देव से कौन भाई हुआ के बोला था हई भाई हुआ के बोला था या हऊ भाई हुआ के बोला था आलू तो हमने देखी ला सर जब एगो लड़का ने होवेला पैदा होवेला तो पहला चीज ओके देवेला ओकर माँ बाप अभी अभी माँ बाप नहीं देखब सर दूसरा देखब सर के भी देवेला दूसरा एगो आदमी के फैसने में तो पहला चीज देवेला एगो कब एगो लड़का ने होवेला तो ओकर माँ बाप देवेला ओकर पहला नेम वही जैसे हमने बोली ला सा अंगले में क्रिश्चियन नेम ओकर पहला नेम जो देवेला तो ओ आदमिया ओकर नाम होवेला कुमाजिया ओकर प्रेनो मिलेला और एगो प्रेनो प्लासे होवेला एगो है नो जो नोकर फैमिली के और ओ आगे काहे नहीं दले कुमाजोकर प्रेनो डाल दे सकल जन बोल सन रघुनंदन कपिल देव नहीं बोले के चला कपिल देव रघुनंदन ओकर प्रेनो आवेला आगे तब ओकर फैमिली के नाम आवेला हेलो एगो दूसरा चीज है एक के गो नाम एगो प्रेनो खाली नहीं बा एक बान आदमी के एक बान आदमी के एगो प्रेनो एक दो तीन चार गो होवेला डालेला चार पांच गो जान लुइस पोल पियर डाक के तब ओकर सियनुआ डालेला मॉरिशस में बा कितना नाम के भाई बहन लोग के देखबो कर प्रेनो तीन चार गो नाम बात तब ओकर सियनुआ बा
1: कंसीडर प्लस मिलेला सब लिखे
0: नहीं तो ही अभी हम देख सके वाला जितना बड़ा नाम मजे आजूते कर ल तितना को मजे एगो प्रॉब्लम देवेला मिसल में वो हमने नहीं देख लेनी था प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं हमने देखा एक मजे नमुआ कैसे स्वाजरे कर अली एगो बोली के जब आवेला एगो लड़का तो स्वाजरे की करेला ओकर नाम
1: माँ बाप
0: माँ बाप माँ बाप को मजे दोनों संगे स्वाजरे करेला कि ये नमुआ जोन बा और वो चाहेला माँ बाप जोन के ऑथोरिटे को मजे पारंटाल ऑथोरिटे पारंटाल में को पोगा मानव सब मतलब का है जोन माँ बाप के हक बा उल्लै कुआ में वो स्वाजरे करेला ओकर है कौन कौन नाम दे मैं जनबे करेला कि बहुत सा बा आदमी मामा बोली जाने ले कौन लैकुआ तो नहीं होल बा अरे गो बेटा होगा सिपाही गो बेटिया कौन नाम दल बे तो मामा सकी बोले हई नमुआ डाल सिबो जो डाल सुनीता बापा बोले नहीं नहीं सुनीता हम नहीं खुश
1: हैं
0: कविता डाल जोली को बोल तो बोल कविता डाल तो अभी यहाँ सुनीता कविता हो में बाप में आ रही से माँ भाई में बाप में
1: पीछे से दादी बोली बबीता डाल
0: हाँ एगो झगड़ा हुआ था अब यहाँ कौन नमुआ स्वाजरी करी झगड़ा बोले तू ही नमुआ दे हम नहीं खुशी हई अरे तुकर तो लड़का हरों तो हग अनमन बा जैसे बपुआ के बा बपुआ बोले ऐसे को नाम दिले जाने फलना के नाम बा ऐसे रहल ओकर नमुआ हमके खुशी नहीं रही उ नमुआ डाले नहीं खोजता मैं कभी कब ऐसा एगो समस्या होवेला जोन तनी माले रही बोली का लड़ाई करत हुए सुनीता और कविता डाल दे दोनों हो नमुआ में कहीं पर सुनीता कविता और ओकर सियनुआ में मजे है रही तो कोनो तो तीन गो नाम देला जैसे हो जे फुफुआल सिपा है ददिया आल बोले ओ को के मन बा बोले जान ले तोर दादा की दादी के दादी पर सिपा ओकर नाम ऐसे डाल दे बैठो ही नमुआ में तो ओकरो आजूते कर द तो ई लोग आदमिया जो नोकर पोस जो नोकर माँ बाप उ सकी आजूते करे एक दू गो निम है नाम अब ई देखब कभी सैफ ये तो जीता में माँ बपुआ नमुआ दे बा ना तो कहाँ हुई माँ बपुआ मर गल लैकुआ नहीं होल बा ओकर नाम के दी नाम सैफ जाफे अपनी रोज बतिया इला सा मैं ओकर देखा कितना कुछ सिविल में बा आली अभी एगो लड़का पैदा होल सिर्फ बाप नहीं रहा एगो बोली के पैदा होल मैं हिया मऊ मर गल बस एक बार खुशमो करेला तो माफ करिया वो मुझे गुजर गल ते हिया उकर नमुआ

0: रेनों हैं बोला था ये रेनों हैं किस वाजरे करी तो यहाँ देखेला ओके जोन ओके है आदमी या उकर माँ हुआ तो नहीं बा बपू तो नहीं बा जोन एगो
1: दादा दादी
0: हाँ जोन ओके पोस बा सब जो एगो
1: दादा दादी या नाना नानी
0: हाँ आली तो उस सकी कुमार जी या नहीं नहीं निश्चित दादा दादी चचा चो सकी बोले जेल लाइकुआ के देखी अभी उकर तो हक्कुआ कुमार जब बाना है लाइकुआ में तो उस सकी बोली देखे हम चाहा था एकर पहनो कहमी चपस जाए ना लेता सिविल डिक्लारे करे वो अभी तारे देखो से लेता सिविल के प्रोसीजर कैसे है कैसे बदले लाइको नमो सेंसेस चेंज ऑफ नेम से नहीं बोले सर तहिया उगे जोन आदमिया ओके देवेला लैकुआ के ओ जोन आदमिया दिखलारे करेला लैकुआ के
1: हाँ।
0: इतना याद करे कि जे चचुआ गल होई त माँ बाप त नहीं बहिया त चचुआ गल ओ दिखलारे करी ओ खुशी कौन पहनो दे ओके ओकर क्रिश्चियन नेम दे से हमने बोला सर ओ स्वाजरे करी
1: लेकिन जब एगो हमनी जब देखिला जाए एगो बर्थ सर्टिफिकेट जोन रहेला ओकर में देखिला जा कि ओकर माँ के ओकर पिता के नाम लिखा रहेला अब अजय मान ला माँ बाप नहीं बा एगो चचा गल बा लैकुआ के दिखलारे करी तब उकर में चचावा के नाम रही उकर में लिखा रही उकर चचा रही
0: हाँ जिसे मैं बोल था ही ना तो हुआ कुमार जब का माँ बपुआ गुजर गलबा ये
1: हाँ।
0: चचुआ लेके गलबा लेकुआ के दिखरारे करी तो लेता सिविल के ऑफिसे हुआ पूछे ला ना एकर नाम कौन सी कौन नाम दालत हुए तो वो एक्सप्लिके करी ओके कि माँ बपुआ तो मर गलबा कोई तो नहीं सके दिखलारे करे के मैं हम स्वाजिरे करते हैं इन नमुआ आरो के कानून लेता सिविल के बाक माँ जो लॉजिक वो बोलेला जोन अदमिया दिखलारे करेला लैकुआ के लेता सिविल में उकर नाम हुआ देवेला वो ही नमुआ स्वाजिरे करेला
1: लेकिन जब नमुआ स्वाजिरे करता तो हो जोन बर्थ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट वाबा उकर में चचवा के नाम रही या
0: नहीं उकर, या तो मर गलबा
1: उकर
0: मर गलबा नमा बपुआ
1: हाँ।
0: तो नहीं बना है बर्थ सर्टिफिकेट वा में तो नमुई नहीं बा
1: हाँ तो उकर में नहीं लिखा रही उकर उकर माँ बाप जे जे मामा जो मामा जन्म दिले बा ओकर नाम चाहला रहे
0: नहीं नहीं नहीं उ तो मर गल बके जाने
1: उ चाचा खाली चाचा के नाम
0: है चचुआ डाली ओकर नाम बस ओकर नाम में मिसलमा चचुआ सकी एक एक चीज करे ओकर सिया नियोवा नहीं डाली न तो कर जिगचे ना हो जाए समझ ना ओकर नाम खाली डिक्लेअर करी एतेल की एतेल आदमी है ओकर नाम एतेल लोग डाल दे लनसन मिसलमा उ कनेक्टे नहीं बा चचुआ उ नमवा से बस की चचुआ के नाम जे डाल दे ओकर सियनो तो कुत्ते जिगिचे हो जाए यहाँ तो बोलियो रही तो मर लड़का नहीं हो ना हम तो खाली आल हैं दिखलारे करे इ लड़को आके तो कर ब्लैंक दिखबो कर ना बा ना मा ना बपुआ के नाम बा अरे तो कुरेक बा यहाँ तो चचुआ गल दिखलारे करे कहाँ होई एगो लड़का हुआ कब चचुआ गल बा दिखलारे करे गो बोली के या कोई गोल लेके गल बा दिखलारे के लेता सिविल में ओके है लड़को आके कोई नहीं बात दिखलारे करे के कोई नहीं बात नमुआ ओकर बोले के कौन नाम है एगो चीज बोली ला बहुत चीज से एगो बोले पोक में देखब एक गांव है मॉरिशस में है जहाँ लड़का कैसे पैदा हुए ना बस सीमित हो तो वो में छोड़ दे वतलनसन ऊ लैकुआ के अरे बस की काहे हो कि फिक लैकुआ और वो नहीं जाने को जाता कोई कि कुमा जे ऊ लैकुआ है ऊ बा जहाँ बा है बिस्तोप के ऊ देख बहु है लैकुआ के
1: प्रोजेक्ट
0: छोड़ के चल गल बा अरे कौन आदमिया उठाई ओके तो कुमा जैसे आला पुलिस के बुलाई या नहीं कुछ तो ऊ लेके जाए ना लेता सिविल में चाहे ला के दिखलारे करे के देख एगो नाम दे के पूछन सन के दिखले रहल तो अब जो नदमिया कुमा जे देखलक लैकुआ के वो के मन नहीं बात दिखलारे करे के ओकर नाम में ये कानूनों के देवल हकुआ कुमा जे दिखलारे के हाँ जब कोई नहीं बा कोई रिफ्यूजे हुआ था ओकर नाम दिखलारे करे के उ लैकुआ के तो उ लेता सिविल के ऑफिसे हुआ उस सकी कोनो नाम डाले आर कोनो कुमा आर दिखलारे करके बस की हमने के कानून है हर आदमी के चाहेला एगो डिक्लारेशन करके लेता सिविल में 60 जू के अगाड़ी पहले का अनसंख जू रहल कि आके बोला इकर लैक इन में बोले ला ये लैका तो तुर डिक्लारे कर ले होवे घरे रह लेता सिविल उकर नाम दे ले होवे तो ओके एगो है आर एगो है एगो प्रोसीजियो है जे उतना दिनवा में नहीं डिक्लारे करलक तो चाहे ला मांग करे कि ओकेला है कि मजिस्ट्रा के तो मजिस्ट्रा सब के बैठेला तो देखेला एगो नाम मिलल जला उ लैकुआ के तो सेलमा जोन आदमिया जे दिखलारे कर ले बा ओके जोन कुमाजिया रिफ्यूजे करता तो लेता सिविल ओके दिखलारे करे एक बार ओकरे लैका है मैं रिफ्यूजे करता दिखलारे करे के लैकुआ
1: के
0: हाँ तो करो ओके मन नहीं बा दिखलारे करे लैकुआ यही आदमी नहीं बोलेला एगो इलिजिटिमेट चाइल्ड कहानी कहाँ से वो केकर

0: पाप हो सिपा हो सब में नहीं जाते हैं सर कई ओकर दिखलारे करता तो कई ओकर नमुआ दे यहाँ तो नहीं दिखलारे करता
1: अब आज एगो माँ बाप बा ओकर में ओकर साजिश शुदा होन सा माँ बाप होन सा साजिश शुदा होन सा लेकिन होल अब बपुआ नहीं दिखलारे कर ओकर धुआँ हाँ नहीं दिखलारे करेगी
0: हाँ शादी कर जोन गर्ल दिखला ली एगो बोली कि माँ बाप दोनों के लड़का हो दोनों बथुआ शादी कर ले बात सिविल अरे हई के हई मवा मजे हुआ जाता हई दिखलारे करे गो बोली के तसे की बोले बोले ता सिविल मा के ओकर बाप तो के बोली ना ओकर बाप एक सनी हई ओकर नाम रल तू ते दोनों लिख दे हुआ ऐते लोकर बाप रल ऐते ओकर माँ है समझ ले ना जब रिफ्यूजे करी एक बान कामे है जहाँ देखब एगो बाप रिफ्यूजे करता सीए करे के कि जाके दिखलारे करे कि उलई को ओकर है बस कि उ सोचता इलई को नहीं हमार नहीं है शायद दूसर से हुई तो ही खातिर नहीं सकी तो मऊआ गल बान दिखलारे करे तो मऊआ के नाम में उलई को दिखलारे होला बपुआ के नाम नहीं डाल जला
1: अच्छा नहीं देखो एगो एगो बर्थ सर्टिफिकेट में माँ बाप के जरूरी है दोनों माँ बाप के ओकर नाम रहे के
0: नहीं नेसेसरी है नहीं
1: हां नहीं नेसेसरी सिर्फ माँ दिखलारे करे या तो फिर सिर्फ पिता दिखलारे करे माँ बाप नहीं बात सगेरा चाचा दिखलारे करे हां नाम जोन बा उ आजे एगो चाचा दारा था अपन नाम देवा था तो हो सकेला कि लैकवा जोन बा ओकर जगीचे हो जाए
0: हाँ बोली कि ओकर नाम में है उ लैकवा आके एक बोलिए कि दिन कि देख हमर तो हमर चाचा के नाम ऐते ल हियां ते डिक्लेयर कर लेबा लग देने सांस में ऑफिशियल के हो कर
1: आप एगो सवाल करब
0: बोला जी
1: जैसे बोला कि माँ ने एगो लड़का बा मतलब पिता के देहांत हो गल बा माता माँ जोन बा लड़का के जन्म दिलक उनकर देहांत हो गल अब इनकरा बड़ा घर बा जमीन जायदाद सब कुछ बा लड़का एगो लड़का होल अब चाचा बा तो चाचावा जोन बा जाए उके दिखलारे करे तो जैसे बोला कि लड़का के आज अपन नाम दे तो ओकर जगीचे में घुसा था आज अब चाचावा अपन नाम दे दिलक लड़का के और लड़का के तो माँ बाप के इतना धन दौलत सब कुछ बा तो चचावा ओकर ओकर ओकर वती में घुसेला ओकर ओकर कैसे ओकर घर में काहे के तो कोई नहीं बा देखे के
0: पहला चीज उ लइको नहीं सकी ढुके हउ में ओ नाम जोन बा पर सिखब एगो लइका एगो जिगिचे होइला जब ओकर माँ बाप के सकी एताब्लिय करे कि देख ऐते लैते ई हमर माँ बाप रहल तब न हम एगो जिगिचे कैसे हमें

0: ये हुआ जब ओकर माँ बाप की सकी इताबलिया करे कि देख ऐते लेते ई हमर माँ बाप रहल, तब न हम एगो जेगी छे कैसे हम इनबे करी। सब जमीन सब चीज धन दौलत या कुछ एगो लड़का जब ओकर माँ बाप डिक्लारे कर लेबा ओकर माँ बाप की हाँ सब धन ओके मिली जब अली नहीं डिक्लारे माफ करिया हमर माँ बाप तोरा डिक्लारे नहीं कर लेबा तो कैसे तू सब मजे हमर बगल से कुमाजे हमर माँ बाप बगल से कुमाजे एक ही थे करे नहीं सब न ते ही एगो बड़ी चीज देख ले देखा नाम कैसे कॉम्प्लिकेशन सब चीज बोली नाम में है आली ये तो बोल दिली सब बहनो जितना खुशी कितना नाम आजूते करब बिक मजल हम तो बोल सिंपल आर शॉर्ट एगो हाँ। बड़ा जोली चीज एक एगो छियनों से अब एगो से ताजे एगो है एगो पहनों से कोई एगो आदमी के हला करेला तो फासिल हो जाला समझ ना। अब एक बान हला करी तक कौन चीज आली एगो दे चीज बोली ला जाए के हुआ काहे ई देवेला एगो माँ काहे एगो देवेला एगो माँ बाप एगो पहनो एगो लड़का के
1: काहे कि खानदान के जो नाम बा जो हमने के सियाना हा मान ला कैसे बोले रघुनंदन कैसे बोले राम खिलावन तो सब कोई तो राम खिलावन बा तब कैसे बुलाब जा कौन नाम से तेगो जो पहनो रही तब ना बुलेबा
0: अली सैफ एगो माँ बाप के पहले तो 13 गो लड़का रह हाँ अभी तक अरे ले ला सऊ का 13 गोवा के जे 13 गोवा के डिफरेंट डिफरेंट नाम नहीं दे तो कैसे वो लोग के जिस तैगे करती सा कब फलना के करत बोले कविता अरे कहीं तो कविता वा बाऊ में तो कविता बोली ना हाँ रेफरे करत हमर माँ या मर बाप हमर नमुआ से ये हमके बुलावता या हमके है हमर नमुआ ले होता तो हौ जुन 13 गोवा में सिर्फ 12 गोवा में वो लोग तो रिपोर्ट नहीं करी ना बस कि ये आइडेंटिफिए आइडेंटिफिए करेला उतना आदमी में उतना लड़का हुआ में ये कौन लड़का है और ओकर नाम से ओके रेफरेंस करे ये देख रहे ऐसे आदमी नाम देवेला फलाना के तेल तेल तेल नाम ताकि वो कुमा जे कब हल्ला करी तो ऊ जानी अरे वो माँ बैठल बा कुछ हो के कुमा जे हई देले बा हो एक मजा खाई पिए के या ले कुल भेज के बोले ऐ तिल के खाई के दिले ओकर नमुआ बोल के ओके दिले हुए बोले नहीं तो जान गई ला ऊ आदमी ऊ लैकुआ हो उतना पो मीवा में ओके खैवा के नहीं मिलल बा
1: हमनी के जो नाम हो हमने के एगो आइडेंटिटी हमनी के इदा चीते एगो
0: इदा चीते एकरे तारेल देखब स कत इदा चीते आवेला जहां ते नमुए ह त ई एगो उस एगो उस एगो दूसर दिन आपसे कत इदा चीते के आले पहिनो त देख थली स न हर आदमी के जुन बा एगो पहिनो एक नाम आदमी मान बोले क्रिश्चियन नेम कोनो तो बोले तो छोटा नाम का है छोटा नाम ओकर है। अब हमने देखब सर नो डे फामी अब हमने ओकरे हमने पैट्रोनिम जैसे बोली ला सर है फ्रांसे में नो डे फामी अंग्रेजी में तो सियनो बोली ला सर सरनेम तो आले ई देखब सर ई नो पैट्रोनिमिक ई ओकर फामी के नाम है। हर इंसान के बा ओके चाहेला डिक्लारे करे कि कब ओकर पहनो दिले बा ओकर फैमिली नाम के है तो कैसे अभी तरीवा बोली सर एगो लड़का ओके एगो नाम मिलेला एगो नो सियनो फिलियासियों से मतलब पति पत्नी शादी कर ले बा तो ओकर है बपुआत के नमुआ तो लेवेला ना तो एगो फिलियासियों से लड़कुआ के नाम सियनो मिलेला। हर लड़का जो नोकर माँ बाप बा उकर माँ बाप के नाम लेवेला उकर माँ बाप वो के कुछ ना अभी नहीं देख सब चेंज ऑफ नेम कभी आदोपते कर कैसे नमुआ सौंसे वेला सब नहीं तो अभी के हम नहीं देखते हैं कैसे वो लड़का ने होल उकर माँ बाप के उकर है नमुआ लेवेला और या माँ बाप के या दोनों के हैं और कोई के दुआ नहीं है सेरवी करे के एगो नो है एगो नाम शेनो मिसेलम जोन के उकर माँ बाप दिखलारे कर लेवा अब हमर नाम कैसे या तोहर नमो लैला सर तो कब डिक्लारे कर लेबा तोहर माँ बाप तो तोहर सियनोवा कौन बा कब सब कोई जहाँ जाएला तोरा पूछी ना तोहर सियनो का तो आदमी तो बोलिए हम खिलावन हो तो तुके हम खिलावन से जानब तोहर माँ बल पस की तोहर पिताजी के हाँ एगो दूसरा चीज हमेशा एगो है सियनो लेवल जला बाप के नमो मैं माँ बाप हुआ कब मजा है बाया जीते बा डिक्लारे शादी कर ले ओकर नाम नहीं मवा के ओकर सियनो बस की बोले लनसन हर घर में एगो हेड ऑफ है एगो घर के एगो बाप है
1: हुँ.

0: हमने बनावला ही कानून है, कानून बनाला उधर से स्वाजी करेला। तो हिया देखला ओकर बाप के नाम लेवेला एगो लड़का जोन मजे पैदा होएला। ई पहला चीज मैं बपुआ नहीं देखला रे करी नोमाल ओकर सियनो लही ओकर मऊ के नमुआ। अब हमने देखला सा कि कब ई एगो लड़का है ने होएला। माँ बपुआ तो सिविल शादी कर ले बा आली त नमुआ होएला ओकर बाप के। मैं एगो बा हमने के एगो लड़का मयास कर है ओकर हिस्सा जे माँ बाप शादी कर ले बा। मैं शादी कर ले बा रिलीजियो में पहले दिखले रहा पैकमा। अभी हाँ, अभी तो हाँ, हाँ, सिविल कर बा
1: सिविल तो अब बहुत बाद में कुमोसी हो बा
0: आली त उ कुमा जे कब एगो शादी कर ले बा एगो है माँ बाप सिविल नहीं रिलीजियो। जब रिलीजियो में शादी कर ले बा त एगो नमुआ तो लेके चाहला ना इतना नहीं अब नहीं रिकोनेट होला। मैं पहले तक रहल जब ले एग्जिस्ट बा एगो लड़का बने हुई मेम की शादी कर ले रहा ओकर माँ और ओकर बाप कुमा जिया सिविल में हमेशा बपुए के नाम ले हुई बाप के नाम आए लेगी मेम की। अब एगो मया सिविल नहीं है मया सिविल रिकोनेट होला मैं रिलीजियो नहीं है तो ओकर कुमा जिया नमुआ तो बपुआ जात रहल रजिस्ट्री करे ओकर नमुआ में जोन उ बपुआ के नाम बा सियनो बपुआ के लेवे। हमने के तो एगो लेपोक रहल माँ बाप दिक्लारे करे तो जाके लड़का के दिक्लारे करे ओकर नाम में। मैं उ बखत बोले कि शादी नहीं कर ले बा रिलीजियो रिलीजियस मैरिज। मैं उ रिलीजियस मैरिज लेता सिविल इफेक्टिव होल कब सिविल से 6 साल उ आके रिकोनेट कर लख मोयाज सही रिलीजियो देख लो एक बान आदमी भाई से पहले जोन के कुमार बहुत लाज में जोन हुई अंसन उ तो रिलीजियो है कि मैं ओकर नाम रन माँ बाप शादी कर ला। मैं कब आल सिविल स्टेटस सब समझे होल कुमार जो कानून बगल से तो ऊ देख ऊ आदमिया के शादी कर ले रहा रिलीजियो हाँ मैं ओके कब आल है लेता सिविल कब कुमार जो विगे आल कुमार एगो कानून होल एगो लालवा होल तो देख अब सब आदमी ऊ में लिख ला सिविल मैरिज कुमा जे हो लेता ऐतिल ऐतिल दिनों से ते ई बड़ी एगो चीज होवेला। आली ई त जोली बा रिलीजियो त देख ली सा एगो त शादी कर ले बा एगो लइका जो नेचुरल बा ओ के कर नाम लेवेला। एक बार आदमी देखले नाम एगो फिनी चीज नहीं है। आली एगो एगो है जोन है एगो लइका बा नेचुरल नेचुरल के मतलब मिशे मैडम शादी नहीं कर ले बा न सिविल न रिलीजियो कुछ नहीं
1: शादी कुछ नहीं कर ले।
0: हाँ एक बार आदमी बोला कंक्यूबिनाज में रहला या गो कुमिराज में और जाके ऊ लड़का पैदा हो गल बा तो ऊ लड़का नेचुरल बोली ला सर ऊ के ओकर केकर नाम में ऊ रे को नहीं होवेला। अली नेचुरल लड़का नाम लेवेला ओकर बाप के।
1: हाँ
0: समझ ला इमे नहीं नेचुरल अब बपुआ तो नहीं गल बा मिल एगो लड़का नेचुरल नाम लेवेला जोन आदमी ओके रिकोनेट कर ले बा नहीं ओकर मऊ सगी डाल दी ओकर नाम तो नेचुरल है। तीन कार का में देख भूगा बोले नहीं जाने हम तो शादी कर ले हैं तो से भी एगो प्रॉब्लम मजे में एगो लड़कुआ हो गल बा अब हम नहीं सकब दिखलारे करे तो तू दिखलारे कर तो ऊ लड़कुआ
1: माँ के नाम
0: माँ के नाम एगो लड़का नेचुरल पसी मौआ बपुआ में तो है कोनो है नाता नहीं बा ना पस मिशिवा तो शादी कर ले बाद सिविल
1: से लेकिन लेकिन हाउ जन मान ना शादी शुदा बा मिशि मैडम होवन स मान ना मिशिवा जन बा ओकरे को नाजायज लड़का हो गल तो वो चाहि तो सकिया पर नाम दे।
0: हां सकी तो हां हां पस की एक बान बा है बहुत सब हमने के कानून में तो इतना दिन गल नहीं हम कितना दे ले बा एगो लड़का बाप मां तेही देखेला कब एगो लेपो कावेला जब लाफी दावीद करे लनसन एगो कुमा जैसे बुझो बपुआ मरगल एगो लाफी दावीद दे सिक्सेशन करता ओकर परिवार हुआ तो कब ओ लड़कुआ जो नेचुरल रहल जो ओकर बपुआ डिक्लारे कर ले रहा ओ लड़कुआ के यहाँ तो अपन घरवा में नहीं जाने लनसन ना यहाँ तो नहीं जाने लनसन भाई बहन यहाँ अरे मर एगो दूसर भाई बा बस एगो दूसर को मेरा से तो ऊ का करिए यहाँ देख बा पता चलता तो यहाँ पता चलता तो ऊ लड़कुआ जो नेचुरल बा तो बोले हमर बाप हमके दिखलारे कर ले बा तो कैसे हमर कुमा जे हमके कुछ दन दौलत या पताज या जमीन उन कुछ नहीं मिलता हमर तो बपुआ ने दिखलारे कर ले बा और कानून बोले रहा जब ऊ दिखलारे कर ले बा तो हमर तो हम जिगिची भाई तो हमके तो मिले के चला कुछ ना कुछ। अब का करी ऊ चैलेंज करी हो लाफी दाबी दे सिक्सेशन आके बोली नहीं वो एगो आबू आबू का देख के

0: जोन उ बनल बा ओके नहीं बेला हमर नाम नहीं बा उमे हई कामर लाग देने सांस बा हमर लाग देने सांस में कामर
1: का धुआ ह
0: हां फुल
1: लीगली ओकर कानूनी तौर पे लइकवा के धुआ ह कि आज ओकर पिताजी के देहांत हो गल बा और ओकर नाम जोन बा ओ पिताजी देले हो नुकरा ओकर नाम बा ओकर संगे त ओकर धुआ ह जाके बोले कि नहीं एकर में हमरो हिस्सा बा चला हिस्सा मिले के
0: आर जे पताज हो गल ओ दे पस्ताज बिस्कुट नियर टू डाई बस की काहे उ त एगो लइका ह कैसे ओकर कपार छोड़ जाइए सोते हो के अब दूसरे के दे देला तो देखे ला नाम कैसे करेला कब देखलारे कर लो हैया कौन कौन चीज अभी अभी तो शुरू हुआ बोलबा अरे मिस सिल्मा एगो लड़का जो नेचुरल है अरे बपुआ नहीं देखलारे करता है यहाँ तो देखलारे कर लक है बपुआ हिया नहीं देखलारे करता है को नहीं करी ओकर माँ ओकर माँ देखलारे करी तो ओकर माँ के नाम ले यू
1: हाँ
0: समझ ला ना पस ओकर बपुआ के नाम रहता हम यहाँ तक सदिया कर ले बा तो हिया तो नहीं शादी कर ले बा तो मौआ ओकर नाम कैसे ओकर नाम मामजे ले ले बा सिपा कर माँ बाप के उ नमुआ से अब न लेकुआ के दे अपन नाम दे मौआ उ लेकुआ जो नेचुरल बा ये बड़ी इम्पोर्टेंट जैसे बोली से ना से दोनों जे कुमा जे हई कर ले हो यार दोनों शादी कर ले बा तो लेवेला बपुआ के नाम उ लेकुआ अब आईला सब एगो लड़का अडॉप्टिव
1: हाँ एकर बारे में हम जाने को थे एगो लड़का जब अडॉप्ट करबा तब जाहिर सी बात बा लड़का के जाना अपन नाम देखे ना
0: हाले तभी देखे ला सर एगो है आदमी का कर लग दिखता एगो लड़का बा तब बोली नहीं हम एक एगो चीज करब ई लड़का के मजा जाने ला अडॉप्ट करी ला हम अडॉप्ट करब के मतलब उ दूसर के लड़का है अब अपन मजन नाम में लई को जता उ है लइकवा के अपन नाम देई को जता
1: यानी कि हई जुन अपन नाम देब एकरे बोलल जला अदुप्ते करे के
0: हां एगो लई नहीं एगो लई
1: हां कोज के से अदुप्ते करत हो यानी कि ओकर अपन नाम देव थो लई
0: हां अरे नहीं एगो स्प्लिक कर दे अदुप्शो ह का अदुप्शो ई ह जहां एगो एगो आदमी बा ओकर लइका ह उ जन्म देले बा मोकर त माँ बाप दोनों बा जन्म ओके देले बा अब एगो बा सिबोसो एगो आदमी के ओकर नहीं है बा कोई तो बोलिए अरे कैसे हम कैसे जी अब धन दौलत बा घर बा सब एक दिन मर जाब तो के मिली कोई तो नहीं बा लड़का नहीं बा तो ऊ बोली ओकर देखभाल करे के बोली हौ जोन के कुमा जे दू तीन गो लड़का ज्यादा हो तो बोली एगो लड़का हम नहीं ले लेब सर पहले जाने का है एक बान खाई भाई बहन बहन रहे तो बहन बहनिया बोले एगो बाहुआ के फूफुआ मौसी कुमा जे जोन के ऊ के मौसिया के से बुझो लड़का नहीं बा तो बोली तो हमारे बहनिए के लड़का है हम आदुप्ते कर दे ला पस हमरो तो नहीं बा कोई काल मर जाब तक के देखी ई बहुत ओ कुआ रहल पहले हुए से तो अब उ का करता ओके मन बा लइकवा के लेके ओकर नाम तो दूसर रहल ना ओकर हई सियनो तो मऊआ के नाम रहल ओकर बहन रहे आली तो हियाँ तो शादी कर ले रहल दूसर के या नहीं कर ले रखल तो ओकर का करी तब ओ बोली कि हौ जोन लइकवा के आदुप्ते करे को जता ओकर नमुआ ओके लइकवा के दे ओकर आदुप्त तो देख लो एक बान केस बा हियाँ मॉरिशस में एक बान आदमी आवेला है अनंगले तेर से जोन के लड़का नहीं बांगले हो फांसे हो कुछ हो आके हियाँ लड़का लोग के जोन मुर्शिया के लड़का के कोई नहीं बा शेल्टर में तो एक बान बाहू हाँ। शेल्टर में कोई के नहीं जानबा के कर लड़का है तो शेल्टर के लड़का के मांग करे लनसन सब ओको चैनल प्रोपे में जाए के कि ये लड़का क्योंकि मन बा आदुप्ते करे के एगो एगो है कमिटी उ सब बैठेला काउंसिल उल बैठेला देखेला कि हाँ कोरे इकर आदमिया सकल लाई लड़का के आदुप्ते करे तो आदुप्ते करेला तो एगो नाम दूसर ओकर रहल लइकवा के आदुप्ते करेला तो ऊ आदमिया चाहे तो ऊ नमुआ ओकर रही ओकर नामे डाली मतलब जो आदुप्ते करता बस ओकर नाम तो हियाँ लइकवा के दूसर नाम रहल तो जो परिवार वा जो फैमिली जिसे हमने मरसा आदुप्ते करेला ऊ नमुआ लेवेला जो ऊ लइकवा जो आदमिया ओके आदुप्ते कर ले तो देख लो हुआ से अभी देखे वो छोटा सा बूथ अभी कैसे कितना डिफरेंस नाम करिए तो आदुप्ते जो आदमिया कर लब ओकर नामे हो गल अब लइकवा कब हियाँ आदुप्ते हो गल तो के लेता सिविल में का करे लनसन रिक्चिफिए करे लनसन ओकर नाम तो दूसर रहल अब जो आदुप्त होल ओकर नाम होल कोनो का करेला इहो नमुआ रखी उहो नमुआ ओकर रही आजूते कर दे ससा विजय जनब कि एकर जो नादुप्ते कर लेबा ओकर नाम बा हियाँ
1: जन्म दे लेबा
0: जे जहाई का जे जन्म दे लेबा ओकर हो जला तो उ लइकवा देखला दोनों के कैसे एगो छोटा सन छोड़ के नमुआ में बोला सब देखे गो लैका के आदोप्ति करब।

0: तो कितना ओके कुमाजत चीज को मिले ला को पता सुवेला के धन दौलत का बेचेला ओकर नाता जुन ओकर माँ से रखल अपन जुन भाई ओके जन्म देले बा उ कभी छूटेला नहीं। एगीते करी हियो एगीते करी हुओ खोज लगो आदमी तुरा दुपते कर दी दोनों बगल से कुछ ना कुछ मिलते रही। ये देखा ला आदर्शों में आप सभी हमने के कुछ सिविलवा में जाते
1: आदर्शों खाली लड़का लोग के नहीं होला मैम जिस भी तों के हो गए ला तब तक बात होते करेगा।
0: हाँ एगो लड़का सकी एगो एगो हमारे को भाई मजे का प्रोग्राम करते से पहले तम के ये सुमा पूछे ओके 30 बरिस हो गल बा तो सकल दियो के आदुपते करे। हाँ सकल आदुपते कोनो लाज नहीं है आदुपते मैं को कृत्य देखल जला कि सकब आदुपते करे तो ऊ जो एगो आदमी बा एगो सिबोजों के 30 बरिस हो गल बा वैनसैंक थॉन्स हो गल सिपा थॉन्सैंक हो गल बा ऊ एगो आदमी के हमेशा देखते गल बा
1: सेवा करता
0: ओकर सेवा करते गल बा तो ऊ तो नहीं सकी ना काल दूसर के कुमा जे आदुपते करिए तमने आदुपते आदुपशो में आपसा तो देखब स लिमन से आली। अब एगो लड़का बहुत सा केस आवेला लाकुर में एगो देजावे बोलत हैं सब ये बोला था भपुआ कि हमर लड़का नहीं हो कितना केस है आवेला डिक्लारे कर देले बा लाग देने सांस में ओकर नाम दे देले बा भपुआ देख के नाम बा अरे भपुआ का कर लग ओ कुमा जिया देख लग कि कुमका जन लग कि नहीं हो मडमुआ जोन के हम डिक्लारे कर रहे हैं लड़का और ओकर नाम में ये हमर लड़का नहीं हो बस कि बान कोई बोले ला दूसर से ओके लड़का होल बा एगो देजावे ये बोले खोजता कि ये लड़का ओकर लड़का नहीं है। अब एगो फोसे जी है हमने के कानून में जब एगो माँ एगो बाप आके बोली कि कोमका लाखूर में एगो केस रंतरे हुई ढुकी तो बोली कि ये लड़का हमर लड़का नहीं है तो ओके चाहे ला ओके एगो केस करे के जे आके लाखू में सकी बपुआ पूवे करे जो नमुआ देले रहल और उ लैकवा के उ ओकर नाम कुमा जे बदले के तो दिखब जे बताई सकी कानून के कि ई ओकर लैका नहीं है तो कानून सकी बोले ओकर नमुआ आज काट दे में ओकर माँ के नाम ले लैकवा देख ला देजावे होकर बस यहाँ तो बा एक बान चीज बा ना बस ये सकेला एगो लड़का जो लेजिम बा वो ओकर बाप ओके कोते से करे के कि ये लड़का हमर नहीं है या ओकर नाम में है डाले के तो यहाँ लाख है में है लिता सिविल में तो देखब उ लड़का के आके कुमा जे है ओकर नमुआ आके है कुमा जी सौंसे करेलन सन जब कानून देवेला एगो जुजम कि ये लड़का एगो देजावे है एगो लड़का ओकर नाम में नहीं है तो का करियन सन उ लड़का के ओकर नमुआ सौंसे कर दे तो ओके एगो डायरेक्शन दे लाकू है लाकू कि जा लेता सिविल में हो जुजमा अवेचे उ जुजमा से ओकर नाम जुन बा सौंसे करे के तो नमुआ जब मऊआ कोतेस्ते कर लग बपुआ से दजिया मऊआ की ओकमा जे है दूसर से कोमेगाज करके उ लैकवा के आल तो यहाँ नमुआ देखब सौंसे हुए ला।
1: यहाँ पर जब हम बात करे थे जा एगो नाम के तो जैसे बोला कि जब आदुपते करब एगो लड़का के तो अपन नाम देवत हो अब जो अदमिया आदुपते करता ओकर दुआ है कि उ देसी दे करी कि जो माँ बाप के नमुआ बा उ रखी या नहीं रखी
0: नहीं नहीं वो नहीं वो तो देजा ओके खुशी हुई कि जाना दूसरा अपने लड़का के साइड लैकवा के नहीं सकता देखे वो सब तो ये ओके आदुपते करता तो ओकर नमुआ में जो आदुपते करता ओकरे नाम में हुई ना तो हिया नहीं सकी बोली आई जो है आदुपते करता ओकर
1: दुआ है कि माना हमके कोई आदुपते करता
0: हाली हाँ
1: तो हमारे नाम तर हमारे नाम में तर राम खिरावन बा
0: हाँ
1: तो हमके सोच रहा गुणंदन जी हमके आदुपते करता तो ओकर दुआ है कि जब हमके आदुपते करी तो वो राम खिलावन वा के नहीं नहीं नहीं ले अपन नाम दे ऐसे सकेला हुई
0: नहीं तो काहे बोला जा ऊंचा चाहा था नहीं तीन काट नहीं देखवा उसे बाय जैसे
1: नहीं ऐसे होल ऐसे होल
0: नहीं हुई हुई ला मैं ही या जो जेकर लेकुआ हो वो तो खुशी रहल की ओकर नमुआ जोन बा ओकर दांचिते ओकर जोड़ के ओकर नमो में ताकि सकेला एक दिन
1: हाँ।
0: नहीं कि जाने की वो ओकर लेकर रहल मैं की ही या आदुपते कर ले बा मैं यहाँ तक बन सब कोई जाने हाँ इतना हमर लेकर रहल दूँ नहीं एक बार आदमी के नहीं सुना मैं आज का कर बे हाथ धो दिली का निकाह होगा उसक जुसर रह मैं बाहिया ना उरई ओकर नमो सके जोड़े यार ओके सिबोजो नहीं मन

0: बा बोली नहीं देसी तू बोला तो ओके नहीं मन बा ओकर नमुआ डाले के रहे के
1: हां
0: तो जोन आदमी के आदुपते करे था ओ न ओकर नमुआ ले के आदुपते लेवेला जोन आदमी के जो ओके आदुपते करता मे सके जोड़े ओकरो नमुआ में ओकर हई से जोन ओके जन्म देले रहल तो देखला आली हिया नाम में अपनी तो बतिया देली सा नो प्रेनो आरनो अब हमने देखिला सर कैसे एगो मैडम या मिशिए भी है कैसे ओके एगो सीएनओ मिलेला
1: हाँ
0: जब शादी करेला
1: मैडम के जस्ते
0: हाँ मिशिओ मिलेला है मे भी हमने देखा सर कैसे मिशिए
1: मिशिए भी
0: हाँ भी ही तो एपोटा हुआ आले दूसरा हमने देखा था सर ये अब दो एगो टॉपिक कैसे एगो एक्विजिशन एक्विजिशन से दाजिया मिलेला एगो आदमी के सीएनओ जब शादी करेला अरे पहला चीज जब एगो आदमी जला शादी करे लेता सिविल के आगे जोन दिन जाए शादी करे तो ओ बोलेला उस स्वेते करेला कौन नाम सीएनओ ओके ले के चाहेला हमने के कुछ सिविल देवेला कुमाजिया एगो आदमी के एगो लोकाजियों कब शादी करे के कोई से सकेला एगो सीएनओ ले या पति के नाम ले या पत्नी के सीएनओ ले ये भी हो है अली हमने तो सब कोई जाने ला सब जब एगो मैडम जाला लेता सिविल में एगो कुमा जे शादी करे तो ऑफिशियवा के जाने ला जनावे ला से तो जिया कौन नाम ओके मन बाल ले के एगो नाम है सीएनओ पाथोनिमिक नाम ले के ओकर नाम कुमा जे ओकर पति के तू गई शादी करे ऐसे शादी करे तो हमारे विषय बोली ना कौन नाम है में है शादी करे तो बूढ़ा के तिल नाम बा वही रमुआ रखबा ना सियानुआ बताइए तो बोली ना कैसे हम शादी कर ली मत बुढ़िया से अरे गप शादी कर ली से हमने दोनों संगे तो हुआ इता सिविल के ऑफिशियवा बोला था कौन नाम मदमुआ के कौन नाम रखबा तू तो बोले मर बूढ़ा के शादी कर नहीं तो मर बूढ़ा के सियानो रब तभी से मजा नाम कांति रघुनंदन छोटा ओकर नाम नाम कांति रघुनंदन तो हमर सियानो है आलो तो कांति रघुनंदन हो गल तो ओकर ओकर नाम यहाँ भी नहीं दिले हैं तो हिया बोली ओके रघुनंदन के नाम ले हुआ था ओकर पति के नाम तो सा एगो आदमी ओके सियानो मिलेला जब शादी करेला तो पहला एगो मैडम के सखी नाम सिरवी करे ओकर पति के नाम सियानो सियानो बोलते हैं अब हमने देखा था ऐसा उस सखियो के नई मन हुई था मिशिवा के नई मोई नहीं ली ओकरे नाम में दिखलारे करी समझे कि समझ आप एक एग्जाम्पल दिला हमार बुढ़िया के नाम कांति पुआंग कांति रघुनंदन कब हमार के नमुआ स्वाजी कर ले बा तो के नहीं बा हमार नमुआ रघुनंदन के मन नहीं वाले के
1: अपन नाम रखी
0: ओकरे नाम रखी कांति पुआंग देखला हिया ओकर नमुआ पपियोआ में मेम की शादी करता सिविल ओके मिले ला उदवा मेम की हम मयास अपने नाम रखे के और पतिया के नाम नहीं लेके
1: तो पति के नाम रही तो कर यानी कि सब कोई ओकर हवे नाम से जानी
0: नहीं है तो सब कोई ओके हल्ला करी अभी ओकर नाम जो नहीं कांति रघुनंदन से कांति है पुआंग से ओकर नाम ई है बस वो तो नहीं ले लेबा मिशेवा के नाम तो कैसे मिशेवा अरे जहाँ जाए हाई करे गो फॉर्म हॉपी करे तो बोली ना सियनो तो नहीं सकी रघुनंदन वहाँ डाले
1: अपने नाम डाली
0: अपने नाम डाली तो ओके बोले ला कानून एगो आदमी कब उस शादी करे ला सकी खुशी रही तो ओकर पति के नाम ले ओकर नाम आजूते करे या तो ओके नई मन हुई पतिया के नमुआ ले के तो सकी ओकर मामजिल के नाम ओकर बाप के जो नाम रहल वो नमुआ डाले के कम सियनो में समझ ना एगो एगो चीज है और दूसरा चीज है सकेला ओके मन होई तो पतियों के नाम डाले के सियनो और ओकर सियनो डाले के उ नमुआ में
1: यानी कि दू गो सियनो
0: दू गो सियनो में के गो नुए में आई है हाँ मैं कब पासपोर रही है मैं कहते दांचीते रही दूनों में देख बा दूनों के नाम बा सकी जैसे मैं बोला ज्वाइन ज्वाइन करी है करी ओके आजूते करी
1: ओकर में रहला ओकर में रहला प्रेनो और ओकर में रहला नो
0: हाँ तो प्रे है नोआ में डाल दे ओकरो नाम पतियों के नाम अब सबसे दे एगो बड़ा चीज है और जिसो के मन हुई सिर्फ करे के अब एगो चीज हुए ला कभी एगो पति शादी कर ले बा

0: पत्नी से,
1: हाँ
0: वो पत्नी के नाम में सकी अपन नमाज उते कर दे।
1: हाँ हाँ एक बारे में तो नहीं जस्ती जाने को थी सर। ऐसे कैसन ऐसन एगो एक दुगो ऐसन केस आवेला जहाँ पर एगो एगो पति अपन पत्नी के नाम सकी ले।
0: हाँ,
1: ना
0: हाँ,
1: मान ला कि शादी कर लक जो नुकर पत्नी बा ओकर
0: हाँ,
1: खानदान में और कोई नहीं बा, खाली एगो बेटी बा।
0: हाँ,
1: तब ओकर नाम ले लेला तो मान ला ओकर ओकर ओकर ओकर जितना जायदाद बा सब पति के ओकर ओकर ओकरो हो जाए ना।
0: हाँ, नहीं जिस शादी करी तो उतु माची खा।
1: हाँ,
0: जब एगो आदमी शादी कर ले बा कब मज एगो मर गल तो कोई तिगिछे रहेला ओकर बूढ़ा या जे बूढ़वा मर गल तो है पत्निया उ तिगिछे होला आज जे लड़का हुई तो लड़का में सब मजार ओकर पत्नियों में बांटल जला। अब मिशवा मर गल तो पत्निया के एगो पार मिलेला समझ ला ना आधा लड़को लोग के एक एक पार मिलेला। तो ये हमने पता जाप से अभी तक देखब सब दूसरा जे आप शादी में कौन कौन चीज कौन कॉम्प्लिकेशन हुए।
1: हाँ,
0: तो अभी यहाँ दिखिला सर तो वो सकी रखे ओकर पत्नी के नाम और पत्नियों के नाम आजूते करके और ओकर मजे फैनो डाल दिया गाड़ी समझ ला। ये सकेला सकी सेवी करे ओकर मामजेल के नमुआ आर या सकी तो मिशे मदमुआ के जहाँ जूते कर ले बा नमुआ वो भी सिर भी कर।
1: हाँ, जब बोला मिशे सकी अपन अपन पत्नी के नाम रखे तो मिशेवा के तो अपन सियरों रही ना।
0: हाँ,
1: तो अपन सियरों के बाद में अपन पत्नी के सियरों सकी डाले।
0: हाँ, तो हियाँ ओकर नाम हुई सी बुजुर्ग रघुनंदन तो अब तन ले ले ले बा कुमा जे है पत्नी के नाम पूरांग।
1: हाँ,
0: समझ ले ना तो ओकर नाम रही उ में पहला होला में मिशेवा में कब होवेला था ओकर नाम रही कब शादी करी तो रघुनंदन पुगांग में कब ओकर नाम में आजूते कर लेबा ओकर नाम तो पुगांगवा में गाड़ी आई तब रघुनंदन आई समझ ला ना। पसी का है मिशेवा ओकर नाम में कुमा जे है ओकर नाम आजूते कर लेबा ओकर पत्नी के नाम मतलब ओकर पत्नी के नाम से चलता वो में है करता आली। जब हमने देखी ला सर एगोवा गुजर गल बा।
1: हाँ,
0: आली अब कब गुजर गल बा ते केकर नाम कुमा जे ओ ओके कुमा जे रही। हाँ, जे कब ओकर पति जे गुजर गल बा तो सके ओकर पति के नाम वे रखे समझ ले ना।
1: हाँ,
0: बान आदमी बोले ला रही तो मर गल बा अब तोहर नाम सिर्वी करिय होइया ममजिलवा के नाम के बोलता कहाँ कानून में लिखल बा जो ओकर पति मर गल बा ओकर नाम बा पतिया के नाम वे नो तो कहते मन नहीं बा सांसे करे के। हाँ, सकी रखे सकी करे
1: जरूरी नहीं है ना सांसे करे के
0: ना। एक बान आदमी बोले ला ना बोले तो तू तो बहते मराम है नहीं हुए तो कहता चाह तो नमुआ सांझे करे के तो हिया सकेला ओके नहीं कुमा जे सांझे करे नमुआ रखे के आली ये तो अच्छा हो गल। अब देखिए से एगो पत्नी शादी कर ले रहल अब जीवोश हुई।
1: हाँ हाँ वही पूछे कर
0: रही जीवोश हुई।
1: हाँ,
0: आली जब एगो पति पत्नी शादी कर लेला नाम के विषय में आंका जीवोश उ दोनों पति और पत्नी अपन नाम लेवेलन सन जोन आगे रहल। से बुझो तू अभी शादी कर ले हो तोहर नाम है बा गाम खिलावन कब शादी कर ला तो तोहर एगो दूसर नाम मिलल।
1: हाँ,
0: तो अभी तो ओकर नाम से तू जाने ला पसी सदिया ही है बा काल जीवोश हो गल कब ओकर नाम भूल जा तो अपने नाम से सकब तू ही करे मिसलमो कर फोमालिते बा तोरा चाहेला सौजे करे के नमुआ कैसे नमुआ सौजे करे के हमने देखा सब पिता चेंज ऑफ नेम मैं अभी के लिए तोरा एगो स्पीके करते ही न तक बान भाई बहन जी सुना तो भाई ये कैसे हो गया। पति पत्नी शादी होल और पति पत्नी में जीवोश हो गल।
1: हाँ,
0: जब जीवोश हो गल तो पति ओक मजे अपन नाम करी पत्नी अपन नाम में चाहला रहे के
1: तब अभी हमने देखा दे जा कि हमने के समय चलल बा भी जाए के काहे के 10 बजे समाचार सुन अब जा।
0: अच्छा,
1: ऐसे करी ला जा है जन तो पिकवा बाई के रखब जा हमने के और कार्यक्रम खातिर। तो प्रिय दर्शक लोग बहुत बहुत धन्यवाद हमने के कार्यक्रम हमने के हिया पर परता रोके के हमने फिर से ही कार्यक्रम के लेके आओ अब जा। अभी के लिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद कपिल देव जी बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलब जा अगले हफ्ते
0: जरूर।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: घड़ी मिला लीजिए, समय शाम के ठीक 4 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।
4: ईशा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस में ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा शुरू की गई 57 धोखाधड़ी संबंधी जांचों में से 20 मामले इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड से जुड़े हुए थे। अब तक इन धोखाधड़ियों से होने वाले वित्तीय नुकसान का अनुमान 10 मिलियन रुपए से अधिक लगाया गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन मामलों में अधिकांश पीड़ित बुजुर्ग लोग हैं, जिन्हें साइबर ठग आसानी से निशाना बना रहे हैं। क्यूबेक की पुलिस मिडलैंड्स में एक रंच में एक व्यक्ति की मौत पर जांच कर रही है। 40 साल के अकाउंटेंट जोनाथन कुयामटू का शव कल उस रंच की पार्किंग में उनकी गाड़ी की बगल में मिली। उनके पेट पर गोली लगी थी। वे रोजिल के रहने वाले थे। आज शव परीक्षण किया जा रहा है। इस हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने एक जाँच शुरू की है। एमबीसी प्ले एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस पर ₹300 में आप पूरा वर्ल्ड कप देख पाएंगे, यानी सभी मैच आप देख पाएंगे। मात्र इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन पर आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपनी टीवी पर भी, जो एंड्रॉयड टीवी आपके पास है उसमें आप सभी मैच देख पाएंगे। इस एप्लीकेशन को लेकर जिन लोगों को कठिनाइयाँ हो रही हैं उनके लिए एमबीसी द्वारा विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है और साथ में आप यहां पर आकर इस पर ज़्यादा जानकारी भी हासिल कर सकते हैं और कठिनाइयों से भी बच सकते हैं। वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो चली। कल मेक्सिको के अस्टेका स्टेडियम में औपचारिक समारोह लगा। इस रंगारंग कार्यक्रम में करीब 80,000 दर्शक ने भाग लिया। इस वर्ल्ड कप के लिए 3 उद्घाटन समारोह निर्धारित हैं, जिनमें से पहला कल मेक्सिको में लगा और दूसरा आज कनाडा में निर्धारित है। आपको बता दें कि इन सारे मैचों की का सीधा प्रसारण आज एमबीसी पर भी किया जा रहा है। विदेशी समाचारों में थाईलैंड की राजकुमारी का निधन 47 साल की उम्र में हो गया है। इससे पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। 2 साल पहले वे दिल की बीमारी के कारण अचानक बेहोश हो गई और तब से कोमा में थी। वे थाईलैंड के राजा की 7 संतानों में से सबसे बड़ी और पहली उत्तराधिकारी भी थी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
6: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: चिट्ठी आई है
2: आपकी चिट्ठी मिली आपकी चिट्ठी रेडियो मनोरंजन पर आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। ये रेडियो मनोरंजन का प्रसारण है, अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक हम उपस्थित हुए हैं आपका साथ देने के लिए। माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना, हमारा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। बस आप सभी स्वस्थ होंगे यही आशा रखते हैं। शुक्रवार की शाम है और शुक्रवार का दिन आज, तो भाई कहते हैं ना कि जब भी शुक्रवार आता है तो बस यही उत्सुकता रहती है कि कब 4 बजे कब हम घर को निकले, है ना। सही बात है। और चलिए इसी के साथ आज के सफर में हम जुड़े हैं आप ही के बहुत ही प्यारे प्यारे खतों के साथ, आप ही की लिखी हुई कहानियों के साथ, आप ही के दिल के जज्बातों के साथ। कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ यादगार ऐसे एहसास जो दिल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में छुपे हुए मिलेंगे। और क्या खूब लिखा है किसी ने कि तुम्हारा हर फैसला सही नहीं होगा, तुम्हें हर इंसान सही नहीं मिलेगा, हर सौदे में तुम्हें फायदा नहीं होगा, हर राह रोशनी की तरफ नहीं जाएगी, हर लहर तुम्हारी नाव को आगे नहीं बढ़ाएगी, मगर तुम्हें फैसले लेने होंगे, लोगों का साथ चुनना होगा, लहरों में उतरना होगा, जिंदगी किनारे पर खड़े होकर बस दूसरों की कहानी देखने का नाम नहीं है, इसे खुद भी अनुभव करना होगा। और चलिए इसी के साथ, सच में कहते हैं ना कि जिंदगी में कई बार ऐसे अनुभवी लोग हमें बहुत सारी बातें समझाते हैं, सिखाते हैं, कहते हैं कि ऐसा ना करो, पर हम हैं मानेंगे थोड़ी। और ज़िंदगी में कई बार हम ऐसे कदम उठा भी लेते हैं जहाँ पर आगे चलकर हमें सच में उनकी वो बातें याद आती है कि हाय किसी ने कहा था हमसे कि ऐसा ना करना, पर आज हम इसी मोड़ पर आकर खड़े हैं। चलिए बातों को गोल गोल नहीं घुमाएंगे, आज की ये जो पहली चिट्ठी है कुछ ऐसी ही है जहाँ पर कुछ ऐसी, कहते हैं ना ज़िंदगी में हम ऐसे लोगों का सामना करते हैं जहाँ पर जाकर हमें एहसास होता है कि हाय बहुत बड़ी गलती कर दी इनको अपनी ज़िंदगी में जगह देकर। ऐसी ही एक चिट्ठी आई है यहाँ पर, आप लिखती हैं कि आपकी चिट्ठी कार्यक्रम बहुत ही हटकर है, जहाँ पर हम

जहां पर आप बिना नाम लिखे या किसी का बिना नाम कहे दिल की फीलिंग्स दिल खोल कर हम बात कर सकते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में अगर आप मेरी इस कहानी को इस चिट्ठी को आप शामिल करते हैं, थैंक यू अगेन, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और आज मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं। भाई बहन सगे संबंधी जो है वो तो हमारे खून के रिश्ते कहलाते हैं, पर दोस्त है उसे चुनने का हक केवल हमको होता है। मैंने भी अपने दोस्त खुद चुने थे, इसीलिए मैं किसी पर ये थोपना नहीं चाहूँगी, किसी को गलत नहीं साबित करना चाहूँगी। मैंने अपने दोस्त खुद चुने थे, मेरे कोई इतने सारे दोस्त तो थे नहीं, इसीलिए जब इससे दोस्ती हुई तो लगता था यही मेरा सबसे ख़ास है। उनसे मिलना, उनसे साथ, उनके साथ समय बिताना लगता था मेरा बचपन वापस आ गया हो। हम हर बार बाहर जाते, साथ खाना खाते, एक दूसरे के साथ अपनी हर बात को शेयर करते। इतना ही नहीं, काम पर जाते वक्त उसे लिफ्ट देती। जिंदगी के ये सफ़र को हम बहुत हसीन तरीके से काट रहे थे। कई बार हम साथ मिलकर समंदर भी जाते। क्या मज़ेदार दिन बिताए हमने साथ मिलकर, मैं और मेरे तीन दोस्त। हमारी पागलपंती की जो टोली थी, बस क्या कहें। ना दोस्ती में, भाई कहते हैं ना, दोस्ती में भाव जो है, मन का जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल अनकंडीशनल होना चाहिए। निस्वार्थ भाव जो आप बता रही हैं, निस्वार्थ भाव होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। और निस्वार्थ भाव होने से होना ही, अगर दोस्ती में कहीं ना कहीं इंटेंशन खराब हो जाए तो रिश्ता बिखरने लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे क्या पता था कि दोस्ती के बहाने वो मेरा इस्तेमाल कर रही है। उसने काम पर भी मेरे साथ रहकर मुझसे सारी तकनीकें, सारी काम करने के ओके, आप बताना चाह रही हैं कि वो आपकी कलीग थी। ओके, उसने काम पर भी मेरे साथ रहकर मुझसे सारी काम करने की तरीके सीखे, और मैं भी उसे बहुत दिल खोलकर सब कुछ सिखाती गई क्योंकि वो मेरी जूनियर थी। पर मुझे क्या पता था कि मैं सांप को दूध पिला रही थी। कुछ समय बाद उसने सभी से मेरी बुराई करना शुरू कर दिया, और इस कदर उसने मेरे जान पहचान वालों को भी मेरे खिलाफ भड़काया कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। उसके हर मुसीबत में जहां मैं उसके साथ खड़ी थी, कुछ नाम कमा लेने से लोगों के रवैये बदल जाते हैं। ऐसा मैंने सुना था, पर आज मैंने अपने आँखों से देखा। मुझे मेरे परिवार वालों ने बहुत समझाया था कि ज़रूरत से ज़्यादा गहरा रिश्ता अक्सर चोट पहुँचाता है, पर मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। पर आज यकीन हो गया कि दोस्ती करने से बहुत ही ध्यान से हमें दोस्त चुनने होते हैं। दोस्ती करने से अब मुझे बहुत डर लगता है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि दोस्ती भी आज सौदा बन चुकी है। संभाल कर दोस्ती करना आसान नहीं है, पर निभाना बहुत मुश्किल। अच्छा, दोस्ती करना आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल, बिल्कुल सही कहा। और अगर आप दोस्ती को सौदा समझती हैं तो यकीनन आप उन अच्छे दोस्तों से हाथ धो बैठेंगे, और जिन्होंने बिल्कुल आपकी कदर की, आपको चाहा, उनसे आप हमेशा की तरह, हमेशा के लिए नाता तोड़ देंगे। बिल्कुल, आपकी जो चिट्ठी आई है बहुत ही स्पष्ट रूप से आपने लिखा है कि आपने कहीं ना कहीं धोखा खाया है, और धोखा भी एक ऐसे इंसान से जिसको आपने दिल में जगह दी। कई बार हम कहते हैं कि हम आए दिन मिलते हैं लोगों से, और कुछ ही दिन में कई बार ऐसे भी लोग हमारे होते हैं हमारे आसपास जो बहुत जल्द हमारे साथ घुल मिल जाते हैं, और हमें लगता है कि वो इंसान हमारा कितना अपना है, कितना करीबी है।

और ऐसे रिश्ते के साथ हम अपनी सुख दुख की सारी बातें शेयर करते हैं, जीवन के सारे राज हम उनके साथ साझा करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे लोगों के साथ हम कहते हैं ना कि उठते हैं बैठते हैं, उनके साथ हम ज़िंदगी के वो हसीन पल बिताते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और अगर कभी ऐसा होता है कि कोई आपकी इस दोस्ती का गलत फ़ायदा उठाता है तो इससे गहरी चोट और कोई हो नहीं सकती। ऐसे दोस्त दोस्त कहलाने के लायक नहीं होते। पर बस जैसे आपने कहा ना कि कई बार हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या हमारा परिवार जो है हमें ये बहुत बार समझाता है कि कई बार कुछ रिश्तों की एक उम्र होती है, कुछ रिश्तों की दहलीजें होती हैं, लिमिट होती है जिसे हमें पार नहीं करना चाहिए। और उस लिमिट को तय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी बाउंड्रीज़ को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस बाउंड्रीज़ को हम बहुत ढीला छोड़ देते हैं तो बेशक बाढ़ तो आएगी। बिल्कुल जिस प्रकार से पानी को बांधा जाता है और अगर वो बांध टूट जाए तो बाढ़ के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान भी सहना पड़ता है। और यहाँ पर तो हम इमोशंस की बात कर रहे हैं और बेशक इमोशंस को भी बहुत ही, हम कहते हैं ना कि बहुत नाजुक होते हैं इमोशंस, फीलिंग्स। और ये फीलिंग्स कई बार हमें इस कदर हर्ट करती हैं कि फिर उठना कई बार बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस भावनाओं के बहाव में आकर जो डूब जाता है या जो बिखर जाता है, बहुत मुश्किल से उसे समेटना बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बिल्कुल हम आपकी प्रॉब्लम, हम आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर थैंक यू आपने इस ख़त के द्वारा हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने का प्रयत्न किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेशक अगर आप भी अपनी कोई फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं तो आपकी चिट्ठी मिली MBC रेडियो मनोरंजन मौका पर आप हमें बिल्कुल पोस्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप हमारे साथ बात करके अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम। 4028070 अगेन, डेफिनेटली आपकी आइडेंटिटी को रिवील किए बिना आप हमारे इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ मैसेज भी भेज सकते हैं 5250-6200। कई बार ऐसा होता है कि रेडियो मॉरिशस के मैसेजेस रेडियो मनोरंजन पर आते हैं, रेडियो मनोरंजन के मैसेजेस रेडियो मॉरिशस पर आते हैं। प्लीज़ आप अपना अपने मोबाइल पर इस नंबर को अच्छी तरह सेव कर लें, 5250-6200 रेडियो मनोरंजन RM3 रेडियो पर इस वक्त आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। एंड डेफिनेटली जिसने हमें ये प्यारी सी चिट्ठी भेजी, हम ज़रूर ये गाना ख़ास आपके लिए चलाना चाहेंगे।

0: चलिए इस गीत को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पॉज पे रखते हैं और हमारे साथ हमारी एक बहुत ही प्यारी सी श्रोता जुड़ी हुई है जो अपने शब्दों से कुछ जरूर अपना अनुभव बांटना चाहेंगी। आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो।
1: हाँ रत्ना जी।
0: नमस्ते श्यामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ,
0: मैं ठीक
1: हूँ। आपको भी अभिवादन है रत्ना जी।
0: Thank
1: तो
0: you.
1: मैं ये कहूंगी कि जिसने आपको ये पत्र लिखा है
0: जी,
1: चलो कम से कम मुझे तो अनुमान हो गया कि दोस्ती के आड़ में क्या क्या होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है रत्ना जी। बड़ों ने क्या खूब कहा है, दोस्ती करना है तो दोस्त को पहचान कर करना चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: हाँ, क्योंकि दोस्त आपके दिल में घुस कर जो दिल की बातें हैं ना निकाल लेते हैं, अपनी चुपनी चुपड़ी बातों से आपको भरमा देते हैं, बाद में क्या करते हैं आपकी बुराई करते हैं, पीठ के पीछे वार करते हैं। तो हमें दोस्ती के कैसे दोस्त के चिकनी चुपड़ी बातों से बचना चाहिए। और हमारे बड़ों का कहना है कि देखो जितनी बातें हैं अपनी बातें कभी दोस्त को नहीं, दिल की बातें दोस्त को नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए, जो दोस्त होते हैं वो नहीं रख सकते हैं। वो आपको बदनाम कर सकते हैं, आपकी बातों को उलाट पुलाट कर बढ़ा सकते हैं, बढ़ावा देते हैं, आग

0: आते हैं, आपको पता है ना। तो माँ का कहना है कि अगर कोई भी बात हो तो तुम्हें शेयर करना है तो मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि जो माँ होती है ना वो अपने आंचल में सभी बातों को छुपा कर रखती है, उसे हवा लगने नहीं देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और जो सखी सहेलियां होती है तो नहीं रख सकती है, आपको पता, ऐसे कहेंगे आपको पता है फलाना ऐसा है चिलाना ऐसा है, ये होता रहता है, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ है। वो आपसे अच्छे अच्छी बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे और पीछे के पीछे क्या करते हैं, वार करते हैं आप पर, आपकी हंसी उड़ाते हैं, बुराई करते हैं।
1: कहीं ना कहीं वो आपकी बातों को लेकर उसका एक जैसे गलत फायदा उठाते हैं और इन सारी चीजों से लेकर आपके आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं।
0: ठेस पहुंचाते हैं, आपका जो कैसे कहते हैं जो आपका जो चेहरा है उसे खराब कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हाँ ऐसे कहते हैं। तो मेरा यही कहना है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी,
0: क्योंकि ये सब अनुमान हमें हुआ है
1: जी,
0: तो इसीलिए हम बस कराते हैं दोस्तों से।
1: बिल्कुल,
0: हम
1: नहीं,
0: बात
1: और
0: करते
1: मैं समझती
0: हूं, बात
1: आप मेरी शायद बात से सहमत होंगे श्यामा जी, आप अनुभवी हैं और आप जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां पर आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं। तो मैं ऐसा मानती हूं श्यामा जी कि बहुत जल्दी से जो गहरी दोस्ती कर लेता है या बहुत जल्दी से आपके साथ दोस्त बन जाता है या बहुत ही आपको कम समय में ऐसा एहसास कराता है कि मैं ही आपके लिए बहुत ज्यादा खास हूँ, ऐसे दोस्तों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही दोस्त बहुत ज्यादा खतरा हमारे लिए खड़ा कर सकते हैं। जी
0: आपने ये सुना होगा ना, मीठी मीठी बातों से बचना जरा,
1: बिल्कुल
0: दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
1: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा श्यामा जी, और बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों को आपने आज के इस कार्यक्रम में साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर भी।
0: हाँ जी, क्यों नहीं, अगर फायदा है तो अच्छा है ना, जो अच्छा लगे उसे अपनाना है और जो नहीं अच्छा लगे उसे छोड़ देना है।
1: सही बात है, सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी, बस मिलते रहेंगे इसी सफर में, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और इसी के साथ जी हाँ, हमारे साथ श्यामा जी जुड़ी रही, और ऐसे हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो हमेशा अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को हमारे इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। चलिए इस गीत को फिर से जारी रखते हैं।

0: चलिए यहाँ पर हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। हेलो
1: हेलो रचना जी, प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्ते भाई जी, आपको भी हम प्रणाम कहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में सोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशा करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में आपको, आप बस अच्छा फील कर रहे हैं गानों को, कहानियों को सुनकर।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: हमेशा की तरह हम सुनते हैं और दिमाग दौड़ाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और लोगों को भी सुनते हैं। हाँ। आपके प्रोग्राम एंजॉय करते हैं, अच्छे अच्छे विचार लाते हैं, अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं।
0: जी जी,
1: तो थोड़ा सा हम आपके साथ शेयर कर लूं।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: तो पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं लिखते हूँ विशेष से मानो सोहन हूँ।
0: हाँ जी,
1: मैं रचना के प्रोग्राम

0: हमेशा सुनते हूँ, सुनते रहता हूँ, और पत्नी से भी कहता हूँ, ये देखो रत्ना कितने अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे हैं, लोग अगर समझे तो समझे, ना समझे तो हम बहुत उसके साथ तो क्या कर बताएं। लेकिन जो हमारा आज के बोल है,
1: हाँ?
0: तो ये जो चिट्ठी है, चिट्ठी हर तरह से चिट्ठी मानना जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मतलब कि मानने के बात ये है, जो हमारा परिवार हमें छोड़कर चला गया और जो शब्द अपने बोली से हमके बोल कर चला गया, वो भी चिट्ठी है,
1: वो एक तरह का मैसेज ही है हमारे लिए।
0: बिल्कुल सही है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: सही।
0: जो हम रोज रोज शेयर करते हैं वो भी चिट्ठी है, चिट्ठी है, ठीक है ना। तो मतलब कि चिट्ठी के बात में जब हम बात करें, तो जैसे कि पहले जब हम लोग मॉरिशस में नहीं थे, विदेश में थे, तो हम कैसे बात करते थे, तो फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, सही है ना। तो हम लोग चिट्ठी लिखते थे, तो चिट्ठी में लिखते थे परिवार आप लोग कैसे ठीक हो, दोस्त लोगों को भी लिखते हैं आप लोग ठीक हो, हम ठीक है। तो इस माध्यम से हम लोग चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी से बात करते थे, सही है ना।
1: बिल्कुल सही।
0: तो अभी देखो, अभी तो चिट्ठी, मेरे ख्याल से चिट्ठी बहुत कम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत कम है। अभी तो देखिए, अभी नया टेक्नोलॉजी से अभी तो मैसेज है, फोन है, मोबाइल है, इंटरनेट सब कुछ है ना। तो लेकिन बात यह है कि भूलना नहीं चाहिए जो बड़े लोग हमें बोली से जो बोलकर चला गया, जो दोस्त भी बोलकर चला गया, जो हम गुजरे थे विदेश में चिट्ठी के माध्यम से, जो हम चिट्ठी लिखते थे, अभी तक हम चिट्ठी रखे हुए हैं, अभी तक हम चिट्ठी रखे हुए हैं, चाहे लंदन में था मैं चिट्ठी भी भेजते थे यहाँ घर पे, वो भी रखा है। वो हमारा हमारा हमारा जो शादी हुए थे वो कम से कम 35 ईयर्स हो गया, वो चिट्ठी हमने अभी रखे हुए है।
1: हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कहा। और मैं समझती हूँ, मैं हमारे हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक वो चिट्ठियों को संभाल के रखा होगा। बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हम, जैसे कि मैं तो एग्जांपल हूँ ना, मैं तो संभाल के रखा है, क्योंकि अगर मैं संभाल के नहीं रखता तो मैं, मेरा बच्चा काल होता था, उसको मैं कौन सा प्रूफ दिखाऊंगा उसको?
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझती हूँ ये जो छोटी छोटी बातें हैं हमारे जीवन की एक ऐसी पहलू के साथ जुड़ी हुई हैं जो हमारे लिए वो दिनों की याद दिलाती है। और सोहन जी, आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल आपने चिट्ठी के ऊपर जो बोला है बहुत ही सही कहा, बहुत बहुत धन्यवाद हम कहना चाहेंगे सोहन जी। और बेशक आज के इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया और हमेशा भाग लेते हैं, थैंक यू सो मच। हाँ जी,
0: धन्यवाद रत्ना जी, धन्यवाद। मुझे कहना चाहिए तो मैं आपको कहूंगा कि इसमें प्रोग्राम करते रहिए, भगवान आपको शक्ति दे।
1: चलिए, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद। बिल्कुल,
0: जितने कोई बीसी में काम करते हैं उन सबको हम बोलते हैं बॉन कुआ,
1: थैंक यू।
0: जितने हमारा दोस्त हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने दुखी है, जितने आश्रम में, जितने बीमार घर में, सबके हम उन लोगों के साथ में हम जोड़ते हैं और सबके बोलते हैं कि शक्ति मांगिए भगवान से, और भगवान आप सबको
1: साहस दे,
0: दुआ करे, मदद करे आप सबको,
1: सही।
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद शायद, बहुत बहुत धन्यवाद सोहन जी। और बिल्कुल जैसे सोहन जी ने कहा कि ये जो चिट्ठियां हैं ये हमारे जिंदगी को एक ऐसी कड़ी के साथ जोड़ती है जो बहुत ही ज्यादा अहम होती है। चलिए, खत की बात की है तो ये गाना लेते हैं और आते हैं इस गीत के बाद।

दोस्तों कहते हैं ना कि चिट्ठी एक ऐसा जरिया है जो हम अपनी जुबान से नहीं कह पाते, लफ्ज बाहर आने से घबराते हैं।

हिचकिचाते हैं वो हम चिट्ठी में लिख कर किसी को कह सकते हैं। वैसे आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के ज़माने में भी बहुत आसान हो गया है किसी का, बस किसी को कुछ भेजना है तो डायरेक्टली व्हाट्सएप है, मैसेंजर है और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके द्वारा हम उन तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, कुछ अनकही बातें शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो हमेशा प्यार से भाग लेते हैं और अपनी बातों को इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर रखते हैं। वैसे हमारे साथ एक श्रोता ने मैसेज यहाँ पर भेजा है कि जो चिट्ठी आपने आज पढ़ी है, मैं कहना चाहूँगी उस महिला को कि निराश ना होना, कभी कभी हम जिससे अपना दोस्त समझते हैं वो हमें दगा देते हैं, पर भगवान करे आपको सच्ची खुशी मिलेगी। हम कामना करते हैं आप बस जीवन में कभी निराश ना हो। ये मैं समझती हूँ सच में ये एक लर्निंग लेसन है हमारे लिए और इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। पर बेशक उस इंसान के लिए जो भावनाएं मन में थी, आप कभी ऐसा भी होता है कि हम उसे दोबारा से माफ़ नहीं कर सकते, या हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दिल के काफ़ी मजबूत होते हैं, हो सकता है कि माफ़ कर दें पर वो भूल नहीं सकते। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे मन की शांति ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के इस कार्यक्रम में जी हाँ, हमारे साथ एक और श्रोता ने अपनी बातों को साझा किया है। यहाँ पर कहती हैं कि हमारे स्कूलों के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में भी वे एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और बेशक चिट्ठियों के माध्यम से ही उनका प्यार आगे बढ़ा था। चिट्ठियों का आदान प्रदान, वो एक ऐसा दौर था जहाँ पर उनकी दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई, दोस्ती प्यार में परिवर्तित हुई। पर कहते हैं ना, कई बार तकदीर को कुछ और ही मंजूर होता है और चाहे कुछ भी हो जाए, जहाँ पर रिश्ता लगना होता है वहीं पर आपका रिश्ता तय होता है और ऊपर वाले ने कुछ अच्छा ही सोचा होता है। बस इसी को हम सोच कर आगे बढ़ते चले, कभी नाराज ना हो, कभी निराश ना हो। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बिल्कुल हम लाजवाब आपकी बातों के साथ सजा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ एक और प्यारा सा मैसेज आया। आप लिखती हैं कि आज का कार्यक्रम दोस्ती पर बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बढ़िया, और दोस्ती वो अनमोल गिफ्ट है जिसे हम दिल से ये रिश्ता रिश्ता बनाते हैं और इस संसार में सच्चा और अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल, बिल्कुल हीरे की तरह होते हैं। कई बार अगर आपको कुछ ऐसे दोस्त मिले जो आपका फायदा उठाकर आगे निकल जाए तो बस उनको एक लर्निंग लेसन की तरह लीजिएगा। कहते ना, हर दोस्त हीरा नहीं होता, कई बार कांच के टुकड़ों को हम हीरा समझ लेते हैं। बस ऐसा ही सोचकर जिंदगी में हमें भी आगे बढ़ना है और अपने दायरे सेट करने हैं, क्योंकि जहाँ पर हमने अपने दायरे सेट करना सीख लिया, हमने एनालाइज करना सीख लिया, लोगों को परखना सीख लिया, समझना सीख लिया, तो हो सकता है कि जिंदगी में आगे चलकर आप कम चोटें खाएंगे। और बस इसी के साथ इस प्यारे से गीत को आइए सुनते हैं।

चलिए इसी गीत के साथ आज के इस प्रोग्राम को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे और हमारे बाद आ रहे हैं रोशन जी। जी हाँ, रोशन हर नाम आपका, भरपूर मनोरंजन करने के लिए कलाकार के बात को लेकर। और आज के कार्यक्रम के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं सुनील कुमार रामतोहल, सुमन रामतोहल, जिसके नाम से आप बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से आप जानते हैं। तो ज़रूर कलाकार के बात कार्यक्रम में आप जुड़िए रोशन जी के साथ। दिलचस्पी बढ़ाने वाला कार्यक्रम, जानकारी बढ़ाने वाला कार्यक्रम। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को। चलते चलते यूं ही आपकी चिट्ठी मिली जहां पर आपकी भावनाओं को शेयर करेंगे। और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, शुभ संध्या और हैप्पी वीकेंड आप सभी को।

0: RM3 Radio. Radio.
1: अभी अभी बहुत बढ़िया गाना सुन ला जा फिल्म सत्यमेव जयते से सचमुच सत्य के हमेशा जय होवेला और ये जोन प्रोग्राम रहर बहुत ही दिलचस्प रहर अपन सखी रत्ना जी द्वारा तू सुन लग आपके चिट्ठी मिली और अभी तक 5 बज गलबा और ई प्रोग्राम के तब बखत हो गलबा
2: कलाकार की बात

0: अमर प्यारे प्यारे श्रोता लोगन, भाई बहन लोगन और संगतिया लोग, कैसे हो अजा? आज तब शुक्रवार के सांझ के बखत बा और तोहर खतिर तब बहुत ही भड़बड़ी हो गल, काहे कि आज तोहर बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होता कलाकार के बात। और आज के जो कलाकार है उकर नाम सुनबत बहुत ही तोहर मन खिल जाए। नौजवान कलाकार हुवन, आवाज भी दमदार और जुन गाना बा बहुत ही लाजवाब और लोकप्रिय। मॉरिशस भोजपुरी जगत में ओकर नाम त लिखल गल जाला स्वर्ण अक्षरों में, परंतु ओकर से अभी हमने बातचीत नहीं शुरू करब सर, काहे कि ओकर एगो बहुत ही बढ़िया गाना चला। आप सही गाना तो तू सुनबे कर ले हुआ रेडियो पर, टीवी पर ये सब क्लिप देख ले हुआ। ओकर आवाज़ सुनब तो जानल पहचानल आवाज़ सुनब तो खुद बखुद तुहरा अनुमान लग जाए कि ई नौजवान ई के होवनी जोन कलाकार के हमने चर्चा करत हई सर। तो चलो ओकर पहला हमने गाना सुनब सर, बाद में ओकर से हमने वार्तालाप शुरू करब सर।
1: RM3 Radio.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. कलाकार की बात, कार की बात।
1: जी हाँ, हमारे प्यारे प्यारे श्रोतागण, भाई बहन लोग, कलाकार के बात तो हर सेवक रोशन के साथ। अभी अभी आप लोगन सुनला बहुत ही सुंदर सा गाना सैया। बहुत ऐसा

सुंदर सुंदर शब्द बाई में जो नारी लोग श्रृंगार करेला जा ई गाना खास कर तोहलो खातिर महिला लोगन चला हमने बहुत ही शानदार तरीके से रेडियो मनोरंजन के लहर पर और एम फ्री के जो न लहर पर स्वागत करते हैं जा अपन भाई जैसन दोस्त के नाम होकर सुमन राम तोहल जी। नमस्ते

0: तोहर पीछे लगली परंतु तोहरा तो समय ही नहीं मिला था हाँ परंतु आज अभी तक वर्ल्ड कप के समा बा एकरे समा में तू चले रह जा तो बहुत धन्यवाद हम समर्पण करते हैं तोहरा एमबीसी की ओर से अच्छा हमने के श्रोतागण के बता दा तोहरा परिचय दे दा कहाँ रहेला का काम करेला बता दा
1: सबसे पहले सुमन राम तोहर की ओर से सब लोगों को प्रणाम और नमस्कार
0: नमस्कार
1: सुमन राम तोहर के सबको जाना दो जा हम पिचजली गाँव से आई जा जहाँ पर सब कोई खेतिहारी वन जा गाय पुछलन जा अभी तो दिग्बत सब कोई लाख पुलिस हो गल बा एफ एम ई हो गल बा सब कोई हो गल बा लेकिन हम वहाँ पर एगो गायक हैं अकेले भोजपुरी गायक कहे कि गायक वहाँ पर हैं हमारे परिवार लोग सब कोई भोजपुरी के गायक बन जा
0: बहुत अच्छा भोजपुरी के गायक
1: भोजपुरी के गायक
0: अगर भोजपुरी के गायक हो तो एकर मतलब है कि भोजपुरी से अथा प्रेम करेला
1: हाँ बढ़िया
0: ई भाषा से तोहर एकदम प्यार बा
1: बहुत बहुत
0: कैसे सीख रहे भाषा तू
1: भाषा सीख ली हमारे पिताजी हमारे दादा लोग हमारे दादी लोग हमारे परिवार गाँव के लोग सब कोई खाली भोजपुरी बोले लन जाओ वहाँ पर
0: हाँ बहुत अच्छा था
1: जहाँ पर वहाँ एगो चाइनीज बा लड़का लोग बड़ा लोग वो लोग भी हिंदी बोलेगा
0: बहुत अच्छा देखे कि हमने के मिलेला जब एगो गांव में मॉरिशस के जोन गांव है एगो चाइनीज परिवार हो जा रहे लंजा तो सब भोजपुरी लोगन से मिलजुल के बातें करे लंजा भोजपुरी ही में
1: भोजपुरी ही में
0: हाँ बहुत अच्छा बहुत ऐसा छोटा छोटा गांव बा चाहे वो उत्तर क्षेत्र में हो या दक्षिणी क्षेत्र में कहूँ भी मॉरिशस में जहाँ चाइनीज परिवार बसेला वो लोग सभी जोन हमने के जोन भोजपुरी प्रेमी लोग होन जा वो लोग संगे मिलजुल के खूबे भोजपुरी में बात करे लंसा ना बहुत अच्छा लगे रहा सुने के भी तब भाई सुमन जी तोहर त बहुत ही लोकप्रियता बा मॉरिशस में बहुत लोग तोहरा सुने लंजा तोहर गाना त चलते रहेला रेडियो में और तोहर क्लिप भी चलेला भोजपुरी प्रोग्राम में भोजपुरी चैनल में तो हमने के बतावा कि तोहर जोन संगीत के सफर है जैसे बोलला भोजपुरी में गावेला तो जब तोहर संगीत के सफर के शुरुआत कैसे होल तू भोजपुरी में गात रहल कि हिंदी फिल्म से प्रेरित होके गावत रहल कैसे तोहर शुरुआत होल तोहर संगीत के सफर के शुरुआत कैसे होल
1: हमारे पिताजी जैसे बोल लिए वो भी एक भोजपुरी गायक रहल जा और हम छोटा जब रही 15 साल से कीर्तन भजन जो हिंदी में हुआ जाना भोजपुरी में भी हिंदी में भी तो हम लोग भोजपुरी में गावत ले जा हिंदी में भी गावत ले जा हमारे पिताजी वो बड़ा कलाकार लगते गमटिया जैसे बोलता गमटिया जहाँ पर लाखों हुए हम तो छोटा लड़का कैसों के हई और संगे संगे जात ली चिमता खिलत ली खेलते खेलते पिताजी के
0: हाँ साथ देते देते, देते, देते
1: पकड़ ली लकोरा भी हाँ पकड़ ली हम
0: हाँ तो हर भटक खुल गल
1: खुल गल
0: गाय के चिमता बजा बजा के गाय भी लग गया बहुत अच्छा ऐसा संस्कार तोहर में चलाल
1: चलाल
0: तो यही हमने के हमेशा मानी ला जा कि हमने के जो माता पिता हो अंजा हमने के गुरु हो अंजा
1: हाँ हाँ जरूर
0: हाँ भगवान जी के बाद अगर ईश्वर के उपरांत हमने के माता पिता है माने हमने के ईश्वर हो अंजा है ना तोहर पिताजी तक कलाकार रलन देखा आज ओकरे पश्चिम पर चल के तू कलाकार बन गयेला बहुत अच्छा और ओकरे से प्रेरणा तोहरा मिलल भोजपुरी में गाय के और पिताजी माताजी के अलावा और कोई सदस्य बा तोहर परिवार में जो संगीत में रुचि रखे लन जा
1: हाँ जरूर हमार चचा भी वो भी गायक रहलन हमार जितना परिवार बा सब कोई भोजपुरी में
0: अच्छा
1: गीत गावलन जा चचा से दादा से दादी लोग भी लेकिन अभी जहाँ बा हमारे भाई भी कीर्तन भजन गावेला भी बड़ा भाई लोग
0: बहुत अच्छा तो सब संगीत के बल पर तोहरन जोन परिवार है संयुक्त परिवार बिल्कुल एकता बा तोहर परिवार में
1: हाँ बोले
0: तो यही खातिर हमने हमेशा बोली ला जा कि संगीत जोन है हमने के जोड़ेला टोड़ेला नहीं बल्कि जोड़ेला हाँ बिल्कुल कोनो भेदभाव नहीं कोनो दिखावा नहीं सब मिलजुल के संगीत के और आगे बढ़ाए के और अपन परिवार के और संगठित रखे के हम तोहरा बहुत बधाई देवत हैं भाई जी कि आजकल के दुनिया में भी तू अपन भाई बहन लोग के मिलजुल के वो लोग संगे तू संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़त हुआ नहीं, बहुत कम देखे के मिलेला। और भोजपुरी में बात करत हुआ लोग संग

0: गे और एकर से जस्ते हमने के का चाहेला
1: भाई रोशन जी
0: बोला
1: हमर दुगो पिता बाती
0: अच्छा तो
1: ओ, हां ओ लोग भी भोजपुरी में गावलन जा
0: बहुत अच्छा तू ही तो जवान हुआ तो बेटा लोग हम अनुमान लगा था कि बेटा लोग इतना बड़ा नहीं होन जा
1: बड़ा हो जा
0: अच्छा बड़ा हो जा
1: पहला तो मैं तो आजों की बरकवान
0: कुछ ही बोला था भाई जी
1: बरका मैं तो आजों की देखे हुआ बातें जिन्हें वो
0: अरे वाह तो तू इतना अपन के मेंटेन कर ले हुआ तो लगता है बहुत एक्सरसाइजेस करेला व्यायाम करेला
1: तो सब भगवान की कृपा से
0: भगवान की कृपा जो इन कलाकार संगीत में रुचि रखे रंजा कला के आगे बढ़ावे रंजा तो वो हमेशा जवान रहते रहे रंजा बहुत बढ़िया तो बहुत अच्छा लगल भाई के बड़ा बड़ा बेटा बा और लोग भी भोजपुरी में बात करे रंजा और गावे रंजा भी तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जा कि वो लोग भी अपन पिताश्री की तरह आगे बढ़िया जा और काम कहाँ करेला भाई जी
1: हम मुर्शिद टेलीकॉम के टेक्नीशियन हैं
0: अच्छा मुर्शिद टेलीकॉम में भी कार्यरत हुआ बहुत अच्छा सुमन
1: भाई
0: अच्छा 23 साल बाद तुहरा मुर्शिद टेलीकॉम में श्रोता लोगन हमने के आज के कलाकार हुआ सुमन जी और भूलिया नहीं कि तो लोग के प्रश्न के जवाब दे के बाद जो सुमन जी गयन जो बात करियन ओकरे पर हमने तुरंत एगो प्रश्न निकाल के तोहर से पूछब जा और तो रक्त हमने जानीला इस प्रोग्राम के बहुत ही शौकीन हो जा और प्रश्न जे के जवाब में तो रक्त माहिर हुआ जा हम जानीला तब भाई सुमन जी एगो गाना भी चलेली सैया है गाना के बोल तू ही लिख ले हुआ
1: हम ही लिख रहे बोल
0: और संगीत भी तू ही कंपोज कर ले हुआ
1: कंपोज कर ले हाँ
0: तो ये गाना के रहस्य का है एकर कहानी एकर पीछे का है काहे है गाना निकल रहा तू
1: है जब जब को बोलो तो जब हाँ। हम जहाँ जहाँ जाएला शादी में
0: हाँ।
1: एको पौती में कोनो कोनो जहाँ जाएला पहला गीत है ये मांगे लग जा दिल में बसा ले कोको सैया के लिए अरे मोरे सैया के लिए हम उन लोग से पूछ रहा था तो लोग काहे खुश रह गीत बा तो लोग हमको बोलने लग जा हमार हमार जन सैया बा खुशी रहला कि ओकर पोतना बाते ओकर बातें लापू डाली जीउस डाली सब जितना मकियास बा खुशी से डाल के अपन सैया के जाके मिल मिली हूँ
0: बहुत अच्छा तो भाई सुमन जी बहुत ही बढ़िया सैया एक पर एगो प्रश्न भी पूछब जा तो चला एगो दूसर गाना थोड़े संगे एगो चला जे जा परंतु गाना से पहले चला एगो प्रश्न ही पूछ लेला हमने के श्रोतागण के अभी भाई सुमन जी बोलन जो बड़ा बढ़िया कलाकार हुआ भोजपुरी में तो बोलन सैया एगो ऐसन आगे के एगो पुराना फिल्म निकल रहा भोजपुरी में जिनमें सुजीत कुमार रहल ओकर नाम में सैया हमार रहल अब हमनी के बताव 402-8070 पर का सौदेगा तो मैं सुसंजीस पर हमनी के जवाब द कि फिल्म के पूरा नाम का है जेकर में सुजीत कुमार जी रन जो राजेश खन्ना जी के साथ बहुत ही बॉलीवुड के फिल्म में नजर आल होवन जैसे मेरे जीवन साथी जैसे आराधना तो हमनी के बताव कि भाई सुमन जी के जो गाना भी बढ़िया चौचक गाना सुनल सैया एगो फिल्म आ रहा सुजीत कुमार के टीवी पर भी फिल्म प्रदर्शन कर ले रही जजा MBC में बहुत आगे के जमाना हम तो बचपन में रही तो बोला हमनी के सैया हमार ई फिल्म के नाम सैया हमार से समाप्त होला एकर पूरा नाम फिल्म के का है ये हमनी के जवाब द तब तक हमनी सुमन भाई से बातचीत आगे बढ़ाई ला जा और हमनी के बोला भाई जी कि तोहर जो सबसे पहला एल्बम है जो सबसे पहला एल्बम है तोहर ओकर नाम का है
1: पहला एल्बम दिमिल जिसमें निकल लीजा
0: दिमिल जिसमें
1: दिमिल जिस भोजपुरी के बोल बाला
0: भोजपुरी के बोल बाला
1: भोजपुरी के बोल बाला
0: बहुत अच्छा
1: ओकर में एक गीत जन रहा करते पहला क्लिप समर बाते मूवी पर बाते और हाउ एगो संदेश लग मॉरिशस में
0: बहुत अच्छा ही था भोजपुरी के बोल बाला यही के तो हमने प्रमोट करते हैं है प्रोग्राम के जरिए भोजपुरी के और आगे बढ़ाए के और कलाकार लोग के मान बढ़ाए के तो चलो सुमन भाई थोड़े से अभी बात करब जाए गो पहला श्रोता के हमने स्वागत करी ला जा देखी ला जा के बा लाइन पर हेलो हेलो हेलो श्रोता जी लाइन पर होवन चलो ओकर से बात करी ला जा हेलो हेलो
2: हेलो नमस्ते भूषण भाई
0: नमस्ते रिजवा जी पोस के उदय भाई
2: हाँ बिल्कुल सुबन भाई को भी नमस्ते
1: नमस्ते प्रभु
2: हाँ नमस्ते भाई राम तोहर जी
1: नमस्ते नमस्ते
2: ऐसे तो हम फामी घिरेला

0: हमारे को समझी बा हमारे पतु है राम चौहल नाम से
1: और सुमन भाई के जो इन गाना सुनते रहे ल भाई उदय
0: हां सुन ली हम राजू तो हमारे कान में लीली पर बा वीरी खूब सुन ली
1: और वो के गोफान हो गल हुआ तू बहुत दिन से
0: हां भोजपुरी हम खुशी जला शादी में से भोजपुरी गाना चली
1: हां
0: ऐसे ऐसे तो सेगा खेल खाली चलेला हम नहीं खुशी जला सेगा
1: कोई बात नहीं
0: हमने हिंदू ऐसे जाना भोजपुरी गाना जाना
1: जोन जोन गाना चली जोन सब कलाकार लोग आगे बढ़ा रहे अपन कला के तो भोजपुरी भी भाई सुमन जी आगे बढ़ावत हो सेगा भी होकर जगह में ठीक बा दूसर कॉन्टेक्स्ट में बा आज के हमने तो भोजपुरी तू आगे चाना बढ़ा के तोहरा तो बहुत धन्यवाद भाई उदय जी तो सुमन भाई के सुनते रहिए और हमने के जवाब दे दे
0: हमर जवाब
1: हां
0: देखो गादीला
1: गादा थोड़ा वो देख
0: लीजिए पान खाए सैया हमारे हो और ये होंड लाल लाल हो इसी बागी
1: बा हां तो तोहर जवाब देवा थो पान खाइयो सैया हमार अरे चल हम ही तुम्हारा जवाब नोट कर रहे ऐसा देखा था ऐसा कि तुम्हारा जवाब सही है कि नहीं है एगो दूसर श्रोता के बहुत धन्यवाद भाई उदय जी हमने के भाई कलाकार अभी से ओकर संगे बात कर ला ओकर उत्साह बढ़े ला चल दूसर श्रोता के हमने स्वागत करी ला जा हेलो
2: हेलो नमस्ते रोशन भाई
1: नमस्ते भाई विजय क्रावेत से बात करत हुआ
2: हाँ कैसे समाचार
1: समाचार ठीक बा तुहर कैसे
2: सर ठीक बा भाई सुमन के बोल नमस्ते बोल हैं
3: चाहे वो करफान भैया नमस्ते भैया
1: तो हर फान हो वो करफान हो
2: बढ़िया बढ़िया गीत बा ओकर सुमन जलसा ग्रुप सब बात ओकर गीत गवाई सब प्रोग्राम को देखिल हम
3: नमस्ते भैया नमस्ते
1: कौन खूब बोला सुमन जलसा ग्रुप
2: सुमन जलसा ग्रुप
1: हां एकर बारे में हमनी बात करब सर हां
2: हां तो भीड़ ये जेदू ने रे सब निकलावे छ बात जेदू ने
1: हां तब बोलत हुआ कि तोहर तो एगो फान हुआ भाई सुमन जी के खाली तू हुआ कि तोहर परिवार सहित
2: हमने सब परिवार सुनिए गीत चले लाटे हर होकर वीडियो भी मेल लाटे फेसबुक पर देखी ला सा
1: अच्छा बहुत बढ़िया तू तो आगे निकल गल हुआ भाई जी फेसबुक पर भी तोहर बोल बाला भाई जा है भाई विजय हमेशा अच्छा अच्छा बात करेला खाली है प्रोग्राम मैंने बल्कि हर प्रोग्राम में तोरा सुनी ला तो बहुत अच्छा से बात करेला जा हेलो हेलो लगा था लाइन कट गल बा एगो प्रॉब्लम हो गल बा एगो टेक्निकी कार्य टेक्निकी खराबी के वजह से विजय भाई के जो आवाज़ नहीं सुनाई देवता तो छोड़ हमने फिर से विजय भाई से बात करब जा तब भाई सुमन जी कौन जवाब है पान खइयो सैया हमार
3: सैया हमार
1: बहुत बढ़िया और विजय भाई के लिए और उदय भाई के लिए जोरदार तालियां बहुत अच्छा तो हाँ हमने बात कर रहे ले जा तो हर पहला जो एल्बम रहा भोजपुरी के बोलबाला और ई ओकर टाइटल बहुत अच्छा रख ले हुआ है बहुत अच्छा लगल
3: भोजपुरी के बोलबाला
1: हाँ
3: ओकर में वो गीत लगाती है
1: हाँ
3: जहाँ सब कोई खुशी होगी तो आके मेहनत करके तू धनवा कमावेले काहे भैया मोर तू संग में लुटावेले काहे भैया मोर मेहनत करके बहुत कोई अपन पैसा कमावे लंजा ताकि संग में लुटा दे लंजा है एम के प्रॉब्लम है वो
1: हाँ सच्चे के बोल रहा है मेहनत करेला इतना जीटोर मेहनत करके पैसा ऐसे पानी नीर बहा दे वेरा तो सचमुच दिल के बहुत ही ठेस पहुँचेला एक संगे और है गाना जो गेला भी बहुत ही सुंदर सा गाना गेला तो का बोले ला हमने चला दे ऐसा गाना मेहनत के
3: जरूर
1: अच्छा तो चला तो हर खतीर मेहनत के फल जो ना बहुत ही मीठा रहेला और मेहनत के जो धनवा है वो सब धन से बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है तो चला हमने के भाई सुमन जी के गाना सुन ला जा तो एक बाद में हमने बातचीत रख जा हमने के भाई सुमन जी से तभी तो लोग जुड़ल हुआ जा MBC रेडियो मनोरंजन और एम्फ्री से और चला मेहनत के धनवा भोजपुरी कलाकार सुमन रामतोहल जी के दमदार आवाज़ में

0: continuous music. RM3.
1: कलाकार के बाद भाई सुमन जी के साथ जो न हमारा अभी रूबरू बैठल हुआ जा मेहनत के धनवा बिल्कुल जब मेहनत के धन तू लुटा देला कुसंग में सत्संग नहीं करेला तब बहुत दुख के बात हो जाला ना भाई जी
2: ना जरूर जरूर
1: बहुत ही सुंदर सा गाना के तू रचना करला एकर खातिर तो हम तोहरा बोला बहुत ही बधाई हो
2: धन्यवाद
1: और ऐसा ऐसा गाना हम चाहते हैं कि बाद में भविष्य में ऐसे निकलब ताकि समाज के कल्याण होए उद्धार होए
2: संदेश मिली
1: और खासकर हमनी के नौजवान लोग हमनी के बच्चा लोग के हमनी के जो बालक हुआ जा बालिका हुआ जा अच्छी राह पर चलियन जा एक तेरे ऐसे गाना निकाल के लोग की चना सुने के है ना भाई
2: हाँ जरूर जरूर हाँ
1: तो हमनी के को बात बताओ एल्बम अभी बोल ला भोजपुरी के बोल बाला तो हर पहला एल्बम है ना तो आज तक कितना एल्बम निकाल दिले हुआ भाई जी
2: ए आज तक 6 गो एल्बम निकल रहे जा
1: 6 गो एल्बम
2: बहुत

0: बहुत ज्यादा फिर भी तुहर मेहनत अपन रंग लाई बहुत अच्छा। तो एल्बम निकाले के हमने पूछा कि बहुत कठिन है या मुश्किल है, हमने के बताओ कर जो प्रणाली है सिस्टम होकर प्रोसीजर्स है एगो एल्बम निकाले के कैसे है। चलो हमने बोला हमने के श्रोता के बात हुआ जा कि हमने के भाई सुमन जी अपन जिंदगी में पहला एल्बम निकाले खोजत हुआ जा, तो सुमन भाई का करियन कैसे शुरुआत करियन है दिमाग करे खातिर।
1: पहला बहुत है जहाँ एल्बम निकाले के फासिल नहीं बा और न जिफिल जिफिल बातें।
0: अच्छा
1: सब हमी पर बातें हमी की लितों पर हती।
0: अच्छा समय एगो बहुत बहुत हाँ एगो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है
1: और हमी की फिनोस एप होता बातें।
0: अच्छा
1: है जी दुगवा संगीत चली तो सब को देखो जाए लेकिन
0: अच्छा।
1: नहीं चाहे भुलाई के हमी की सरकार हमी जन फिनोस बा हमी की मदद करेला हो लेकिन तोरा बाद में मदद करी जब तोर काम हो जाए तब। कैसे शुरू हुई काम, पहला चाहे अपन गीत लिखे के अपन आठ गो गीत या सात गो गीत चाहे लिखे के निमन से सोच के कन संदेश देव तो भोजपुरी में हमें के मॉरिशन भाई बहन लोग के कन संदेश देवते जा चाहे सोच समझ के लिखे के और कोई के जन्म की सिंजो बातें चाहे और लोग से दिखाए कि गीत अच्छा बा कि नहीं अच्छा बा
0: मशवरा करे के
1: हाँ चाहे एको अथी करके चेकअप सब जो ठीक रही तब चाहे जाए के इस चीजों में भी वहाँ पे बड़ा बड़ा काम आती, छोटा काम नहीं है भैया, छोटा काम नहीं आते, एक दिन में कमा नहीं हो गई,
0: बहुत समय लगेगा,
1: बहुत समय लगी, कम से कम गिरल में चाहे तीन महीना लग जाए।
0: तीन महीना एगो एल्बम निकाले के
1: आज गो गीत बा प्रभु एगो गीतवे निकाले के लगेला। अब म्यूजिशियन को तैयार हुई सब चाहे बनाए के निमन से नहीं छा रही तब पहला फिर से तूर तार लगा के फिर से बड़ा बनाए के कबो ये गीत निमन निकल पाती हम ही सोचना था अच्छा गीत हुआ लेकिन जब जब इस चीजों में तो इस चीजों के नहीं छा लगता उस तरह बोली हई फासो में चाह रही की इसे
0: सगबे को बहुत ही सुंदर सा गाना निकाले ओकर बोल सब अच्छा बा परंतु वो संगीत में नहीं बैठा था तोड़ मरूर क्योंकि बैठा है यही खातिर ढेर समय ले ले वेला और अगर कभी कभार ऐसे होल बा कि ऐसा सुंदर गाना निकले हुआ जब म्यूजिशियन लोग में संगीत ढाले खोजत हुआ जा तो नहीं बैठा था तो कभी कभार तू पेशेंस हार्द गल हुआ कि तुम्हारा बहुत धैर्य पर रखे के
1: नहीं थोड़ा सुन टेंशन मौत हो जाता
0: टेंशन मौत हो जाता हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: तैयार होके आल हुआ निमन से लेकिन अब गाना बैठत नहीं बा आप इस चीजों के थी में बैठत नहीं बाती तब पड़ेला फिर से बनावेगी थोड़ा बहुत हो वेला हर कोई सी नहीं वेला ही जब जब कहो कभी कभी हो जाला ही सब।
0: अच्छा
1: लेकिन
0: बन जाला बहुत अच्छा और तुहर मन में जो लगन बा जो साधना रोज करेला तो इकर से ईश्वर भी तोहर रास्ता साफ करने वाला और सब कुछ आसान होई लगेला। जैसे कि भाई सुमन जी बोल रहे हैं एगो एल्बम निकाले के कठिन बात नहीं है और आसान बात भी नहीं है परंतु तोहर मन में घोर विश्वास रही तो हमेशा सकब अपन विश्वास के तू रियलिटी में बदली वास्तविकता वास्तविकता में अपन प्रोजेक्ट के तू सकब माटी रियलाइज करे। बहुत अच्छा भाई सुमन जी बहुत अच्छा विचार बा तोहर और यही खर्ती तू एक नहीं दो नहीं छः एल्बम निकाल दे होगा बहुत ही अच्छा। तो इतना काम करेला मोशस तेरे कुम में कार्यरत हुआ गाना बजाना भी करेला तुहर एगो ग्रुप भी भा सुमन जलसा
1: ग्रुप
0: और एकर उपरांत गाना लिखेला अपने संगीत डालेला और लड़का लोग के सिखावेला भी और इतना समय निकाल लेला तो तुहर पास समय बचेला अपन हॉबीज के लिए
1: परेला निकालेगी
0: परेला
1: कम से कम एक सप्ताह में आधा घंटा परेला निकालेगी किसनो करके
0: तो कुछ है तुहर पास तो और हॉबी कुछ है
1: हमारे पास तो है खेतीबाड़ी।
0: अच्छा खेतीबाड़ी करना
1: आगे केल छे
0: अरे
1: छोटा छोटा मोटा मोटा जैसे छोटा सुनचित बाएगो चीपी मारो तरफ फूल प्लांट देके है सब हम लेते नहीं है ना प्रभु
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: लेकिन जरूर है सब चाहे करेगी
0: चाहे ना करेगी
1: सब नहीं कर पाता लेकिन लोग का सीखी
0: बहुत अच्छा
1: चाहे लोग सिखाएगी ना
0: बिल्कुल। तो आप बोला एक बात हमके बहुत अच्छा लगे थोड़ा सी सुने की हमके भाई बोले ला कभी कभार हमके प्रभु भी बोले ला अच्छा लगे आप कहे कि कोनो जो दोस्त है जो जानकार लोग है हम

0: कि कबू प्रभु ने बोले हो अंजा
1: मान सम्मान लगू
0: मान सम्मान बहुत अच्छा तो हर जो शिष्टाचार बा हमके बहुत अच्छा लगेला बात करेला तब बहुत ही आदर सम्मान के साथ हम जानीला एक हराम के बोले हो अभी है जब हमने भेंटाल है सब प्रोग्राम के आगे बोले हो अगर तू अपन से छोटा या बड़ा के सम्मान देब तभी तो सम्मान पाएगा ना अरे को कलाकार के जो एक और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ओकर जो गुण है कबू ने छाला अहंकार करे के ना
1: हाई हमर में नहीं बा
0: तो हर में
1: हम भर्ती मोरिस में प्रोग्राम करेला सबको ज्यादा जिरा हमरा सुनत हूं जा रो जाने जा कोई हमके बोल दिया कि हम कबू बात करे अन के भन नहीं
0: बिल्कुल नहीं
1: प्यार सी
0: काहे सब जब जहां जहां प्रोग्राम करे जाला तो अच्छा बहुत प्यार पावेला
1: प्यार पावेला
0: हां त ही हमनी के कलाकार है ही खातिर कलाकार के बात प्रोग्राम के आयोजन होलबा एमबीसी रेडियो पर जहां पर हमनी के जोन मोशन कलाकार है भले ही तोरा सुने के लोग के मिली तोहरा रोज परंतु ऐसे लोग के इंटरव्यू लेके इतना समय ने लोग के संगे फिर भी आई प्रोग्राम के जरिए लोग संगे हम एगो इंटरव्यू ले लिया जा एगो वार्तालाप कर ले लिया जा ताकि लोग के और लोग के जीवन के बारे में सकब से जाने तो हॉबी के बारे में अगर हम बात करब तो भाई सुमन जी अभी तक काल से वर्ल्ड कप शुरू हो गए बा है ना तो वर्ल्ड कप में तनी ध्यान दे हुएला
1: हाँ हमारे लेकिन ला फ्रांस
0: अरे वाह क्या बात बा ला फ्रांस और अभी 2026 में ला फ्रांस के जोन पल्ला बा बहुत ही भारी बा
1: भारी बात
0: और सब जोनों कर खिलाड़ी हुआ जा बहुत जबरदस्त
1: जबरदस्त
0: बहुत बढ़िया तब भाई सुमन जी बोल रहे नोकर जो फेवरेट टीम है फ्रांस है तो चल हमनी के बताओ अभी हमनी तुहरा एगो प्रश्न पूछे थे सब सुमन भाई के बात ही पर ओकर बतिया पर फ्रांस के कितना बार वर्ल्ड कप मिलल बा कल तो मेक्सिको के देखला साउथ अफ्रीका के मरलक 2-0 से ओकर जीत होल ओपनिंग मैच में और आज फजीर फजीर एगो बहुत ही सुंदर मैच होल साउथ कोरिया और चेक रिपब्लिक के बीच जहां पर साउथ कोरिया के जीत होल 2-1 के स्कोर से और रात्रि के कनाडा खेली बोस्निया हर्जेगोविना के साथ और वही बोस्निया है जो इटाली के निकाल दे रहे प्ले ऑफ मैच में तो चल भाई सुमन जी बोलन फ्रांस के वो तो बहुत ही ज़बरदस्त फैन है और वो चाहत हुए कि वर्ल्ड कप फ्रांस ही जीती तो चल बोल हमने कि फ्रांस कितना बार होकर जीत हो बा वर्ल्ड कप में कितना बार ई वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठैले हुआ 4-0, 8-0, 7-0, 4-2, 4-2, 4-2 पर हाँ तो भाई सुमन जी खेती बाड़ी में तू बहुत ध्यान देवत हुआ और खेती बाड़ी हमने के आज के जो नौजवान है इतना ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखे लंजा वो लोग खतीर का संदेश बा तुहर
1: हम चाहे बोले कि वो लोग जितना नौजवान बा हम जानला तो लोग के लेता नहीं है उतना सब पे खुला खाली बिरो में काम बने की सब पे खुला खाली फसल काम बने की लेकिन चाहे बुराई की नहीं हमें देश में खेतियारी चाहिए
0: चाहे
1: हमें कैसे हम की सब्जी मिली कोनो कोनो चीज हमें कह किसे मिली कम से कम थोड़ा सुन अपन लेतौन निकाल के खेतीहारी कर जा तो लोग की अच्छा रही तो लोग स्पो भी रही सब साथ में रही
0: बहुत अच्छा
1: हाँ, नहीं गुरु
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये खाते तो खेती बाड़ी करत हुआ तो यही खातिर तुहर जो लुक बा तो स्टैंडिंग बा तुहर ऐसे नौजवान तो दिखेला और ऐसे ही चाह रहे के और खेत में काम करब धरती माता की सेवा करब तो बदले में तुहरा बहुत कुछ मिलेला
1: बहुत
0: भाई जी और हम तुहरा बहुत ही बधाई देवत हैं जा कि संगीत के साथ साथ अपन काम काज के जिंदगी के साथ साथ तू खेतीहर भी हुआ बहुत अच्छा तो चल हमने के श्रोता के हमने स्वागत करी ला जा वर्ल्ड कप में तो ढेर कोई दिलचस्पी रखे रन जा चल पहला श्रोता से बात करी ला जा हेलो
2: हेलो भाई सुन तबियत ने प्रॉब्लम टेक्नी से खटा गलते रहती
0: हां भाई विजय हां क्षमा चाहत हैं जा
2: नहीं कोई एक बात प्रॉब्लम नहीं बाटे
0: हां बोला
2: हां ला फ्रांस दो बार ले लेबा कुछ मन
0: दो बार ले लेबा
2: हां
0: तो चल देख अब से तुम्हारा जवाब सही है कि नहीं हमने अच्छा के
2: धन्यवाद भाई धन्यवाद प्रोग्राम बहुत तो भाई
0: धन्यवाद भाई विजय कंप्यूटर महाशय लॉक कीजिए चलो हमने दूसरे श्रोता से बात करी ला जा अरे हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
3: नमस्ते रुसन जी
0: नमस्ते शोभा बहन
3: जी हां
0: कैसे हो अब आपका से बात करत हो
3: हां ठीक है ठीक है
0: हां और हमने के मेहमान से बात नहीं करब
3: हां मेहमान जी को भी नमस्ते
1: नमस्ते जी नमस्ते
0: ओकर

0: ना सुनत हुआ शोभा जी?
1: हाँ हाँ हाँ, जली जली गीत बा।
0: हाँ, जली जली गीत बा। ओकर आवाज कैसे लगता तोहरा?
1: आवाज तो बढ़िया,
0: बहुत ही बढ़िया। हाँ,
1: अति सुंदर,
0: अति सुंदर। ये तो बहुत ही सुंदर बात कर लो। इतना संस्कृत में बात कर ला तू। अरे धमन मन तो गदगद हो गया। बोला शोभा जी, कौन जवाब दे? फ्रांस के कितने बार जीत हो?
1: दो बार।
0: दो बार? अच्छा, तोहरो जवाब हमने नोट कर ले ला सर। हमने अपन पूछब जामनी के मेहमान के की सही जवाब ओकरे प्रश्न ही क्या कि हाँ। फ्रांस के वो बहुत ही बढ़िया फैन है। ओके
1: हाँ,
0: चलो एगो अंतिम श्रोता के हमने स्वागत कर रहे। धन्यवाद शोभा जी। चलो पूछ ही लचा। हेलो
2: हेलो। हाँ, भैया जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन नाम है तुम्हारा?
2: अमृता रामलोल, कानोज से।
0: कानोज से बात करत हो अमृता जी?
2: अमृता रामलोल।
0: हाँ, सुमन जी के नमस्ते कर ल।
2: हाँ भैया, भैया नमस्ते।
3: नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते।
2: हाँ, हाँ, अभी अभी भाई ऐसी बात कर लगना चचा विजय।
0: हाँ, हाँ, हाँ,
2: चचा हो बोला रही ना।
0: अच्छा, चचा भतीजी, चचा भतीजी तो है पोगा में छा गल हो जा।
2: हाँ, हाँ,
0: बोला अमृता जी, कौन जवाब दे? कौन
2: जवाब?
0: दो हला। अच्छा, तो हम बोले अब तोरा बहुत ही बधाई हो।
2: हाँ,
0: सही जवाब बाबा, हमने के मेहमान से पूछी ला जा। सही जवाब बाबा जी?
3: हाँ जरूर।
0: हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो हमने के भाई बोला था इनकी एकदम सही जवाब दे रहा।
2: और सुमन भाई की बच्चे से बहुत बहुत बधाई हो, कर गीत बहुत सुंदर बहुत मन के
3: भावेला। धन्यवाद।
0: हाँ, और आगे तो हम लोग के मन बहलाई, एगो वादा कर रहा था थोड़े संगे बाता कर की और मन भर। ओके, अच्छा अमृता जी, अच्छा तुहर सचमुच तुहर बात से अमृत टपका था। तो चलो अमृता जी, विजय भाई और शोभा जी, हमनी के जोन कलाकार है आज सुमन जी बोलन के ओकर फेवरेट टीम फ्रांस के दो बार जीत होल बा। एक बार पहली बार 1998 में और दूसरी बार 2018 में। अब सुमन जी बोले थे कि अभी ओकर जीत होई, काहे कि अगर अमेरिका में भी होई, कहीं दुनिया के कोना में भी आयोजन होई, हो जो फ्रांस जीती।
3: फ्रांस ही।
0: फ्रांस तो बहुत ही बढ़िया। तो चला सुमन भाई, हमनी तो ऐसे बात करब जा। अभी समय तो पानी की तरह बहता, 5:41 हो गए बा, लेकिन एगो गाना थोर सुने के मन करा था भाई जी।
3: हाँ, जरूर, जरूर।
0: अच्छा, तो हर अनुमति से गो गाना चला ले जा।
3: हाँ, हम फ्रांस लोग खत्म करता तो रहा।
0: अरे वाह, का बात बा। तो चला एगो गाना बा सुमन के गमत, हमी तो सुमन जलसा ग्रुप। हाँ चला, हमने थोड़ा से बात पूछी ला जा। सुमन जलसा ग्रुप, ये कैसे है ग्रुप के क्रिएशन हो, कैसे ये ग्रुप दिन देख रख बोल हमने के?
3: सुमन जलसा ग्रुप।
0: हाँ,
3: जलसा दल से कह कहती हम के जन ग्रुप बा।
0: हाँ,
3: जहाँ जे बा शादी में तो जलसा काम बा, पति में जे बा जलसा ही काम बा।
0: बहुत अच्छा।
3: लाली वैसे में जे बा तो हुमा भी जलसा है, कारण से सुमन जलसा ग्रुप बन ले।
0: तो जब बहुत है सुमन जलसा ग्रुप, ग्रुप के जो अर्थ है टोली, टोली में और कोई और सदस्य
3: बा? जरूर जरूर जरूर।
0: जो नाचेला, जो इंस्ट्रूमेंट खेलेला,
3: तबला प्रिय बा, हमी किसी बा हमी के प्रोग्राम बाते काओ के सिंगर बाते हूँ मैं।
0: हाँ,
3: नाचे वाला 10 और चीज पर नाचे वाला खाली।
0: अच्छा,
3: काओ के सिंगर बा 4 या 5 बाते हूँ मैं। अब हम ओकर में भोजपुरी गमत लाइव करेला, ओकर में तबला प्रिय बाते, चिमटा प्रिय बाते,
0: ऑल टू ऑल।
3: हाँ, ऑल टू ऑल, ऑल इन वन पैकेज जिसे बोलेगा इंग्लिश में, ऑल इन वन पैकेज। जन चाहे तोरा सुमन जलसा ग्रुप के खाली दरवाजा पे का पता मिल जाए, तोरा
0: मिल जाए, तोरा
3: सब तोरा मिले।
0: हमने के श्रोतागण के बोली ला जा, अगर तोहर पास कोनो भी प्रोग्राम होई, शादी होई, जैसे बर्थडे पार्टी होई, सालगिरह के जोन दिन, या कोनो भी एगो प्रोग्राम होई, तो अपन जोन परिवार के पास भी होई, तो कबो सुमन जलसा ग्रुप के नहीं भुलाइया, वो हैजा तत्पर होवन तोहर सेवा करे खातिर। तो चला हमनी के सुमन भाई से हमनी बात करब जा, काहे कि ओके और प्रश्न बा ओका से पूछे के गमत के बारे में, कोची सोचेलन गमत के बारे में। तो एकर से पूर्व एगो बहुत ही बढ़िया जबरदस्त मस्त गाना तोहर खातिर हमनी बजाब जा, सुमन के गमत। चला सुना, तो एकर उपरांत हमनी बात जारी रखब जा।

0: RM3 Radio. Radio.
1: कलाकार की बात
2: कलाकार के बाद है जाता निकल बा सितारों की बारात और हमने के चमकता सितारा आज के होवंजा श्रीमान सुमन राम तोहर जी जेकर पास बा सुमन जलसा ग्रुप ये जो न सुमन के गमत है बहुत ही बढ़िया गाना नया गाना है तो
3: जरूर
2: नया गाना एकर बारे में तनी चर्चा कर भाई जी
3: सुमन के गमत जब हाँ। जा सुमन के गमत सोच लिया जब गमत नहीं रही तो जलसा न कहां से होई
2: बिल्कुल काहे नहीं
3: बोला ही कौन से बुलाई शादी में चला हो जलसा करे चला हो शादी में जेब से जलसा रहे कि जब के जलसा दादा हूं पर हाँ। सुमन जलसा
2: दलता और बहुत ही कम ऐसा कलाकार बा जो अपन नाम गाना में शामिल करे लंजा और वो सब कम कलाकार में तू एगो हुआ तो सुमन

0: गाना तो बहुत ही बढ़िया बा और ये गाना तो चलते रहेला और तोहर एकर अतिरिक्त और गाना बा जो रेडियो पर चलते रहेला तो तोहरा कैसे तोहन मन में कैसे भावना जागृत होला कैसे तू महसूस करेला जब तोहर गाना रोज चलेला और आदमी श्रोता लोग तोहर गाना के मांग करेला जाता बोला कैसे चले तोहरा बुझाला
1: हमार मन भी पसंद होला जरूर हमार मन पसंद होला कहे कि जब हमार आवाज शब्दार थी तब सोचत है कि हमार फैंस लोग हमारा खुशी दे जा और वो लोग भी हमारा जब टिकटॉक में किसे बोल जा कि तोरा एगो निमन अति दे जा कमेंट्स एगो
0: निमन निमन कमेंट्स मिलता है ढेर लाइक्स मिलता है
1: हां लाइक्स मिलता है तो तोरा खुशी दे जा हां ई कारण से तो हमार मन भी पसंद जाला जब हमार गीत खेलेला एमबीसी खिलावेला तो बहुत खुशी होला हम
0: तो एकर से जस्ती संतोष वाला बात तने बातन को खाली तोरा पैसा मिली नहीं मिली कोई बात नहीं परंतु ऐसा प्यार श्रोता लोगन से तो फैंस लोगन से मिली तो ये तो बहुत ही बढ़िया है ये तो कोनो कोनो के किस्मत के बात है
1: गुरु पैसा तो बाद में होला
0: हां बिल्कुल
1: जब तो इज्जत मिली सम्मान मिली तो फैंस संगी तो बहुत बढ़िया हमर खातिर
0: सच्चे के सब कलाकार जो है मंच पर आरोहण वो लोगों के ऐसा विचार बा कि पैसा के पीछे नहीं भाग्य अगर भगवत खाली अपन इज्जत के और आगे बढ़ाइए और कलाकार के जो इज्जत है कलाकार के जो अपन कला के प्रति और अपन फैंस के प्रति प्यार है यही सबसे बड़ा बात
1: एक चीज बा गुरु हम तो बोल रहा था
0: बोला
1: तो बोली काट रहा था
0: बोला
1: हम सब चाहेला प्रोग्राम कर दिए मॉरिशस में बहुत जगह में जब कोई के को दाम बोलेला
0: हाँ
1: जब ओकरा महंगा लगेला
0: हाँ।
1: हम के दमत तूर के कम से कम जब परिवरवा के ओके खुशहाली कर देला हम
0: बहुत अच्छा
1: जानत हूं कितना कोई सुनत जानत हूं कि
0: हाँ।
1: सुमन कैसन काते का कैसन हाँ। कलाकार रहते कम से कम ओके बमोसे में करके
0: लेकिन
1: ओका खुशी कर देला परिवरवा के
0: आज जब सुमन भाई जालन प्रोग्राम करे तो हो जात कोनो ऑडियंस जोन बा उठ के ने जालन जा हो जा तस के मस रहे लन जा
1: काहे के लिए कापी के जोर से
0: हां जैसे बोले जा प्रोग्राम में गए लन त पैसा वसूल ई त बात बा त प्रोग्राम में जाल त खाली नाच गाना भोजपुरी नहीं बल्कि बॉलीवुड गाना भी गावेला
1: बॉलीवुड गाना सा
0: हां अच्छा त चला एगो छोटा सुन टुकड़ा हिंदी फिल्म के गाना गा दे हमनी के श्रोतागण के बहुत मन लगता वो लोग के बहुत मन करता तुम्हारा सुने के गो फिल्मी गाना गाते हुए
1: हम कुमार सानू के गो फैन से
0: अरे वाह
1: कुमार सानू के
0: हम भी तो
1: आगते जाना था ना सबको जाना तो सुनी सब किए आकर आगते हमार अक्षय कुमार
0: अरे वाह क्या बात बा अक्षय कुमार द खिलाड़ी ऑफ इंडियन सिनेमा तो चलो अगर कुमार सानू के फैन हुआ अक्षय कुमार के भी फैन हुआ तो चले को सुंदर सा गाना गा दे इन दोनों पर गावा

0: बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर सा गाना गेला भाई सुमन जी, एक छोटा सा टुकड़ा गेला लेकिन बहुत ही बढ़िया। और भाई सुमन जी बोले ना अक्षय कुमार के तो जबरदस्त फैन हुआ, कुमार सानू के भी, और ये फिल्म में अक्षय कुमार रलन, कुमार सानू के गाना भी रलन और सुनील शेट्टी भी गाना गावेलन। चला जल्दी जल्दी ई प्रश्न के जवाब द 4028070 पर की धड़कन में सुनील शेट्टी अक्षय कुमार दूगो ऐसन बढ़िया हीरो रलन त हीरोइन कौन रलन, जल्दी जल्दी बताओ कि जो अभिनेत्री धड़कन फिल्म में रहल उ के रलन 4028070। तो चलो 5:52 हो गल बा भाई जी, तो बताओ हमनी के भोजपुरी के जो भाषा है उकर भविष्य हमनी के मॉरिशस में तोहरा का बुझाता?
1: हम के भोजपुरी सबसे से सबको इसी को मांग करते हैं हम के भाषा की उकर झंडा चाहे उठाई की।
0: बहुत अच्छा,
1: कैसे उठावल जाए है भोजपुरी बोली चाहे हम की अपन लड़का की चाहे बचाई की पढ़ावे की बोले की तब हम की भाषा जीवित रही।
0: बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। तो ऐसे बात करब जाए गो अंतिम श्रोता के सुनी ला जा, एगो दो तीन वो श्रोता बा।
2: हेलो
0: हेलो, हाँ जी नमस्ते।
2: नमस्ते, मैं सरिता हूँ। नमस्ते मेहमान जी को भी,
1: धन्यवाद। नमस्ते।
0: हाँ सरिता जी का ट्रबोन से

0: बात करे थो
1: जी
0: हाँ बोला कौन जवाब देब
1: शिल्पा शेट्टी
0: अच्छा देख अब सर शिल्पा शेट्टी सही जवाब है कि नहीं ओके आरे धन्यवाद
1: आरे
0: गुड अंतिम श्रोता के लिए राजा हेलो हेलो हेलो हेलो
2: हाँ रोशन जी
0: हाँ शोभा जी फिर से चले
2: हाँ, हम हमारा जवाब है शिल्पा शेट्टी और एक कलाकार महिमा चौधरी
0: अरे वाह तू तो पूरी फिल्म के ही इतिहास बता दे तो चले हमने के हाँ कलाकार जी से पूछ रहे जा कि सही जवाब है भाई जी
3: हाँ वो जवाब
0: एकदम सही जवाब शोभा जी देलन और एकदम सही जवाब सरिता जी भी देलन
2: धन्यवाद
0: शुभ रात्रि चलो देखते देखते 5:54 हो गल बा और थोड़ी देर में अभी समाचार प्रसारित करे के समय चला है 6 बजे और जाते जाते सुमन भाई से हमने एगो अंतिम प्रश्न पूछब जा कि तुहर संदेश नौजवान लोग के और हमने के मॉरिशस वासी लोग के का है बोला
3: संदेश बाते जितना नौजवान हो जा आवा जा ला म्यूजिक किसे बोल जा ला म्यूजिक में आवा जा भोजपुरी में आवा जा सब करबा जा तब जिसे बोल जा कि दूसरा रास्ता में नहीं जीवा जा
0: इसे
3: बोलो जा कोशिश तो बोलो थे कि लादुक में लेकर वो नहीं जाए
0: हाँ,
3: अपन हाई सीमा में रबा जा संगीत में हाँ, रबा जा म्यूजिक में रबा जा तो तू ही रह जाए
0: हाँ, बहुत अच्छा बोला अगर संगीत में तू दिलचस्पी रखबा तो तुम्हारे चेहरा पर छाए जाए नूर हमेशा रहिया सिगरेट अल्कोहल और ड्रग से बहुत ही दूर तो भाई सुमन जी का बोलब तुहरा समय समाप्त तो चला इतना कुछ तोहर से और बा पूछे के अभी लगता कि गो पॉटू से आना थोड़ा संगे करे के
3: अभी। जरूर जरूर हम लोग भी बा बोलेंगे बहुत अभी
0: हाँ और तोहर मन भी नहीं भरल बा
3: नहीं भरल हाँ
0: तो फिर से तोहरा बोला अब जा लेकिन अगले बार जब आएबा तो अपन टोली के गो 2-3 सदस्य के लाइए चाहे वो तबला प्लेयर हो या नृत्य करे वाला हो बहुत अच्छा लगी
3: बहुत
0: सुमन भाई की हमने बोलब जा बहुत ही धन्यवाद है जा आई के स्वीकार करलन और ईश्वर से ही प्रार्थना करब जा कि ऐसे ही स्वस्थ रह ही परिवार में एकता रही और संगीत के क्षेत्र में कला के क्षेत्र में और आगे बढ़ब और जोन तुहर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है संगीत के बारे में वो सचमुच रियलाइज हो जाए और ऐसे थोड़ा बोला बहुत बहुत प्रगति करब जीवन में
3: गुरु जी
0: बोला
3: तुहर आशीर्वाद से और जितना हमारे फैंस लोग के आशीर्वाद से आगे बढ़ जाओ जितने लोग खुश रही तो हम भी लोग खुश भी
0: बहुत अच्छा था हमने के भाई सुमन जी बोलन अगर अपन श्रोता लोग अपन फैंस लोग खुश रही तब वो खुशी रही बहुत ही बढ़िया सबके खुशी में हमने के खुशी बा सबके भलाई में हमने के भलाई हुई यही सुंदर विचार सुमन जी के साथ लेके हम तुहर से अभी अनुमति चाहत हैं जा कल हमने के मुलाकात रेडियो मॉरिशस पर हुई खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में स्पेशल वर्ल्ड कप तो चलत 5:56 हो गल बा और 6 बजे आप लोग समाचार सुन बजा और जाते जाते को बहुत ही सुंदर सा गाना नौजवान लोग के प्रति बहुत ही सुंदर सा गो गाना बा जो सुमन जी गैले होवन शादी करा दे बिल्कुल हमेशा जो नौजवान लोग सब कुछ परिपूर्ण कर ले हुए जीवन में तो शादी करे के कुल के भगत चला हुए तो माता पिता से बोले जा शादी करा दे हो चलो नमस्कार और शुभ रात्रि
3: नमस्कार

0: 12 जून की तारीख शुक्रवार का दिन स्वागत आप सभी का 6 बजे के समाचारों में सबसे पहले आज की सुर्खियां डिजिटल दुनिया के बढ़ते दायरे के साथ ऑनलाइन ठगी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं एफसीसी के अनुसार इस वर्ष दर्ज की गई 57 धोखाधड़ी संबंधी जांचों में से 20 मामले इलेक्ट्रॉनिक ठगी से जुड़े मिडलैंड्स में एक शिकार क्षेत्र के पार्किंग स्थल पर 40 वर्षीय जोनाथन कुयामटू की मृत्यु उनके सीने पर गोली लगी है विश्व कप 2026 का रोमांचक शुरुआत मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका पर जीत के साथ अपने अभियान का शानदार आगाज किया विदेश की खबरों में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की अटकलें तेज हो रही हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने जल्द सहमति बनने का दावा किया है बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत पेश है समाचार विस्तार से मोबाइल फोन सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप के जरिए होने वाली ठगी के मामले मॉरिशस में लगातार बढ़ते जा रहे हैं ठग नए-नए तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं एफसीसी के अनुसार इस साल अब तक दर्ज की गई 57 धोखाधड़ी संबंधी जांचों में से 20 मामले इलेक्ट्रॉनिक ठगी से जुड़े हुए हैं इन मामलों में अब तक 10 मिलियन रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है सबसे अधिक निशाना बुजुर्ग लोगों को बनाया जा रहा है जरा विस्तार इस रिपोर्ट में
1: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के लिए हालिया जांच है असल में जांच के अंतर्गत पिछले बुधवार को डोडो टॉपअप कंपनी के निदेशक योहान मुहाबियर को गिरफ्तार किया गया संदिग्ध व्यक्ति ने अपने आप को कमर्शियल बैंक का एक कर्मचारी बताया और व्हाट्सएप पर लोगों से उसने संपर्क रखा तथा उनसे उनकी बैंक संबंधी जानकारियां प्राप्त की समझा जाता है कि उसने 2 मिलियन रुपए तक की रकम ऐंठ ली है फाइनेंशियल क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट एफसीसी के एक्टिंग हेड डैनियल चंगयान ने कहा
2: Je trouve un logo devant la banque locale, qui vous dit comme ça qu'il y a un problème là où qu'on banne ce caméra, je tiens un ordre que je convaincre la personne. Je prétends être la banque, prétends être la police, custom, donc besoin d'une casse. Il y a un numéro qui banne personne, il y a un rapport, c'est un numéro étranger. Plus 44 l'Angleterre, ou soit un numéro de Madagascar, de l'Afrique.
1: इस साल की शुरुआत से तथाकथित हेरा फेरी की 57 जांच रही 20 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड से संबंधित 6 महीनों में

0: इस तरीके से 10 मिलियन से अधिक रुपए की रकम डाइवर्ट की गई। एफसीसी के एक्टिंग चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर इब्राहिम रोसाई ने कहा,
1: Malheureusement, c'est un monde vulnérable, un personne âgée qui est victime de sa bande fraudière. Étant donné qu'il nous a un mandat d'éducation et de prévention aussi, nous passons l'appel aux membres du public, à tout le monde, pour qu'ils aient fait bien attention quand quelqu'un demande un détail bancaire, que ce soit l'OTP, que ce soit l'account number ou ça, le PIN number, c'est bizarre, pas donné.
0: हाल में कुछ अलग तरीके की धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, यानी नकली डोमेन खासकर कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा है।
2: Quand il me l'a ou getli at first sight ou tout dit tout correct, mais quand vous analysez bien ou trouvez un petit point en plus ou soit une exclamation, des trucs comme ça que des fois la banque détectait, mais des fois ça passait.
0: दो वर्षों में एफसीसी में इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के 84 मामले दर्ज किए गए हैं। एफसीसी ने इस शुक्रवार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे नकली नंबरों को उजागर किया जिनका इस्तेमाल फ्रॉड करने वाले कर रहे हैं।
3: निर्यात को बढ़ावा देना मॉरिशस की आर्थिक प्राथमिकताओं में शामिल है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बढ़ते दौर में मॉरिशस नए बाजारों की तलाश के साथ उच्च मूल्य वाली सेवाओं के निर्यात पर भी जोर दे रहा है। इसी दिशा में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड स्थानीय उद्योग को नए अवसरों तक पहुंच बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने में सहयोग दे रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में जारी चुनौतियों के बीच चीन अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने पर ध्यान दे रहा है। इसी संदर्भ में बेलरोज स्थित चीनी दूतावास में आयोजित एक संवाद सत्र के दौरान मॉरिशस में चीन की राजदूत ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ चीन अफ्रीका संबंधों, बीजिंग की प्राथमिकताओं और मॉरिशस के साथ सहयोग की संभावनाओं पर विचार साझा किए। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: व्यापार, नवाचार, हरित विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें बीजिंग अफ्रीकी महाद्वीप के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत बनाते हुए प्रगति देखना चाहता है। मीडिया से बातचीत के दौरान चीन की राजदूत हुआंग शिफांग ने विशेष रूप से उन नई पहलों पर प्रकाश डाला जिनका उद्देश्य अफ्रीकी उत्पादों की चीनी बाजार तक पहुंच को आसान बनाना है। साथ ही उन्होंने कई रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाओं का भी उल्लेख किया। राजदूत ने यह भी रेखांकित किया कि भू राजनीतिक तनावों और आर्थिक चुनौतियों से प्रभावित वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में उनका देश संवाद और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
5: China has always worked with Africa in the spirit of sincerity, real results, amity and good faith, and will continue to do so. A concrete example is the zero tariff treatment China has implemented since May 1st this year. With this policy, China has become the first major economy to voluntarily extend comprehensive zero tariff treatment to all African countries with diplomatic ties.
4: मॉरिशस के लिए ये पहले सहयोग के नए अवसर खोल सकती हैं, विशेष रूप से नवाचार, सतत विकास तथा मानवीय और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में। चीन ने कई कूटनीतिक मुद्दों पर भी अपनी स्थिति दोहराई है। राजदूत ने एक चीन सिद्धांत के प्रति मॉरिशस की निरंतर प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने साथ ही शागोस मुद्दे पर मॉरिशस के रुख के प्रति बीजिंग के समर्थन को भी पुनः दोहराया।
5: China appreciates Mauritius' long-standing and firm commitment to the One China principle and has always firmly supported Mauritius' just position on the Chagos issue. China stands ready to work with Mauritius to uphold the purposes and principles of the UN Charter, safeguard national sovereignty and territorial integrity, and defend international fairness and justice.
4: राजदूत के अनुसार ये प्रतिबद्धताएं मॉरिशस के साथ एक दीर्घकालिक और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की बीजिंग की दृढ़ इच्छा को दर्शाती है।
3: मॉरिशस और स्पेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया। स्पेन के नए राजदूत जोसे मैनुएल पास्कुआल गार्सिया ने आज स्टेट हाउस में राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र दिया। इस अवसर पर दोनों देशों के संबंधों तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। फलों और सब्जियों की आपूर्ति व्यवस्था

व्यवस्था को लोगों के और करीब लाने की दिशा में एक नई पहल की जा रही है। नेशनल होलसेल मार्केट की कुछ सेवाओं को गुडलैंड्स और फ्लैक तक वितरित करने की योजना विस्तारित करने की योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना और उपभोक्ताओं तक उत्पाद

0: और टापू भर से 700 से 900 वाहन बेलगेव स्थित नेशनल होलसेल मार्केट में रोज मौजूद। यहाँ पर 200 टन फलों एवं सब्जियों की बिक्री होती है। बोली लगाकर बिक्री के विकेंद्रीकरण के साथ परिवहन से संबंधित खर्चों को कम करते हुए फलों एवं सब्जियों की अधिक से अधिक बिक्री प्रोत्साहित की जा रही है। विकेंद्रीकरण की पायलट परियोजना के चलते कृषि उद्योग मंत्रालय और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की ओर से विचारों के आदान प्रदान करने के लिए संबंधित सभी पक्षों को जुटाया गया।
1: Pas de mensonge, seulement qu'il y a c'est en gros ces bandes-là qui jouent le prix un petit peu mon ferroviaire. Mais par contre, ce que nous nous pouvons proposer à ce terre-là, c'est-à-dire, vous avez un buyer-seller meeting, pour comment dire, planter là les vignes, les vendre en gros, mais les capables vendre en petite quantité avec Bandimoun qui ont envie d'acheter.
2: C'est bien qu'il nous fait là sa session interactive. Là. Et tout va se faire dans un esprit de participation et avec la transparence voulue.
0: करीब एक महीने में परियोजना पर काम शुरू होने वाला है। शनिवार के दिन गुडलैंड्स में मंडी के पास और फ्लाक में बस अड्डे के पास।
3: हर चार साल में आने वाला महीना जब रातें छोटी और फुटबॉल की चर्चाएं लंबी हो जाती हैं। कल से विश्व कप 2026 का आगाज हुआ और इसके साथ ही मॉरिशस के फुटबॉल प्रेमियों में भी उत्साह चरम पर पहुंच गया। मेक्सिको के ऐतिहासिक स्टेडियम में रंगारंग उद्घाटन समारोह ने इस वैश्विक आयोजन की शानदार शुरुआत की। जरा विस्तार से रिपोर्ट।
4: फीफा वर्ल्ड कप 2026 औपचारिक रूप से शुरू। पहली सीटी बजने से पहले उद्घाटन समारोह ऐतिहासिक अस्टेका स्टेडियम में। अस्सी हजार से ज्यादा फैंस से भरा था स्टेडियम। साथ साथ मेजबानी रही तीन अलग अलग शहरों में, वहां पर भी समारोह हुए। लोकप्रिय कलाकार की कमी नहीं थी। शकीरा, बनाबोय, जे बाल्विन स्टार परफॉर्मर रहे। वर्ल्ड कप 2010 के प्रतीक शकीरा अपने वाका वाका के साथ इस बार दाई दाई गीत के साथ उन्होंने सबको नचाया। एक्ट्रेस सलमा आयक के साथ फीफा के अध्यक्ष ज्ञानी इन्फेंटिनो वर्ल्ड कप के ट्रॉफी प्रस्तुत कर पाए। फिर दिग्गज आंद्रेया बोसेली के परफॉर्मेंस रहे। रंगारंग कार्यक्रम के बाद फुटबॉल की बारी, जहां मेजबान टीम मेक्सिको ने अपना पहला मैच आसानी से जीता। अपने हजारों फैंस के सामने ज़ावी अग्वेरे की टीम की आसान जीत हुई 2-0 से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। इस वर्ल्ड कप में पहला गोल 90 मिनट पर स्कोर किया जूलियन क्विनोनेस ने। फिर सेकंड हाफ में राउल जिमेनेज दूसरा गोल स्कोर करता है मेक्सिको के लिए। इस मैच में केवल गोल नहीं बल्कि इस मैच में रेड कार्ड भी रहे। तीन तीन रेड कार्ड, दो दक्षिण अफ्रीका के लिए, एक मेक्सिको के लिए। मेक्सिको का अगला मैच दक्षिण कोरिया से होगा। दक्षिण कोरिया ने भी अपना पहला मैच जीता 2-1 से चेक रिपब्लिक के खिलाफ, जबकि दक्षिण अफ्रीका के बफाना बफाना खेलेंगे चेक रिपब्लिक के विरुद्ध। मेजबान टीम मेक्सिको की सफल शुरुआत। अपनी जनता के सामने वर्ल्ड कप में बहुत दूर जाना चाहते हैं, ठान लिए हैं बहुत आगे जाने के लिए।
3: और मेजबान मेक्सिको की जीत के साथ विश्व कप का रोमांचक सफर शुरू हो चुका है और अब बारी है दूसरे मेजबान देश कनाडा की। कनाडा आज रात बोस्निया के खिलाफ खेलेगा और उसकी कोशिश विजय शुरुआत करने की होगी। दूसरी ओर बोस्निया भी मैच में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहेगा। मिडलैंड्स में कल हुई एक दुखद घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है।

40 वर्षीय जोनाथन कुयामटू का शव एक शिकार क्षेत्र के पार्किंग स्थल पर उसकी गाड़ी के पास खून से लथपथ अवस्था में मिली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उनके सीने पर गोली लगने का निशान पाया गया है। इस घटना के सटीक कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। विदेश की खबरों में, क्या अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता जल्द हो सकता है। हालांकि ईरान ने अभी किसी अंतिम सहमति की पुष्टि नहीं की है। युद्ध विराम, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े इस घटनाक्रम पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। इसके अलावा पूर्व सियारे सक्रिय बादल आज रात को स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। आज रात आसमान साफ रहेगा। कल सुबह पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों, उत्तरी इलाकों, सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिर रहेंगे। दोपहर बाद भी पश्चिमी इलाकों पर बादल घिराएंगे और बारिश की भी संभावना है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19, अधिकतम 23 से 26, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:42 पर, शाम को सूर्यास्त 5:37 पर होगा।

0: देश विदेश की इन खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर शिव का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

Sok samacsár, szönyé. L'Albahadur Lane, Malenga Saint-Pierre, L'Albahadur Lane, Malenga Saint-Pierre, Pachhattar Sal ke, 75 years old ke, Shri Vinod Mahesh Gangaram, Shri Vinod Mahesh Gangaram, jo Manoj ke naam se zyada jane jaate the, unki mrityu ho gayi hai. Arthi, kal din ke 1 baje unki patni Rani Gangaram ke makan, L'Albahadur Lane, Malenga Saint-Pierre se uthakar antim sanskar ke liye Samautemu Ghosh ki shmshan bhumi le jai jayegi, cremation tomorrow at 1 p.m. Impasse Modern Store, Royal Road, Okuleme. Impasse Modern Store, Royal Road, Okuleme. 85 sal ki, 85 years old ki, Shrimati Jagajudi Marimutu, Shrimati Jagajudi Marimutu. पंडाशिना मर्डन और जो आते पुष्पा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी कल सपहर 3 बजे उनके मकान एपास मर्डन स्टोर रॉयल रोड उकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमारो एट 3 p.m. जॉन मिल्टन रोड होशनोमी. जॉन मिल्टन रोड होशनोमी 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की विधवा अमावती जीवन. विधवा अमावती जीवन पैदाशी नाम मुतादिन और जो अमावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है. अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके मकान जॉन मिल्टन रोड होशनोमी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमारो एट 9:30 a.m. शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है.

नमस्कार, इस समय शाम के 6:19 हुए हैं। रेडियो मनोरंजन पर हमारा आपका साथ है। हम हैं सुरेखा आपके साथ। बस उम्मीद यही है कि मन आपका बहुत ही शांत होगा, मन आपका बहुत ही खुश होगा और यही उम्मीद भी करते हैं कि आप लोगों का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा होगा और बड़े आराम से आपके पल बीत रहे होंगे। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और हमारे इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल रहिएगा। ये है आपके लिए प्रोग्राम नई सोच। नई सोच कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। हमारी सोच ही होती है हमें जो लेकर जाती है सही राह पर या गलत राह पर। बस अपनी सोच उस तरफ रखिए जिस तरफ नई राह दिखे आपको, जिस तरफ अच्छी राह दिखे आपको, अच्छी सोच दिखे आपको। बस उसी मार्ग पर चलिए, उसी राह पर चले चलिए और अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी को मुस्कुराहट हमेशा देती रहने की आप कोशिश करते रहिएगा और ऐसा इरादा ही रखिएगा कि सारे संसार में आप मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट बांट सकें।

जहां हौसला होता है वहां पर आगे बढ़ने की चाबी होती है बस हौसला रहे आपके मन में यही हमारी उम्मीद है और इसी हौसले के सहारे आप बढ़ जाएं अपने जीवन में आगे आगे

जिंदगी हमारी होती है और इस जिंदगी में हमें अपनी तरफ से हर मुकाम पर इस तरह आना चाहिए कि इस जिंदगी को हम अपना बना सकें और ये जिंदगी हमें अपना बना पाएं। चलिए, आदमी के लिए जिंदगी क्या है, जिंदगी के लिए आदमी क्या है, इसी पर थोड़ा विचार करें हम, और विचार करके ही इस जहां में हम अपना रुतबा बना सकें, औरों को खुश रखने की हर प्रकार की कोशिशें कर सकें।

चलिए जरा हम देखते हैं किस तरह बन जाते हैं मुसाफिर हम इस जहां में मुसाफिर बन के आए हैं और मुसाफिर बनकर ही अपनी यात्रा तय करेंगे हम। चलिए जरा हम सुनते हैं अपनापन मूवी का गाना और इस यात्रा पर आप जरा विचार कीजिएगा। इस यात्रा में अगर आपने अच्छे कार्य किए तो ये यात्रा आपको बहुत अच्छी मंजिल पर पहुँचाएगा।

वो यादें ही होती हैं जो मन में समा के रह जाती हैं। इन यादों को आप इस तरह संजो के रखिए कि इन यादों के सहारे आपका हर पल बड़े प्यार से बीत जाए। और वैसे भी जुदाई वगैरह, जुदाई का आलम होता है, जुदाई के पल ऐसे दुखदाई होते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जब जो भी होना होता है वो तो होके ही रहता है। बस हम अपनी यात्रा को ज़रा सफल बनाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं।

भाव भरे गानों का ये प्रोग्राम रहा नई सोच। बस आपकी सोच बहुत ही पॉजिटिव रहे, बहुत ही सकारात्मक रहे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ आपको अंतिम गाना सुनवाते हैं, और ये गाना है साजन के का घर मूवी से लिया गया। और इस गाने में बस उम्मीद जागी हुई है, उम्मीद की ये लौ जो जलती रहेगी तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आएंगी, खुशियों के आने के आसार ज़रूर दिखाई देंगे। आप हमेशा खुश रहिए, आपकी ज़िंदगी में संतुष्टि रहे, आपकी ज़िंदगी में खुशी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए नई सोच कार्यक्रम का ये अंतिम गाना आपके नाम करते हैं।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. रेडियो मनोरंजन पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम दिलों की आवाज़, दिलों की आवाज़ें जो गूंजती है तो हमारे दिल को भी बड़ी खुशी होती है। तो चलिए दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं और जहां भी होंगे आप खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमारे इस प्रोग्राम में भाग लेने का कष्ट ज़रूर करेंगे। इनफैक्ट हमारे इस प्रोग्राम में आप भाग लीजिएगा और अपने मन में जो गाना सुनने की इच्छा है वो हमसे

0: कीजिएगा। हम आपकी पसंद का गाना आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप जहां भी होंगे खुश खुश हमारे इस प्रोग्राम में भाग लेकर हमारे इस प्रोग्राम की शान ज़रूर बढ़ाइएगा। ये है आपका प्रोग्राम, ये है दिलों की आवाज़।
1: दिलों की आवाज़, की आवाज़,
0: दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो 5250-6200 पर आप हमें मैसेजेस भेजिएगा। बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, और जो आप फ़ोन करना चाहते हैं तो 4028070 पर ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। हम हैं सुरेखा आपके साथ आपकी पसंद के गाने आप तक पहुंचाने के लिए। सो आपके फ़ोन कॉल्स भी लेंगे हम और आपके मैसेजेस भी पढ़ेंगे आप जैसे चाहे जिस तरह चाहे हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और बताइएगा कौन सा गाना आप सुनना चाह रहे हैं। फ़िलहाल तो हम आपके लिए पेश करेंगे एक ऐसा गाना जो हम अपने सुनने वालों के नाम करना चाहते हैं। जी हाँ, ये है मुकुल अग्रवाल की आवाज़, नाराज मूवी का ये गाना है। हम तो बड़े खुश हैं आपसे मिलके, हम तो बड़े ही प्यार से आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में इस गाने के ज़रिए।

0: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: तो बस इंजॉय करते रहिएगा फुटबॉल को भी, इंजॉय करते रहिएगा हमारे शो को भी। ये है अम्यूज का शो, आप लोगों के लिए दिलों की आवाज़, आवाज़ आपके दिल से आएगी और गाने हमारे स्टूडियो से आप तक पहुंचेंगे। वैसे अभी जो गाना हम पेश कर रहे हैं लियो शितेरोज के तोड़ल परिवार के नाम करते हैं हम ये गाना, ये है एक बर्थडे गाना, बर्थडे पर बड़ी बहुत सारी

दुआएं हैं और पूरे तोरल फैमिली में बनाई जा रही है जन्मदिन की खुशियां संदेश तोगल जी का। तो संदेश तोगल जी को उनकी उनकी पत्नी कल्याणी तोगल जी की तरफ से, उनके बेटे दिवेश की तरफ से, लेशिता उनकी बेटी की तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी मंगल कामनाएं। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन आपको संदेश तोगल जी।

खिल जाए सारा जहां आपका फुलवारी की तरह दिल खिला रहे आपका फूलों जैसे और इस तरह आपके जीवन में रंगत ही रंगत हो खुशबू ही खुशबू हो खुशियां ही खुशियां हो हमारी तो यही दुआ है रेडियो मनोरंजन पर मनोरंजन आपका हम कर रहे हैं आप ही के पसंद के गानों के साथ और जो आप बताना चाह रहे हैं कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे तो 5250-6200 पर ज़रूर हमें मैसेज भेजिएगा 402

8070 पर जरूर हमें फोन कीजिएगा। हम मैसेजेस भी पढ़ रहे हैं और आपके कॉल्स भी ले रहे हैं। चलिए जरा हम श्वेनल जी की पसंद का गाना पेश करते हैं। इस बार श्वेनल जी ने हमसे मांगा है माया मेम साहब का ये गाना, और उन्होंने ये गीत अपने भैया श्रवण के नाम, भाभी कृति के नाम, अभिनव कियान नाविया और तिलक फैमिली के नाम किया है। और स्विट्जरलैंड से हम सुन रहे हैं आंतिश रामसरण जी, सो श्वेनल जी ने आंतिश जी के नाम भी किया है ये गाना।

0: continuous music. RM3. Continuous music.
1: और वैसे भी तो हम अपने श्रोताओं की पसंद के ही गाने सुनवा रहे हैं, तो चलिए जरा हम गुलशन जी को खुश कर देते हैं। ये डिजर्व्स इट।

क्योंकि उनकी नौकरी आज बहुत टफ है, वे बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने रेस्टोरों में, किचन में, सुबह 6 बजे से हैं और रात के 11 बजे तक रहने वाले हैं। तो गुलशन जी, हम आपके साथ हैं, आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे और गुलशन जी की तरफ से जो गाना उन्होंने मांगा है वो तो उन तक ज़रूर ही पहुँचाएँगे। मर्डर मूवी का ये गाना उन्होंने मांगा है और उन्होंने ये गीत अपनी मामा प्रभा को सुनवाना चाहा है और अपनी बहन दीक्षिता को, साथ में गॉर्जियस एंजल आयशा जी को और भोला परिवार को साथ लेकर चल रहे हैं, ये गाना सुनना सुनवाना चाह रहे हैं। गुलशन जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए हमारे दिल में ढेर सारी दुआएं हैं, प्रगति आप हमेशा करते रहें गुलशन जी।

0: करते हैं।
1: जन्मदिन की बधाइयां जन्मदिन की खुशियां बांटने के लिए होती हैं और जन्मदिन की खुशियां हम बांट रहे हैं शीला जी के साथ। शीला जी के भाई का जन्मदिन है और उन्होंने ये गाना अपने भैया के नाम कहा प्रस्तुत करना चाहा है और ये गाना पूरे सीबू परिवार की तरफ से हम पेश कर रहे हैं सुनील जी के नाम। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।

बहारों का ये मौसम हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहे और बहारों में इस तरह से आपको खुशियाँ मिले, इस तरह से आपको रौनक मिले कि इस रौनक के साथ साथ आपकी ज़िंदगी खुशगवार रहे। 7:36 हुए हैं और चलिए हम ज़रा सुदेवी जी की का मैसेज पढ़ते हैं। सुदेवी जी वाकवा रहती हैं, उन्होंने अगला गाना मांगा है और ये गाना है फिल्म पुकार से लिया गया। किशोर कुमार की आवाज़ का ये गाना सुनिएगा सुदेवी जी की तरफ से त्रियोले की दीदी ललिता के लिए, कुशल परिवार के लिए, आत्माराम भैया, विमल, वर्षा, वीर, निया, मालिका के पूरे राम रतन परिवार के लिए और उनके हमारे सभी सुनने वालों के लिए और सुदेवी जी के सभी जान पहचान वालों के लिए। तो सुनिए ये गाना, एंजॉय कीजिएगा इसे और अमिताभ बच्चन का वो ज़माना याद कर लीजिएगा।

चलिए इस बार हम जरा अब्बू जी की पसंद का गाना पेश करते हैं। ये है फिल्म सुबह का तारा मूवी से लिया गया गाना। सुबह का तारा मूवी का ये गाना आप सुनिएगा लता मंगेशकर के साथ साथ तलत महमूद की आवाज़ों में। और ये गाना हम अब्बू जी की तरफ से बजवा रहे हैं आफेज असलम आयाज जायान जाहिरा रईस के लिए, काला चोटी के लिए और उनके दोस्त अप्पी और उनकी पत्नी के नाम। तो चलिए सुनते हैं तलत महमूद की आवाज़ और वो ज़माना याद करते हैं कि जब तलत महमूद की आवाज़ चारों ओर गूंजा करती थी।

सुबह का तारा यूं ही चमकता रहे, चमक चमक के आपके जीवन में बस रोशनी ही रोशनी लाए। चलिए जरा हम इस बार बुझते हुए शमा के बारे में सुनते हैं। जो रफ्तार रफ्तार शमा बुझती है तो कम से कम उसे न बुझने के बहाने हम दे सकते हैं। सो अनूप जलोटा की आवाज़ में ये गज़ल हम जरा सुनते हैं पॉपुलर म्यूज़िक के सचिन जी की पसंद पर।

और चलिए आज हम दिलों की आवाज में मनाए जन्मदिन सुखलाल मौसी जी का। दिलों की आवाज कार्यक्रम में सुखलाल मौसी जी को हम अपनी पूरी टीम की तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू कह रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन सुखलाल मौसी जी। आपको ललिता जी ने तयोले से बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत सारा प्यार भेजा है और ललिता जी ने सुखलाल मौसी जी को जन्मदिन की मंगल कामनाएं देते हुए अपनी बहनों के नाम ये गाना किया है। सुदेवी जी, देवीना जी, ज्ञानी जी, छोटी जी, हरीश जी, आत्माराम जी, उषा लोकना जी और माला राम जवन जी के नाम उन्होंने ये गाना किया है। ये है गाना दोस्ती मूवी से लिया गया।

और चलिए जरा हम हरियाली और रास्ता मूवी का गाना पेश करते हैं और ये तो हमारे रेगुलर श्रोता हैं रफीक मोहित जी तायाक से। उन्होंने ये गाना हमारी पूरी टीम के लिए मांगा है, बहुत बहुत शुक्रिया रफीक मोहित जी। आप इंजॉय कीजिए अपनी पसंद का गाना।

तो चलिए जरा हम भाभी मूवी का ये गाना सुनते हैं और इस गाने की फरमाइश हमसे पोटली के इब्राहिम जी ने की है जिनकी तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं है। चलिए इब्राहिम जी हम आपके लिए दुआएं करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और वैसे भी भाभी मूवी का ये गाना अगर आप पसंद करते हैं तो ये आपकी तबीयत में कुछ निखार तो लाएगा ही लाएगा।

हैं और इस साथ में आप लोगों की फरमाइशें तो हम ज़रूर पूरी करेंगे जहाँ भी होंगे आप। अगर आपको जॉनी मेरा नाम मूवी का ये गाना पसंद है तो चलिए नवीन जी के साथ मिलकर ये गाना सुनिएगा। मोतान ब्लॉश के नवीन जी के नाम करते हैं ये गाना हम, और उन्होंने गाना अपने दोस्त संजय जी के नाम किया है। संजय जी जो उनको हमेशा उनकी पसंद के गाने हमेशा सुनते हैं और आज भी सुनकर बहुत खुश होने वाले हैं।

कहते हैं वादा किया है तो वक्त पे आ जाना बड़ा अच्छा होता है, पर अगर आप वक्त पर आ जाएं तो वो तड़प आप कहाँ से देख पाएंगे जब आपके महबूब की आंखों में नज़र आती है। जब थोड़ी सी देर कर दें तो वो तड़प देखकर मन बड़ा खुश हो जाता है, मानेंगे आप। तो चलिए इस बार आपको हम इंतज़ार करवाने के बाद पेश करते हैं वो गाना जिसकी फरमाइश की है अनीता जी ने आपने। तो चलिए अनीता जी की पसंद का गाना हम पेश करते हैं, ये है दिल से मूवी का गाना। और अनीता जी ने ये गाना अपने पति राज के लिए, बेटे आंतीश अंकुश के लिए, बहू मनीषा और अशीमा, पोती हिमेशा और आदिया तथा पोते अंश के लिए मांगा है। तो चलिए हमारी पूरी टीम के लिए भी उन्होंने ये गाना मांगा है, चलिए उनके नाम करते हैं, यानी कि अनीता जी के नाम करते हैं। इनफैक्ट ये गाना है दिल कितना नादा है मूवी से लिया गया।

तो चलिए दिनों की बातें करते हैं, शामों की बातें करते हैं। कहीं दिल इतना तड़पता है कि दिन ढल जाता है और शाम को जाते जाते समय लग जाता है। उनके दिल में बस यही उम्मीद रहती है कि ये शाम ढल जाए और दिन स्वयं चला आए। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गार्ड मूवी का ये गाना। और इस गाने की फरमाइश करने वाले बोबासा के हरीश जी हैं, और हरीश जी ने ये गाना भी अपने सभी दोस्तों के

नसीब की बात है ये भाई, नसीब वालों को उन नसीब अच्छा मिलता है। चलिए जरा हम लता मंगेशकर की आवाज़ का ये गाना नसीब मूवी से सुनते हैं। और इस गाने की फरमाइश करने वाली है सुकृति जी। सुकृति जी जो खौबे की रहने वाली है, अपने भाई आश्विन के नाम उन्होंने ये गाना किया है, और अपने मंगेतर सर्वेश के नाम।

और चलिए नंदा जी की पसंद का गाना पेश करते हैं उनके प्यारे से बड़े हैंडसम से बेटे अशिल जी का जन्मदिन है आज और उन्हें जन्मदिन की मंगल कामनाएं दे रही हैं उनकी पत्नी दिव्या और नंदा जी उनकी माता जी उन्हें बहुत सारा प्यार बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हैं। नंदा जी ये गाना अपनी बेटी अश्विना के नाम कर रही है और अपने बेटे अभिषेक के नाम।

ये वो गाना है जिसे हमने दिल से मूवी से लिया है और इस गाने की फरमाइश सुनील जी ने की है तैहूर से और उन्होंने गाना तैहूर की अपनी बहन रवीना के नाम किया है।

और हमसे फिनिक्स की रेहाना जी ने मांगा है गाना फिल्म आवारा का. सो मुकेश की आवाज़ का ये गाना रेहाना जी आपकी ओर चलता है. आप ज़रूर सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपने दोस्तों परिवारों को भी एंजॉय करवाइएगा.

राहत फतेह अली खां की आवाज़ का ये गाना, चलिए ज़रा सुनते हैं हम नमस्ते लंदन से। और ये गाना हम पेश करते हैं बदवाग विदेशी जी के लिए, उन्होंने ये गाना अनुषा जी के नाम किया है।

यादों का समंदर बड़ा गहरा होता है, इन्हीं यादों के समंदर में डुबकियां लगाने से अपने अपनों के साथ जीने का एक अलग सा अंदाज होता है। ये गाना आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खां की आवाज़ में, और अब चलिए ज़रा हम सोनू निगम के स्वर में सुनते हैं ये अंतिम गाना हमारे प्रोग्राम का, दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। यह जो अंतिम गाना हम पेश कर रहे हैं, ये हम केविन जी की तरफ से पेश कर रहे हैं। बोबासा के केविन जी ने इस गाने की फरमाइश मोहताज ब्लॉन्च की एंजल जी के लिए मांगा है। तो चलिए आप लोग ये गाना इंजॉय कीजिए। अभी थोड़ी देर में हम पेश करेंगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम आप लोगों के लिए, और जो आप भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में भाग लेना चाहेंगे तो आप हमें मैसेजेस अलग नंबर पर भेजिएगा, यानी कि 5251-7005 पर, और फ़ोन करना चाहेंगे तो 4028085 पर कीजिएगा। ये प्रोग्राम हम रेडियो मॉरिशस से सीधा इधर रेडियो मनोरंजन पर पेश करेंगे। तो हम सुरेखा थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

नमस्ते हमने के सब श्रोतालों के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तोहर स्वागत करे थे जा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम तोहर खातिर प्रस्तुत करे थे जा अभी 9:04 होल बा हमने 11 बजे लेके कार्यक्रम तोहर खातिर प्रस्तुत करब जा जहाँ हम पाजा हमने के कार्यक्रम में भाग लिया जा मैसेज भेजे के हो तो हमने के 5251 7005 पर भेजा जा और बढ़िया जा कौन गाना सुने खोजा था और जो टेलीफोने करे खोज बजा तो 4028085 पर ज़रूर हमने के टेलीफोने करिया जा थोड़ा गपशप भी हो जाए और थोड़ा सन तो हर पसंद के गाना भी हमने तो लोग के सुनवा दे अब जा अभी चला हमने मुकेश चंडी जी के गावले को गाना सुनब जा और एक कर में जितना प्रण लेवे के बा अच्छा सेहत खातिर अच्छा जिंदगी खातिर जरूर साथ दे ही जा और ये प्रण ले ली जा

और आगे चल के हमने के सुक्रीम किस्तु जी सलाह दे वन चिंता ना करे के और चिंता नहीं करे होला ये गाना हमने से आत्मा राम जी मंगले हवन बेलिया से गाना मंगले हमारे अपन बहन लोग खातिर बहन ललिता बहन सुदेवी बहन छोटी और पढ़ी बहन प्रभावती खातिर और ये बेलिया के स्नू परिवार खातिर।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: भोजपुरी तड़का में चला भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन कल और कला संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला के बारे में थोड़ा बताया जा। ये कार्यशाला के विषय है ढोलक बजावे पर बजावे की कला और ये ढोलक बजावे पर ये कार्यशाला 27 जून 2026 के हुई। भोजपुरी भाषी संघ यानी कि भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन ढोलक बजावे की कला पर एक कार्यशाला के आयोजन कर रहा था। इस सत्र में भोजपुरी संगीत के अलग अलग विधा अर्थात चौताल और गीत गवाय में पारंपरिक वाद्य यंत्र के प्रस्तुति के एगो तकनीक सिखावल जाए। हमने के एक कार्यशाला खातिर संसाधन व्यक्ति के रूप में एगो अनुभवी कलाकार एहन वो हवन श्री आनंद चट्टू और ये तारीख है शनिवार 27 जून 2026। समय है फजीर के 9:30 से 12:30 और ये स्थान है सूर्यदेव चटर हॉल मानव सेवा ट्रस्ट कालबास। सुचारू रूप से आयोजन सुनिश्चित करे खातिर कृपा करके 19 जून 2026 तक प्रतिभागी लोग के संख्या के पुष्टि bsumorishas@yahoo.com पर bsumorishas@yahoo.com पर ईमेल भेजा जा। ध्यान रखा जा कि सभी प्रतिभागी के उपस्थिति प्रमाण पत्र देवल जाए और एक कार्यशाला के समृद्ध करे होला संस्कृति अनुभव में तो लोग के सक्रिय भागीदारी के इंतजार रही। तो जरूर ईमेल एड्रेस फिर से नोट कर ल जाए।

BSU Mauritius. Kono lispas neba. BSU Mauritius at yahoo.com. इकर पर अपन ईमेल भेजिया जा जे ई कार्यशाला में प्रतिभागी बने खोजत हो जाता चलो ढोलक के बात कर ली जाता ढोलक बजावे के मंजीरा बजावे के जितना हमने के कलाकार लोग अब में आगे बढ़े लंजा गीत गावे में आगे बढ़े लंजा भोजपुरी के उत्थान में आगे बढ़े लंजा उन लोग के हमने प्रणाम करी जा और साथ ही साथ हमने राधा के सुबह ला गाना सुनवाए ला जाता लोग के पूर्णिमा फकीरा जी के गावाली गाना सुनी जा हमने पूर्णिमा फकीरा जी काफ़ी मंचल गायिका हवन हमने के भोजपुरी क्षेत्र में चला ये गाना हमने सुनवाई ला जाता है ये गाना हमसे मंगले हो विद्या जी त्या खुश रहे लन।

तड़का तो लगाते हैं जहाँ हमने चला आतिश भगीरथी जी की आवाज़ के संगे लगाया जा ये तड़का और ये गाना हमने से मंगले हवन विश्वानी जी वाकवा से विश्वानी जी गाना मंगले हवन अपन बहन इंदिरा और शारदा खातिर अपन सहेली नीला और प्रतिभा खातिर फिर शोभा जी खातिर और गीता गजाधर जी खातिर और ये साथ साथ ही गाना सुन के हमने की हमने सब ऊपर देश में रहे होला हमने के मॉरिशस भाई महर्षसीय भाई बहन लोग के नाम करिए जा जिनकरा परदेश में रहला में थोड़ा सन अपन देश के याद आवेला अपन देश के छोड़ला पर तनी दुख दर्द होवेला तो चले आतिश भागीरथी जी के गावली गाना सुन के हमने तनी अपन देश तोहर तक पहुँचाएला जा

एंड केशवर शंकर जी के गावल पैसा बात करेला। चलो बस पैसवा की बतिया सुनी जा हमने, ये बतिया हमने से सुने सुनवाई खोजा था वन प्रेमिला जी। प्रेमिला जी के वजह वहाँ पर से गाना मंगले हवन अपन भाई रोहित के नाम।

और चला सुनी जा हमने दगल बाज बलम हुआ यह पूर्णिमा फकीरा जी के गावल गाना और ये गाना पूर्णिमा जी मंगले हुआ नपन्न दमाद विशाल कालिया चेती जी के जन्मदिन के अवसर पर ढेर बधाई देवत हवन उनका ढेर आशीर्वाद देवत हवन जीवन में प्रगति करियन जीवन में सुखी रहियन और पूरा परिवार के संगे संगे बहुत अच्छा जीवन बिताई हन यही उनका आशीर्वाद देवत हवन पूर्णिमा जी और जन्मदिन विशाल जी के कुजिन भावना जी के भी बा और उनकर माता जी के भी बा भावना जी के और विशाल जी के माता जी के भी बहुत बहुत जन्मदिन के शुभकामना और जीवन में सुखी रहियन एकर दुआ देवत हवन पूरा परिवार पूरा फकीरा परिवार कालिया चेती परिवार देवी दयाल परिवार और दसोई परिवार लंबा उम्र मिले सब कोई के यही दुआ देवत हवन पूर्णिमा जी

और अभी कुछ चला हमने सुखलाल मौसी जी के जन्मदिन के शुभकामना दे इलाजा जन्मदिन अभिनंदन सुखलाल मौसी जी तोरा जन्मदिन के शुभकामना ललिता जी थियोले से देवा थवन और ललिता जी गाना सब कोई के संगे संगे मिलके तोहर नाम करा थवन उनकर बहिन सुदेवी और तोहर लड़का लोग के संगे मिलके उनकर बहिन देवीना ज्ञानी और छोटी हरीश जी प्रभावती जी और आत्मराम जी सब कोई संगे मिलके तोहरा जन्मदिन के मंगल कामना देवा थवन जा उषा लुकाना और माला राम जवन भी साथ में हवन संभावती तुमन जी के गाना तो हर नाम करत हवन ललिता जी

अच्छा रहता, बढ़ते बढ़ते चली जा हमने अगला गीत बगल, और अगला गीत भी जन्मदिन के अवसर पर मांगल गलबा, और ये गीत मांगल गलबा छोटी जी द्वारा, और छोटी जी मांगले हो ललिता जी खातिर, ललिता जी सामने के अपन अपन जन्मदिन मनैल न, और उनकर जन्मदिन के मंगल कामना आज भी देवत हवन जानकर सखी सहेली लोग, ताजा ललिता जी के मंगल कामना देवत हवन छोटी जी पोलो, जैसे आत्माराम जी, सुदेवी जी, प्रभावती जी और हरि जी के संगे संगे मिल के चला ई गाना हमने बजवाएला जा ललिता जी खातिर जन्मदिन अभिनंदन ललिता जी।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में छला सुनी जा अभी कुछ फिर से एगो गाना नीलू माथुर जी की आवाज़ में। और अभी कुछ ये गाना हमने से मंगले हवन पीतों के अमृता जी अपन बेटा विशान खातिर, मीनाक्षी खातिर, फिर सोनिया और परी खातिर और पूरा गणेश परिवार खातिर।

और चला अभी कुत्ते सुनी जा हमने सुना नोयन जी के खाले पीले चले खाले पीले गाना हमने सुनी जा अरनेश जी के नाम पर संगीता जी लाफलोहा से गाना मंगले हवन अरनेश जी खातिर उनकर ना पोता अरनेश खातिर दादी संगीता बगर से तो चला अरनेश जी सुनाई गाना।

अब चले दादा दादी के कहानी सुनी जा हम नीनू वेलफॉन्स के गायत्री जी के पास इन पर अपन बेटा अजय खातिर मंगले हवन मायबू के मामी कल्याणी मोहन खातिर लॉन्ग माउंटेन के बाबी शकुंतला खातिर और नूवेल्फॉन्स के सखी गीता बाई खातिर

विनोद सिद्धार्थ जी के गावली गाना हमने बजवात है जा श्रीमती जी खातिर। श्रीमती जी अपन बेटा संजय, राकेश और शक्ति खातिर, पत्तो आरती, अंजनी और पूनम खातिर, बेटी रेशमा और पूनम खातिर मंगले हवन, अपन सात गो नाती पोती खातिर मंगले हवनी गाना, चंद्रमुनि परिवार और मोहिस परिवार खातिर, लेस्काली के मोहिस परिवार खातिर।

और अभी कुछ जनगाना सुनावत हैं जहाँ तहलो के ई गाना हमने बजवाएला जा सुदेवी जी खातिर सुदेवी जी ई गाना मंगले हवन ललिता जी खातिर और कुशल परिवार खातिर थोले के आत्माराम भैया खातिर दीदी सुनीता शोभा देवीना मानेगा के रामरतन परिवार राम गुलाम और कुवाहू परिवार खातिर और ये गाना हमने बजावत है जब विष्णु हरि जी के आवाज़ में सुनीता जी खातिर घोंगुप के और घोंगुप के सुनीता जी कुंगुमा के अपन बहन विमाला खातिर मंगले हवन गीत

और आगे बढ़ते बढ़ते हमने प्रस्तुत कर अब जाबरी कुत चटनिया माफ करिए सुनाना यंच के कावली गाना और ये गाना हमने बजा बोल बजावत है जा अनीता जी खातिर फ्लिकॉन फ्लाक के अनीता जी गाना मंगले हो पूरा परिवार खातिर अपन सब संगत या लोग खातिर

सुमन के गमट, चलो सुनी जा सुमन राम तोहर और जलसा ग्रुप, चलो सुनी जा ई गाना सुमन के गमट और गमट करी जा राजीव रवि के संगे संगे। राजीव रवि जी मंगले हुआ नी गाना त्या खूर से।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: सुनीता नरकुच के गावल साजन की साड़ी, ये साजन की साड़ी गाना हमने बजाओ थे जा राधिका जी के पसीन पर। वाकवा से राधिका जी गाना मंगला हुआ अपन सब संगत के आलोक खातिर, विशेषकर सरोजनी जी खातिर।

और चला अभी कुछ गाना हमने सुना, अब जाम मुझसे माने इसके मुलुआ मीरा मोहन जी के गावाली गाना है। और ये गाना अभी संगे संगे काम करा था वन जाम मीना नुएल फॉन्स के अपन संगतिया लोग के, अपन संगतिया लोग के संगे काम करा था वन, और गीता अमृता ब्रिंदा मारियान अमीना और ज्ञानती सबको मिल के गाना सुने खोजा था वन। तो चला सुना तो अपन कम वो करा जा और गाना भी सुना जा, समय बड़ा अच्छा कटी।

और अब चलो माता पिता के प्रणाम करी जा और ये गाना सुनी जा बीनु चिंतामणि जी के गावल और माता पिता के त्याग माता पिता के मेहनत ये सब के हमने तनी सन अपन ध्यान में रखे जा। ये गाना हमने बजाओ था जा बृंदा जी के पसंद पर बृंदा जी गाना मंगलवन अपन माता पिता खातिर।

ई हगाना वासुदेवा मोहन जी के गावल सच्चाई भरल बैकर में और ई गाना सुन के हमने के जीवन के सच्चाई पर ध्यान देवे के जरूर प्रोत्साहित करे लाई गाना चला हमने रोहित जी के पसंद के गाना सुन थे जा रोहित जी मोसिल मोसाइन दौंत गाना मंगले हवन

औरी अभी हमने बजावत है जा सुदेश जी का तेरी गाना सुदेश जी हवा निगो किसान और ई गाना विजय राव जी के गावल सब किसान लोग के नाम करत हवन सुदेश जी बगल से गाना सब किसान लोग के नाम करत है जा

ये मुर्गा मुर्गी की कहानी मुर्गा मुर्गी के प्रेम कहानी अमी के बहुत श्रोता लोग पसंद करे लें जा आप देखा ये गाना हमने बजावत है जैसो कोई नाम के मिंता चाची खातिर मिंता चाची जी गाना बड़ी खुशी रहे ला ना सब लड़का लोग के भी सुनाए खोजा था ना अभी लड़का लोग उनका संगे हवन जाता चला सुरेश बोजू जी के गावली गाना हमने सुने जा मुर्गा मुर्गी के

अभी 10:55 हो गल बाई 11 बजे में पहुंच भी नेट बाकी बाउरी हमने के अंतिम गाना तो हर खातिर प्रस्तुत करे थे जा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में इतना साथ दिले कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद तो हर मिसाज मिलल तो हर कॉल मिलल एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम के सजाई ल जाए कर खातिर बहुत धन्यवाद। रात के 11 बजे सुनिया जा आज के पुराना गीत के कार्यक्रम में यानी कि आज के सुनहरे पल कार्यक्रम रोशन सदा सिंह जी के गावल ये भोजपुरी गाना संगीत तहलक के छोड़ जात है और आवत हला फिर मिला सुरेखा तहल से आज्ञा चाहता शुभ रात्रि नमस्ते।

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ
1: Wishing all of you a very good evening. नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए. जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रेडियो मॉरिशस पर. हाँ जी, आपका अपना पसंदीदा शो सुनहरे पल में. वैसे जिंदगी की भाग दौड़ में अगर दिल को सुकून देना हो तो पुराने बॉलीवुड के गीतों से बेहतर और क्या हो सकता है. तो चलिए मिलकर यादों के उस हसीन सफर पर चलते हैं जहां हर गीत एक कहानी है, हर सुर एक खूबसूरत सा एहसास. आपका अपना सुनहरे पल गिनिशा के साथ.

दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस किए जाते हैं। वो हमें बचपन की गलियों में ले जाते हैं, पहली मोहब्बत की याद दिलाती हैं और अपनों के साथ बिताए हुए उन लम्हों को फिर से जिंदा कर देते हैं। तो

ऐसे ही अनमोल नगमों के साथ बने रहिए रेडियो मॉरिशस के सुनहरे पल में। और अगला नगमा हम डेडिकेट करना चाहेंगे खासकर सारे म्यूजिक लवर्स के नाम।

तो चलिए जी, हो सकता है कि फिलहाल आप घर पे आराम फरमा रहे हो, या हो सकता है कि आज थोड़ा सा ओवरटाइम किया है ऑफिस में और फिलहाल के लिए घर के लिए निकल चुके हो। तो चलिए मज़ा ले लीजिए इन खूबसूरत पुराने गीतों का। इस खूबसूरत सफ़र में बस आप हमारा साथ देते रहे। पुराने बॉलीवुड के वो एवरग्रीन गाने जो आज भी दिलों पर राज करते हैं, सिर्फ आपके लिए ऑन रेडियो मॉरिशस।

वैसे देखा जाए तो हर गीत के पीछे एक याद होती है, एक मुस्कान होती है और कभी कभी एक आंसू भी। बिल्कुल जी, आज हम लेकर आए हैं वही गीत जो वक्त के साथ और भी हसीन हो गया है। तो दिल खोल कर सुनिए और यादों में खो जाइए मेरी जान, क्योंकि ये अगला नगमा काफी खास होने वाला है।

म्यूजिक की असली खूबसूरती तब महसूस होती है जब एक पुराना गीत अचानक दिल को छू जाए। आज का हर नगमा आपको जिंदगी के किसी ना किसी खूबसूरत मोड़ पर जरूर ले जाएगा। ये है सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

0: दोस्तों नए गाने रोज आते हैं लेकिन पुराने गीतों की बात ही कुछ और होती है, है ना? उन्हें होता है प्यार, सादगी और दिल को छू लेने वाली रोहनियत। इसी जादू को लेकर हम हाजिर हैं। हम हैं गिनिशा जो बड़े प्यार से शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि दिल से आप एंजॉय कर रहे हो इन खूबसूरत पुराने गीतों को।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आए।

तो चलिए जी, पुराने ये गानों का सिलसिला शुरू हुआ था और अभी धीरे धीरे खत्म होने को है। और फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर निशा टू से गुड बाय टू यू। आप हमें प्यार से इजाजत दीजिए ताकि फिर आ सके आपका साथ निभाने के लिए इस एक घंटे के सफर में, आपका सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। हमें इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि, शब्बा कहर।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी।

मामा के कंच पकाए मच्छी के खाई हो मामा के खाई हो

कहाँ जाला बेटी घरे का भाई हो भाई भेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।

0: फरमाना।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो